करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो कि आज इसके साथ जुड़ा हुआ है वह है आयुष्मान उद्गीत। यह श्वास से निर्मित है, श्वास से बना हुआ प्राणायाम है। श्वास से बना हुआ प्राणायाम हम साथ साथ करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि यह प्राणायाम करने के लिए महत्वपूर्ण ये लगता है कि हम किसी भी प्राणायाम को उतने ही विश्वास से करते हैं। आइए अब हम जानते हैं अभ्यास से पहले इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते समय नाक से ही श्वास लेना और मुंह से ही श्वास लेने का प्रयास करें। जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या है उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को गंभीर हृदय रोग या फिर रक्तचाप की शिकायत है वे डॉक्टरी परामर्श से ही यह प्राणायाम कर सकते हैं। बेहतर होगा कि शुरुआत में ही इस प्राणायाम का अभ्यास किसी योग गुरु की निगरानी में किया जाए तो ही अच्छा है। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते समय नाक से ही श्वास लें और नाक से ही श्वास को छोड़ें, मुंह से श्वास ना लें। उद्गीत प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मिलने वाले फायदे। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अवसाद और चिंता जैसी कई मानसिक रातों से और चिंता जैसी कई मानसिक समस्याओं से राहत दिलाने में कारगर है। अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास करना लाभदायक है। यह प्राणायाम हृदय रोग, उक्त रक्तचाप और मिर्की जैसे गंभीर रोगों के जोखिमों को कम करने के लिए सहायक है। यह प्राणायाम एकाग्रता के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ मन को शांत और स्थित रखने में भी मददगार होता है। यह प्राणायाम त्वचा पर निखार भी लाता है। आइए इस प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेहतर होगा कि आप इस प्राणायाम का अभ्यास सुबह 8 बजे से पहले कर लें और इसके आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह प्राणायाम का अभ्यास करते समय श्वास लेने और छोड़ने में अधिक जोर ना लगाएं और इस बात का ध्यान दें कि उद्गीत प्राणायाम करने के स्टेप सही हो, क्योंकि अभ्यास के दौरान थोड़ी सी भी गलती समस्या का कारण बन सकती है। इस अभ्यास को करने के लिए वातावरण का शुद्ध होना और बहुत ही अच्छे से अपने मन को एकाग्र करते हुए भी करना चाहिए। हो सके तो आप उस समय जिस समय उद्गीत प्राणायाम कर रही हैं, तो ढीले ढाले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। तो ये था आज का आयुष्मान उद्गीत प्राणायाम। हर बार की तरीके से हमने आज भी एक नए शब्द की उत्पत्ति की है, क्योंकि उद्गीत प्राणायाम को आयुष्मान इसलिए बताया क्योंकि आयुष्मान का अर्थ हमने बताया दीर्घ व लंबी आयु, और उद्गीत प्राणायाम श्वास से निर्मित प्राणायाम है। तो यानी श्वास से चलेंगी तो ही लंबा और दीर्घ आयु यानी स्वास्थ्य और कल्याणकारी होगा। तो साथ ही साथ हमने आज उद्गीत प्राणायाम के फायदे सावधानियां भी बताई। इसी तरीके से दोस्तों, हम सभी नित सवेरे आकर के योग की पाठशाला में हर एक दिन एक नए शब्द के साथ प्राणायाम कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद, इसी श्रृंखला में कल हम फिर से

करेंगे एक नए शब्द और एक नए प्राणायाम के साथ में। लेकिन अभी प्राणायाम के बाद में हम 10 से 15 मिनट योग मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग साथ में करेंगे। और इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द एक नए आसन प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस योग आसन को बताने जा रहे हैं, जिस प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं, वो हम सभी के लिए, यानी कि जब हमारी उम्र बढ़ती है 40 के बाद 35 के बाद हमें बहुत सारे ऐसे योग प्राणायाम की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी बढ़ती उम्र को एक तरह काम करता है रोकने का। अब आप कहेंगे कि योगिनी समता ये क्या कह रही है कि एज को उम्र को कोई कैसे रोक सकता है। बिल्कुल, इसके लिए एक लाइन में आपसे बताना चाहती हूँ। चेहरे बोलेंगे उम्र तो कोई खास नहीं। एंटी एजिंग यानी बढ़ती उम्र में महिलाओं को अक्सर त्वचा के ढीले पड़ने और झुर्रियों की शिकायत होती है। ऐसे में फेस योग एंटी एजिंग के लिए एक चमत्कार की तरह होता है। जिंदगी भर चलने वाली यह प्रक्रिया विकास, उम्र का बढ़ना भी इसी विकास का हिस्सा है, जिस दौरान शरीर से लेकर त्वचा में ढेर सारे बदलाव आते हैं। बढ़ती उम्र में त्वचा को हेल्दी और युवा बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर वर्तमान जीवन शैली में, जब हमारी जीवन शैली, हमारा वन डे रूटीन इतना ज्यादा ऊपर नीचे इधर उधर यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्तता से भरा रहता है। इसी स्थिति में त्वचा को टाइट और युवा रखने के लिए नियमित रूप से कुछ फेस योगासनों का अभ्यास फायदेमंद साबित होता है। खास बात यह है कि इन फेस योगासनों के लिए किसी भी खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आप इन आसनों को किसी भी समय और कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। असल में फेस योग एक प्रकार की योग प्रैक्टिस है, जिसमें चेहरे की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करने के लिए विशेष अभ्यास किए जाते हैं। ये योगासन त्वचा को निखारने, झुर्रियों को कम करने और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक लाने में मदद करते हैं। फेस योग में विभिन्न प्रकार के चेहरे के व्यायाम, फेस योग में विभिन्न प्रकार के चेहरे के मुद्रा और श्वास तकनीक शामिल होती हैं, जो चेहरे की मांसपेशियों को सख्त बन करती हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम। सबसे पहले प्राणायाम की बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी, या कहें कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जितना अच्छा होगा, उतना ही त्वचा हमारी हेल्दी रहती है। शरीर में ऑक्सीजन का सही संतुलन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक बनाए रखता है। सही ब्लड सर्कुलेशन त्वचा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए दिनचर्या में गहरे श्वास वाले प्राणायाम को अवश्य शामिल करें। प्राणायाम के लिए शुद्ध स्वस्थ स्थान पर बैठें। उसके लिए सुबह का सबसे अच्छा स्थान और समय माना गया है, इसीलिए शांत जगह पर बैठकर कमर गर्दन को सीधा रखें और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देते हुए गहराई से श्वास को भरें और गहराई से श्वास को छोड़ें। इस क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसके लिए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठें। प्राणायाम किसी भी एक नासिका से शुरू किया जा सकता है, मगर सही तरीके से और सही समय पर यह करना चाहिए। 15 से 20 बार यह अनुलोम विलोम करने के बाद में आपकी क्षमता जिस तरीके से आगे बढ़े, उसे धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। यह स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा और स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मददगार रहेगा, जिसका सीधा असर आपकी त्वचा पर दिखाई देगा। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं, आजकल टीनेजर्स को, महिलाओं को, लड़कियों को मुहासों की समस्या बहुत होती है, एक्ने।
जिसमें हम कराने जा रहे हैं आज शशांक आसन। शशांक आसन चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन को करने से चेहरे की त्वचा पर रक्त संचार बढ़ता है, इससे त्वचा में निखार आता है और चमक दिखाई देने लगती है। सबसे अहम है कि शशांक आसन से चेहरे की मांसपेशियों में कसावट में सुधार होता है, जिससे चेहरे की झुर्रियां, फाइन लाइंस कम होती हैं। इस आसन को करने के लिए आप वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सामने की तरफ पूरी तरह झुक जाएं, जिससे दोनों हाथ सामने रहेंगे और माथा जमीन से टच करेगा। इस मुद्रा में होने पर आपको महसूस होगा कि ब्लड सर्कुलेशन दिल और चेहरे की तरफ है। असल में जिस तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है उस अंग को पोषण भी मिलता है। शशांक आसन से मानसिक तनाव भी कम होता है, जो त्वचा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके नियमित अभ्यास से त्वचा स्वस्थ, निखरी और युवा बनी रहती है तथा मुहासे जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राकृतिक चमक के बारे में। प्राकृतिक चमक हर एक महिला, हर एक लड़की की एक ये ख्वाहिश होती है कि हमारे चेहरे पर प्राकृतिक चमक हो। तो उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंडूक आसन। अब बात करते हैं मंडूक आसन कैसे होता है। मंडूक आसन की जो त्वचा को हेल्दी, यंग और ग्लोइंग रखने में मदद करता है। मंडूक आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को नाभि पर रखते हुए सामने की तरफ झुक जाएं। जितना झुक सकती हैं, लेकिन गर्दन को थोड़ा ऊपर ही रखें। थोड़ी देर इसी मुद्रा में रहें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। मंडूक आसन की इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। ध्यान दें कि मंडूक आसन पेट के लिए अधिक फायदेमंद होता है। अगर आपको इस आसन के त्वचा पर लाभ दिखने लगे तो नीचे झुकते हुए गर्दन को ऊपर की ओर रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं होगी। मंडूक आसन से चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और वहां मौजूद त्वचा में रक्त का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे त्वचा में ताजगी आती है और निखार आता है। साथ ही साथ प्राकृतिक चमक भी पड़ती है और झुर्रियां कम होती हैं। आइए अब हम चलते हैं एक आम समस्या पर, क्योंकि आजकल ये आम समस्या सभी को देखने के मिलती है। डबल चिन के लिए गर्दन और हमारे गालों के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें डबल चिन हो जाती है, यानी चिन के नीचे का जो हिस्सा होता है वो लटकने लगता है, चाहे आपका चेहरा भरा हुआ हो या फिर थोड़ा सा पतला हो, तब भी डबल चिन की समस्या सभी को होती है। उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भुजंग आसन और सर्पासन। भुजंग आसन और सर्पासन से चेहरे की त्वचा को कई लाभ मिलते हैं। यह आसन गर्दन, सिर और चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं और त्वचा को टोन करते हैं, जिससे त्वचा पर निखार आता है। ये आसन तनाव को कम करते हैं, जिससे त्वचा पर मौजूद दाग धब्बे और मुहासे कम होते हैं। इसके अलावा भुजंग आसन, सर्पासन त्वचा की कसावट को बनाए रखते हैं तथा झुर्रियों को बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करते हैं। भुजंग आसन करने के लिए सर्वप्रथम आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें और दोनों पैरों को पीछे मिलाएं और शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं, फिर कोहनी को सीधा रखते हुए हल्का सा गर्दन को ऊपर रखें। गर्दन के ऊपर होने से डबल चिन की समस्या खत्म होती है और चेहरे एवं गर्दन की त्वचा कसी नजर आती है, साथ ही स्पाइन की भी मजबूती होती है। और अब सर्पासन करने के लिए उल्टा लेट जाएं, दोनों हाथों को कमर के ऊपर बांध लें
और आगे की तरफ से सिर को उठाएं, पीछे से दोनों पैरों को भी उठाएं और हाथों को भी खिंचाव दें। यह आसान तरीके से भी हम कर सकते हैं और बहुत ही आसान यह आसन है भी। यह आसन त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज की बात करें तो आप जब भी खाली बैठे हों, अपने मुंह में थोड़ी सी हवा भरकर गालों को फुला लें, थोड़ी देर बाद छोड़ दें। इस क्रिया को भी अगर हम बार बार फेस के लिए करते रहेंगे तो फेस की मसल्स की एक्सरसाइज होती है, लटकी त्वचा सही स्थिति में आ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए गालों को अंदर की ओर खींचें और फिर बाहर की ओर फैलाएं। इसे 5 से 10 बार करें। इससे गालों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तीसरी एक्सरसाइज, मुंह को खोलें फिर बंद करें। यह जबड़े हड्डी की मांसपेशियों को टोन करती है। इसे आप दिन में 10 बार करें। चौथी एक्सरसाइज के लिए आंखों को तेजी से बंद करें और फिर खोलें। इसे 10 बार दिन में दोहराएं। यह आंखों के आसपास की त्वचा को टोन करती है। सबसे जरूरी यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं तो पहले चिकित्सक से सलाह लें और उसके बाद ही आप योग और आसन करें। तो ये था दोस्तों आज का हमारा योग सीरीज में एक नए आसन की ओर, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में बोला, चेहरे बोलेंगे उम्र तो कोई खास नहीं। इसी तरीके से हम फिर मिलेंगे नए योग शिविर में और नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योगशाला सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों के लिए अब हम लोग बनाते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी योग को करने के लिए किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद में हम लोगों ने ऑडियो बनाए, जिसमें हम लोग सवेरे रोज सवेरे आपके लिए कुछ न कुछ नया भी लेकर के आते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जयी, ऐसे कई प्राणायामों के बारे में हम लोगों ने कई बार आप लोगों को करते हुए और बताते हुए एक वीडियोस भी बनाए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान भी दिया है। इसी उम्मीद के साथ में एक बार फिर से आज हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं अनुलोम विलोम के कई फायदे। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको अभी थोड़े ही दिन पहले फिट सी का एक वीडियो आया था, जिसमें अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे लाभ है, सब कुछ बताया गया था। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भी बहुत सारे मुख्य लाभ है, जिसमें सबसे पहला लाभ शारीरिक लाभ। आइए तो हम उसे बताते हैं। श्वसन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वास लेने में आसानी होती है। शारीरिक लाभ हमें बहुत सारे वैसे अनुलोम विलोम के अंतर्गत बताए गए हैं, लेकिन यदि हम उसे पूर्ण रूप से इसका लाभ जाने तो ही हम कोई भी प्राणायाम ठीक से और आराम से कर सकते हैं। रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सही बनाए रखता है। हृदय को स्वस्थ रखने के साथ साथ रक्त संचार बेहतर करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली।

0: हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
6: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
7: Now you're listening. Good morning, Goda, with your favorite Ajay Khan.
8: ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का

0: धन गजल सुबह सुबह अजी याद आ गई। नहीं नहीं ऐसे ही नहीं याद आई है, इसके पीछे का फलसफा है। फलसफा है आज का थॉट ऑफ द डे। अच्छा अब आप थॉट भी सुनना चाहते हैं? नहीं, उससे पहले मैं करूंगा आपका वार्म वेलकम। सो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग मुंडा शो में। और आज है दिन मंगलवार का, तो चलिए भाई इस मंगलवार वाले दिन मंगलमय थॉट बताते हैं और आपके दिन को और भी ज्यादा मंगलमय बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो थॉट क्या कहता है? थॉट कहता है कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो आप हमेशा यही चाहेंगे कि काश आपने थोड़ा पहले शुरुआत की होती। राइट, ये तो आपके मन में भी आता है ना? ऑफ कोर्स आता है। लेकिन आज का जो दिन है वो आपके आने वाले कल से सबसे ज्यादा यंग दिन है, जवान दिन है, युवा दिन है। बेशक जरा सोचिए कि जिस दिन आपको रियलाइज होता है कि ये मुझे करना चाहिए था, आप हमेशा सोचते हो यार काश को कुछ पहले कर लिया होता। ये काश हमेशा रहता है। लेकिन सोचिए अगर यही काम आज की डेट में आप सोच रहे हैं, आज 25 तारीख है, तो अगर ये काम आप कल की डेट में करते हैं यानी 26 तारीख में, तो एक दिन आपका और वेस्ट हुआ ना, एक दिन के भोले और हो गए। सो मुबारक हो, आज आप एक दिन पहले और एक दिन ज्यादा जवान है। यानी कहने का सीधा सा सेंस है कि वो शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। जिस वक्त जिस लम्हे लगे आपको ये शुरुआत होनी चाहिए, वही दिन आपका सबसे परफेक्ट सबसे यंग दिन होता है। तो चलिए अगर आपने सोचा था कि भाई करियर में स्विच कुछ चाहिए, तो आप स्विच करने के लिए करिए आज ही शुरुआत। कोई नई स्किल सीखने का आप बहुत दिन से टाल रहे थे तो वो भी करिए। बिजली का बिल नहीं भरा था तो वो भी भर दीजिए। और एक्सरसाइज तो जनाब आप कई सालों से टालते चले आ रहे हैं, अभी तक आपका कल नहीं आया और अलार्म बंद करके सोने की आदत अभी तक नहीं गई आपकी। लेकिन आज ये थॉट हमको बताता है कि आज का दिन परफेक्ट है उस शुरुआत को करने का जिसको लेकर के हम हमेशा सोचते हैं काश को थोड़ा पहले कर लिया होता। तो काश को हटाओ और आज ही शुरुआत करो, यही तो कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो चलिए भाई, मुझे लगता है ये थॉट आप तक पहुंच गया है और अब आप जो हैं जूता शूता निकाल रहे हैं कहा कि वॉक कर लिया जाए। ऑफ कोर्स वॉक कर लीजिए, फौरन का फौरन कर लिए, 2 मिनट की कर लिए, शुरुआत हो जाए। लेकिन हाँ, आज का थॉट सिर्फ सुनिएगा नहीं, सच में बदलाव लाने के लिए अमल भी कीजिएगा।
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा,

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
1: तो चलिए, अभी तक आपने, मुझे लगता है कि भाई, तैयारी कर ली होगी और आपने शुरुआत कर दी, तो क्यों ना एक ऐसे शख्स के बारे में भी बताया जाए जिनको हम रियल सुपर हीरो कहते हैं, यानी वो लोग जो सच में बेहतर करते हैं और बदलाव लेकर आते हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जिसके दिल में ममता बसी थी। इस ममता के चलते उनके पति ने उसको तलाक दे दिया, है ना? सोचने पर मजबूर कर रही है ये बात। आखिर क्या हुआ होगा ऐसा? ममता कोई गुनाह तो नहीं है? तो चलिए हम बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। दरअसल भूखों को खाना खिलाती हैं, जी हाँ, और इसी वजह से पति ने तलाक दे दिया। सो बेघर होकर के भी इन्होंने न जाने कितने लोगों का घर बसाया, यानी न जाने कितनों का आसरा बनी ये महिला, जो आज अपना घर तो छोड़ दिया लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए जरूर खड़ी हैं। और कहीं ना कहीं वो जो भावना हमने बताया ना, ममता वाली, वो अभी भी इनके अंदर जारी है। सो बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। चलिए फिलहाल हम बता दें कि दरअसल ये पश्चिम बंगाल की कहानी है और ये रियल लाइफ स्टोरी है, एक ऐसी महिला की स्टोरी जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पति ने जो है वो साथ छोड़ दिया, बस इस वजह से कि उन्होंने उनसे बात की कि भाई हमको गरीबों को खाना खिलाना है, जिस पर पति का कहना था या तो गरीबों को खिला दो और या तो मेरे साथ रह लो। जाहिर सी बात है, कोई भी महिला होगी खिलाने का ख्याल तो निकाल ही देगी क्योंकि उसको अपना घर को बचाना होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में हिस्ट्री बन गई। जी हाँ, बेशक हिस्ट्री बन गई। सो बेघर होकर भी नहीं रुकी, पश्चिम बंगाल के छोटे से शहर में पिछले एक साल से हर दिन सड़क पर भूखे लोगों को खाना खिला रही हैं। लेकिन एक साधारण सी गृहिणी कैसे और क्यों बनी, है ना? और इनको तो कहा जा रहा है जरूरतमंदों की अन्नपूर्णा, यानी खाना खिलाने वाली। सो ये कहानी शुरू हुई काजुली के बचपन से। जी हाँ, काजुली नाम है और इनके बचपन से ये कहानी शुरू हुई। दरअसल गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ और भूख की तकलीफ इन्होंने झेली थी। एक ऐसा भी वक्त था कि दूसरों का पेट भरने के लिए इनका पेट खुद भी ऐसे ही भूखे पेट गुजरता था। गरीबी की वजह से ही 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इन्होंने सोचा कि अब जिंदगी जा करके थोड़ी सी बेहतर होगी, जैसे कि किसी को भी लग सकता है। अब जरा सोचिए, जिसको एक वक्त का खाना मिलता हो, गरीबी हो, 15 साल की उम्र में शादी हो जाए, उसकी जिंदगी कैसी होगी? लेकिन अब जिंदगी जब उन्होंने सोचा बदलेगी, तो पता चला कि जिंदगी ने कुछ ज्यादा ही बदलाव ले लिया, है ना? ऐसा होता है। सुबह जिनका पेट खाली गुजरता था, उन्होंने गरीबी की वजह से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, लेकिन उसी में ये बात समझ में आई कि दूसरों का पेट हमको भरना है, क्योंकि जिसने खुद ये गरीबी झेली है, भूख झेली है, वो इस बात को कैसे सह सकता था। फिर क्या था, पति से भी इन्होंने खाने को लेकर के ताने सुनने पड़े। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि सड़क पर भूखे लोगों को ये देखती तो अपनी तकलीफ इनको दिखाई देती। एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपने दम पर भरूंगी लोगों का पेट। जी हाँ, जब इन्होंने ये बात अपने पति को बताई तो जवाब मिला, या तो मेरे साथ रहो या फिर सड़क के लोगों को खाना खिलाओ। सो भूखे लोगों को खाना खिलाना, यही उन्होंने चुना। कान के झुमके बेचकर एक नई शुरुआत की। जी हाँ, अपने बेटे के साथ किराए के घर में रहने लगी, अनजान लोगों के लिए खाना बनाना शुरू किया। मुश्किलें तो अब यहां से शुरू हुई थी, लेकिन ये नहीं रुकी। खुद मेहनत करके पैसे कमाए और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां भरने लगी। जी हाँ, 100 लोगों को खाना बनाकर खिलाती हैं आज की डेट में काजुली। अब इस नेक काम में कई लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। फिर भी यहां काजुली जो है रुकी नहीं, जरूरतमंद लोगों के लिए अनाथ आश्रम बनाना चाहती हैं, यानी ये इनका फ्यूचर प्लान है। तभी तो इनको कहा गया जरूरतमंदों की अन्नपूर्णा। अब जरा सोचिए, क्या इनको रियल सुपर हीरो कहना गलत होगा?

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
4: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.
5: भाई एक स्टोरी तो अभी आपने सुनी कि किस तरह से जरूरतमंदों की अन्नपूर्णा बन गई है काजुरी। एक ऐसा राज्य है जो बड़ा खूबसूरत है भारत का, और उसका नाम है राजस्थान, यानी राजाओं का स्थान कहा जाता है। वहां की जयपुर की इमारतें, पिंक सिटी, हवा महल और राज मंदिर वाला पुराना धर्मेंद्र जी का सिनेमा हॉल, सब कुछ वहां मौजूद है। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिसको लेकर जानते हैं हम सभी कि भाई वहां पर पर्दा प्रथा आज भी काफी ज्यादा प्रचलित है। घूंघट में रहती हैं ज्यादातर महिलाएं, और उस माहौल में जहां महिलाओं को इतना पर्दे में रहना पड़ता है, वहां पर अगर कोई ये कहे कि भाई उन्हीं के ससुर ने उनको सपोर्ट किया और आज वो जज बन गई, थोड़ा सा मुश्किल होगा इस पर यकीन करना। पर ये एकदम सच बात है। दरअसल हम आपको जो बात बता रहे हैं ये आज के समाज से काफी अलग है, जहां ससुर और सास को लेकर के माना जाता है कि भैया ये तो बहू की जिंदगी के काल है। वहीं पर ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां ये साबित करते हैं कि नहीं, एक पिता को अगर छोड़ के कोई बेटी आई है तो उसको दूसरा पिता भी मिल सकता है, और शायद उससे ज्यादा सपोर्ट करने वाला भी। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले के जो एक गांव है जिसका नाम है जालेपा, वहां की बहू दीपू कंवर की कहानी उम्मीद और हौसले की एक खूबसूरत मिसाल है। अब हुआ क्या कि शादी के बाद भी इन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। 7 साल तक लगातार मेहनत करते हुए इन्होंने गुजरात जुडिशियल सर्विस परीक्षा पास की और सिविल जज बन करके 79th यानी 89वीं रैंक हासिल की। ये इतना आसान नहीं था। पहली कोशिश में वो इंटरव्यू तक पहुंच गई, दूसरी कोशिश में मेंस में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता को उन्होंने एक नई तैयारी में बदल दिया। आखिरकार तीसरी कोशिश में उनकी मेहनत रंग लाई और उनका जज बनने का सपना सच हो गया। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात उनका जज बनना नहीं बल्कि उसके पीछे का ये फैक्ट है, जहां पे इनके पीछे सफलता के लिए ससुराल का हाथ है। जब भी दीपू घर के काम में लगती तो उनके ससुर बड़े प्यार से कहते, तुम तो बस बेटा पढ़ाई करो, काम हम कर लेंगे, और यही भरोसा उनकी ताकत बन गया। सो दीपू कंवर की स्टोरी हमें बताती है कि जब परिवार सपनों के साथ खड़ा हो जाए तो घूंघट वाली बहू भी इतिहास रच देती है, है ना? है आपके पास भी, आपके जहन में कोई ऐसी कहानी तो याद कर लीजिएगा। वैसे शुरुआत अपने घर की बहन बेटी और पत्नी से जरूर कीजिएगा। सुंदर ही अपना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से हाजिर हो रहे हैं आरजी अदनान।
6: अक्कर बक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 2:45, जो होता है होने

देखो 80-90 पूरे सौ, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.
1: अभी तक आपने कितनी मार्केट के बारे में सुना होगा? सब्जी मंडी, मछली मंडी, फल मंडी, या चूड़ी मंडी, या कपड़ों की मंडी, है ना? कई सारी मंडियों के बारे में सुना होगा। अब हम बताने वाले एक ऐसी मंडी के बारे में जिसके बारे में आप सोच करके हैरान, परेशान और साथ ही साथ खुश होकर के

ही देश जाने का सोचने वाले हैं, स्पेशली वो जो है सिंगल्स और शादी के लिए बेताब है। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी मंडी है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन हम भी कम थोड़ी ना है, फौरन नहीं बताने वाले, पहले इस सॉन्ग को एंजॉय करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर लेकर चलेंगे आपको अपने साथ उस मंडी तक। मंडी की बात कर रहे थे उसको हम बताते, लेकिन उससे पहले एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो मैंने कई सारी मंडियों के एग्जांपल्स दिए थे और मैंने कहा था स्पेशली वो जो सिंगल्स है और शादियों के लिए परेशान है उनके लिए एक बड़ी ही अजब गजब खबर है। दरअसल हम आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश चीन में लगती है मंडी दुल्हा दुल्हन की। है ना काफी अजीब बात, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, सो चीन के शंघाई राज्य में हर वीकेंड पर एक ऐसा मैरिज मार्केट लगता है जहां पेरेंट्स यानी माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाशने आते हैं। यहाँ वो घर के जो अपने बच्चों की उम्र है, उसकी कद, उसकी नौकरी, उसकी सैलरी और घर जैसी जानकारी वाले प्रोफाइल्स लेकर के पहुंचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जॉब के लिए रिज्यूमे लेकर पहुंचते हैं। जी हाँ, सो पेरेंट्स आपस में अपने बच्चों के मैच को तलाशते हैं, बात करते हैं। तो भैया यहां भी रिज्यूमे कैसे पीछे रह सकता था, रिज्यूमे देखकर ही तय होता है रिश्ता। सो पार्क में उम्र, शिक्षा, नौकरी, इन सब के हिसाब से अलग अलग सेलेक्शन बने हैं। तलाकशुदा पुरुषों और विदेश में रहने वालों के लिए भी अलग सेक्शन है। प्रोफाइल में सैलरी, घर और कद जैसी जानकारी भी उसमें होती है। कुछ पेरेंट्स बच्चों की फोटो के बजाय उनका रिज्यूमे लेकर के पहुंच जाते हैं। सो 30 की उम्र के बाद रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा मैरिज मार्केट का वीडियो सामने आया जिसमें 38 साल की एक महिला रोती नजर आ रही है। महिला प्रोफेशनल है और उसकी सालाना तकरीबन 58 लाख सैलरी है। जी हाँ, उसके पास घर है, कार है, लेकिन उम्र की वजह से उसे रिश्ते नहीं मिल रहे। सो चीन में 30 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को अक्सर शेंग नू कहा जाता है। सो है ना ये खबर जरा हट करके, कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे हैं चीन की उस मार्केट जाने का फैसला। बहरहाल देख लीजिए, अगर वीजा पासपोर्ट है तो ट्राई कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
4: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आज या कान।
5: अगर आप मेहनत करें और आपको रिवॉर्ड ना मिले, अगर आप काम करें और आपको सैलरी ना मिले, आप कहेंगे ये क्या हो सकता है। फिलहाल यही हो रहा है। जी हाँ, एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, मुश्किल है यकीन कर पाना, लेकिन फैक्ट है। दरअसल हम आपको बता दें, खेतों में काम करने वाली आधी महिलाओं को मजदूरी नहीं मिलती है। जी हाँ, और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये एक स्टडी में सामने आया है। बेशक स्टडी के मुताबिक कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी तकरीबन 48% है, लेकिन उनके नाम पे 14% से भी कम ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं। जी हाँ, जमीन, कर्ज, कृषि इनपुट और सरकारी खरीद तक सीमित पहुंच इनकी ना के बराबर है, और इसकी वजह से महिला किसानों की जो उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। सो रिपोर्ट्स के हिसाब से इससे हर साल 1.2 से 2 लाख, यानी 1,20,000 से 2 लाख करोड़ तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। सो ऐसे में महिला किसानों को औपचारिक पहचान और संसाधन तक बेहतर पहुंच देने के लिए नीतिगत सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम डेटा में आपको बताएं तो खेती में आधी हिस्सेदारी सिर्फ 11.72% की मालिकाना हक है। अब ज़रा सोचिए, पूरे 100% में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 12%। इसके अलावा तकरीबन 47.7% महिलाएं बिना पारिश्रमिक खेतों में काम करती हैं। जरा सोचिए, 50% आबादी ऐसी है जो बिना किसी मेहनताना के कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्योंकि भारत के कृषि श्रम में महिलाएं तकरीबन 48% हैं, पुरुषों के बराबर मेहनत के बावजूद मजदूरी 20-30% कम ही मिलती है। अब अगर हम बात करें वजह, तो उनकी काबिलियत नहीं, कर्ज, बीज, खाद, तकनीक, संसाधन, इन सब तक कम पहुंच बड़ी वजह है। और बराबर संसाधन मिले तो महिला किसानों के खेतों में पैदावार 20-30% बढ़ सकती है। फिलहाल ये स्टडी सच में चौंकाने वाली है, लेकिन ध्यान देने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिन महिलाओं की हिस्सेदारी को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, अगर इसको हम मेन स्ट्रीम लाइन में लाते हैं तो यकीनन आर्थिक तरक्की संभव होगी।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjun Khan. Arjun Khan.
1: एक बात जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करती है, लेकिन मैं तो नहीं करता हूं ना। चलिए एक बार वापस से आपका वेलकम करता हूं आपके मॉर्निंग वाले स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। परेशान ये बात करती है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है भाई, हम तो उनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन नहीं यार, एक प्रॉब्लम आती है जब बच्चे जिद करने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आप अपने मिलने जुलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कहते हो मेरा बच्चा तो बड़ा जिद्दी होता जा रहा है। इसके पीछे की वजहें पता है, इसके पीछे की वजहें पता है? नहीं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आके बताते हैं इसके पीछे की वजहें क्या है और साथ ही साथ आपको करना क्या है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, देन बताते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.
7: So भाई, इन पांच गलतियों की वजह से ऐसा होता है। जी हाँ, हर बात पर नहीं कहना बंद करना होगा। अगर बच्चा आपका हर वक्त ना सुनता है तो विरोध करना सीख जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका सलूशन है, जहां मुमकिन हो उसे छोटे छोटे ऑप्शंस दे। जैसे, क्या तुम पीली टी शर्ट पहनोगे या फिर नीली? क्या तुम पहले सब्जी खाओगे या बाद में खाओगे? इस तरह बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप होता है कि फैसला उसको करना है, और फिर वो फैसले पर केंद्रित हो जाता है। इसके अलावा चिल्लाने की बजाय शांत रहना होता है। अगर आपका गुस्सा बच्चे की जिद को और बढ़ा दे तो जरा सोचिए कितना खराब होता है। तो इसका सलूशन क्या है? पहले खुद को आपको शांत रखना होता है, फिर प्यार से उसे समझाना होता है। क्योंकि देखिए, अगर हर चीज हम गुस्से में बताएंगे तो बच्चा और ज्यादा जिद करने लग जाएगा, और उसको पता होगा कि अपने पेरेंट्स से ज्यादा अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे गए तो ये चुप हो जाएंगे और मेरी जिद पूरी कर ली जाएगी। सो फिर करना क्या होता है? होता यह है कि अगर आप शांत रहते हैं तो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बेहतर होता है। दूसरी बात है, बच्चों के साथ यकीन बढ़ता है और जुड़ाव बढ़ता है। बच्चा सही गलत को बेहतर तरीके से समझ पाता है। घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहता है। इसके अलावा बच्चे की भी बात ध्यान से सुनना होगा। जी हाँ, कई बार जिद सिर्फ अपनी बात मनवाने का तरीका होती है। तो इसका सलूशन क्या होता है? उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे बोलने का मौका देना। समझे, जुड़े और अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता आपको मजबूत करना होता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं जब पेरेंटिंग की बात आती है, कि हर जिद पूरी नहीं करना होता है। हर बार मान जाने से बच्चा सीख जाता है कि जिद से सब मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप मना करते हैं, जब सच में मना हो जाता, तो बच्चा डिप्रेशन में आता है या कोई बहुत बुरा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, एक आईफोन के लिए बच्चा, उसकी माँ, उसके पिता तीनों खत्म हो गए। सिर्फ आईफोन, 19 साल का बच्चा। जरा सोचिए, आज वो हमको टीनेजर लगता है, लेकिन उसकी परवरिश कैसी हुई है, ये मायने रखती है। इसीलिए शायद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों की हर जिद पूरा नहीं करना, बल्कि प्यार से समझाना है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी सीमाएं बताना है, लेकिन प्यार के साथ, कि बेटा इतनी ही चीजें हम कर सकते हैं और इतनी ही चीजों के लिए आपको मिल सकती है कोई भी चीज। सीमाएं जो है वो प्यार को कम नहीं करती हैं, बल्कि बच्चे को सही दिशा भी देने का काम करती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेरेंटिंग भी जो है वो एक आर्ट है। फिलहाल अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं तो इस बात को जरूर अमल करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल सुनिए ये जबरदस्त सॉन्ग और वापस से आते हैं आपके पास।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.
1: हाँ जी, तो फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक बहुत अच्छी सी अपडेट आपको दे देते हैं कि अहमदाबाद में 11,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को मिला है किचन में सीसीटीवी लगाने का आदेश। यानी अब कस्टमर्स जो है वो देख सकेंगे लाइव फुटेज। वैसे ये मिलावट के खिलाफ जंग का एक कदम है जो कि अहमदाबाद में लिया गया है। आपको क्या लगता है, हमारे यूपी में भी इस कदम को लेना चाहिए ताकि हम जान सके हम जिस रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं वो किस तरह से बनाया जा रहा है, कितने हाइजीन को मेंटेन करके बनाया जा रहा है और किन किन चीज़ों को डाल करके बनाया जा रहा है, यानी पारदर्शिता के साथ में। अगर आप भी चाहते हैं और आप भी मानते हैं कि ये होना चाहिए तो आप भी अपनी बातों को कह सकते हैं। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का शो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन आप बने रहिए अपने 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286091976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: अरे भाई एक बात पता है तुझको?
1: अरे भाई पता तो सब कुछ है, लेकिन जो तू अभी बताने जा रहा है बस वही नहीं पता मुझे।
0: सही में? कई बार नहीं बताता हूँ। सुन, वो लुगाइयाँ भी बड़ी गजब की होती हैं यार, जो पूरे 7-8 घंटे बैठकर मोहल्ले भर की चुगली करती हैं और बाद में पता है क्या कहकर उठ जाती हैं।
1: अरे भाई क्या कहकर उठ जाती हैं?
0: ए मरण देना हमने का लेना।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: हरे रंग का सूट, हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग का दुपट्टा। अरे वाह, ये देखिए श्वेता जी की फोटो इंस्टा पर, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे श्वेता जी, कहाँ की है ये फोटो?
7: अरे सावन शुरू हो रहा है ना, ये अपने भैया भाभी के साथ पृथ्वीनाथ मंदिर गई है, वहीं की फोटो डाली है। सावन में ग्रीन कलर का बहुत महत्व है।
8: अब पूरी एक महीने रौनक लगेगी, बहुत सारे फेस्टिवल जो आने वाले हैं, जैसे नाग पंचमी, राखी, कजरी तीज, जन्माष्टमी। चलो किरण दीदी से जानते हैं सावन के बारे में।
9: अरे रुको रुको, हमारे बिना ही सारी मस्ती। लो सब लोग पहले प्रसाद खा लो पृथ्वीनाथ मंदिर का। जानते हो, वहाँ तो अभी से सावन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, दुकानें भी लगने लगी हैं। संतोष भैया, आप भी प्रसाद ले लो।
10: स्वेता मैम, आप पृथ्वीनाथ धाम गई थी ना, उससे 1 किलोमीटर पर ही हमारा गाँव सुसगवा है।
9: फिर तो हम लोगों को भी ले चलिए संतोष भैया। किरण दीदी, आप बताती भी रहिएगा कि सावन में भगवान शंकर की क्यों इतनी पूजा होती है।
8: किरण दी, आप ढेर सारे लोकगीत तैयार कर लीजिए, क्योंकि सावन के बारे में सारी बातें एक एपिसोड में तो पूरी नहीं हो पाएंगी।
7: सही कह रही हो समता, हमने कमर कस ली है, ढेर सारे गीत तैयार हैं, और एक अच्छी बात ये है कि बाबा को जल चढ़ाकर सावन की शुरुआत कर रहे हैं।
9: संतोष भैया, कल खाना आप के यहाँ खाएंगे, सुबह 6 बजे हम लोग निकल लेंगे, सब टाइम पर आ जाना।
10: ये रहा सभी के पूजा के लिए सामान, आप सभी लोग एक काम करिए, जल चढ़ा दीजिए, पंडित जी भी वहीं पर हैं और वो सबकी पूजा भी करवा देंगे।
7: बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आओ सब मिलकर भोलेनाथ बाबा का भजन कर लें।

0: ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में हर वर्ष भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखना।
1: चलो अब संतोष भैया के घर चलते हैं। पर जब हम लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बहुत सारी रंग बिरंगी दुकानें दिख रही थी।
2: हाँ समता दी, हमें चूड़ियां और बिंदी लेनी है। कल जब आए थे तब भैया को देर हो रही थी, तब दर्शन के बाद तुरंत चले गए थे और कुछ भी नहीं ले पाए थे।
3: हमें भी हरे रंग की चूड़ियां लेनी है। सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। कहते हैं कि हरे रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए और काले और नीले रंग के कपड़े सावन में बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए।
0: ऐसा क्यों? हरे रंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? मम्मी भी टोकती हैं कि काले कपड़े मत पहनो। अरे ये स्टॉल कितना सुंदर है, ग्रीन कलर का ले लेते हैं, जब पहन कर जाएंगे तो मम्मी खुश हो जाएंगी।
3: चलो सब, संतोष के घर से कितने फोन आ गए हैं। सब लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। देखो रास्ते में कितनी हरियाली है। बरसात के बाद सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है।

0: आपने गीत गुनगुनाया और कितना प्यारा सा मौसम हो गया। देखो देखो अपनी सोशल मीडिया क्वीन श्वेता रानी को तो रील बनाने में ही बिजी है, उसको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है।
1: अरे रील नहीं बना रहे थे हम, तो सिमी का आंसर ढूंढ रहे थे कि हरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। क्योंकि सावन का महीना प्रकृति से जुड़ा है और हरा प्रकृति का रंग है, साथ में चारों तरफ हरियाली होती है।
2: हरा रंग सौभाग्य का रंग होता है और भोलेनाथ बाबा को हरा रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए महिलाएं हरे रंग की साड़ी चूड़ी पहनती हैं। मेहंदी का रंग भी तो हरा होता है, इसीलिए उसे लगाना सावन में शुभ होता है।
3: आइए सबसे पहले आप लोग को हम काली माई थान पर ले चलते हैं। वहाँ बहुत बड़ा झूला लगता है और गांव की काफी सारी औरतें आती हैं झूलने के लिए।
1: अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। संतोष भैया, अपनी वाइफ नीतू को भी वहीं बुला लीजिए।
3: काफी सारे लोग पहले से ही वहाँ पर हैं। एक तो सबको पता भी चल गया था कि किरण दीदी आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं।
0: आपके कारण हम लोगों का कितना स्वागत होता है दीदी। कितना बड़ा झूला है, कितनी ऊंची पैंग मार रही है। 8 लेडीज बैठी हैं, कहीं टूट न जाए।
1: हम भी पैंग मारेंगे। देखो सब झूले पर बैठकर गाना गा रही हैं। नीतू भी है, सब कितनी सुंदर लग रही हैं।
2: नमस्ते नमस्ते, हम लोग झूले पर बैठ सकते हैं? अरे नीतू, तुम तो ढोलक के साथ झूले पर बैठी हो, बजा लोगी झूलते हुए? चलो सिम्मी और श्वेता, तुम लोग पेंग मारो। समता आओ, हम लोग नीतू के साथ बैठते हैं।

0: अरे वाह, मजा ही आ गया। एक बात नोटिस की आप लोगों ने, यहाँ केवल औरतें और लड़कियां हैं, कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा। संतोष भैया भी हमें छोड़कर चले गए।
1: सावन में झूले का बहुत महत्व है, यह चीज गांव में ही दिखाई देती है। शहर में इतने बड़े झूले डालने की जगह ही नहीं होती है। कहते हैं सावन में राधा रानी को पहली बार कृष्ण भगवान ने सावन में झूला झुलाया था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है।
2: उसी परंपरा को गाना गाते हुए, झूला झूलते हुए हम लोग आज भी याद कर रहे हैं।

0: अब उतरो तुम सब, देखो सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक चीज गौर की तुम सब ने, जब झूला झूल रहे थे तो मन कितना खुश था, कोई भी चिंता की बात याद ही नहीं आ रही थी।
1: हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस फ्री और बिल्कुल मूड बूस्टर की तरह था। हमने पढ़ा था झूला झूलते समय हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है जिससे नींद अच्छी आती है।
2: सच में बहुत ही मजा आया, तभी तो हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट को बढ़ाने वाली है नीतू, हम सबके लिए गुजिया और पुए लाई है।
1: बहुत ही टेस्टी है नीतू, तुम्हारे हाथ का खाना क्या स्वाद है, मजा आ गया। चलिए अब संतोष के घर चलते हैं, पास में ही है तो पैदल ही चलते हैं।
0: एक मान्यता सावन की और है, सावन में औरतें अपने मायके जाती हैं। गांव में ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। हर लड़की सावन शुरू होता है तो भाई, पिता या भतीजे की राह देखने लग जाती है कि कब कोई लेने आएगा।
1: गांव की कुछ कुछ रस्में ना दिल को छू लेने वाली होती है। शहरों में तो घरों में होली दिवाली पर ही केवल रौनक होती है, वो भी शो ऑफ वाली, किसके घर कितने की लाइट लगी है, कैसे डेकोरेशन हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला।
2: असली खुशी त्योहार की गांव में दिख रही है। एक महीने तक इसी तरह सब लोग गाएंगे, झूमेंगे, झूला झूलेंगे, त्योहार को मनाएंगे। शहर में बुआ लोग एक महीने के लिए आ जाएं तो कितना अच्छा हो जाए।
1: कहानी घर घर की, लो यहाँ पे भी सब किरण दीदी का वेट कर रही है और ढोलक भी तैयार है।
3: बीरन भैया आई है अनवैया हो,

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

करिए की करिए भाई, दिल चुराने और मीठी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी और नॉलेजेबल बातें करने के लिए तो हम आते हैं। और इसी के साथ आपका अपना प्यारा वाला शो आ गया है जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई तहे दिल से वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव, आपका अपना वाला शो जिसमें कि हम लेकर के आते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और साथ ही साथ में लेकर के आते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उन सभी के लिए, मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन्स लेकर के आए हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं, इन सभी के लिए आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? फटाफट से आना होगा, अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी, हमसे ढेर सारी बातें करनी होंगी, और साथ ही साथ में भाई एक प्यारा सा गुड आफ्टरनून लिखना तो बनता है। तो फटाफट से आ जाइए। और मौसम जो है वो तो आज बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मौसम है बारिश वाला। भाई सावन चल रहा है, और सावन में जब ये रिमझिम रिमझिम बारिश होती है ना, तो फिर क्या ही कहना कि सावन की बारिश तो बहुत ही प्यारी होती है, और वैसे ही कुछ अपने साथ प्यारा प्यारा मौसम भी कर जाती है। ओके, इसी के साथ नव्या जी आ गई हैं, मैं देख रही हूँ, जो कि लिख रही हैं गुड आफ्टरनून डियर मैम, कैसे हो आप स्वीट हार्ट? मैं बहुत अच्छी हूँ नव्या जी, आप कैसी हैं फटाफट से बताएं। और इसी के साथ अरविंद जी आ गए हैं फ्रॉम वनकापुर। ओके, तो चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं, हम अभी तो शुरुआत की है, सॉरी बढ़ते नहीं हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत आज हम करेंगे क्या, क्या है हमारे पास? तो भाई आज हमारे पास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा सा ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो मोर मोर मोर इम्पॉर्टेंट होती हैं उन पे हमें बात ज़रूर करनी चाहिए। और जो कि हम ज्ञानसली लाइफ में ज़्यादातर यूथ्स की बातें करते हैं, सो यूथ्स की बात अगर करें तो यूथ्स में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, एक जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है? यूथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आज इन सारी ही टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज सवाल है, जो भी लिसनर्स हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का वेलकम तो है, बट साथ ही साथ स्वागत के साथ सवाल भी है। भाई आज हम स्वागत के साथ सवाल लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, सविता दुबे जी आ गई हैं, लिख रही हैं शुभ दोपहरिया अंशिका मैम, शुभ दोपहरिया आपको भी। सविता जी कैसी हैं आप, फटाफट से अपना हालचाल बताएं। ओके, तो आइए चलते हैं और पूछते हैं आपसे सवाल। सवाल ये है हमारा आज कि आप बताएं कि यूथ्स जो है ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए कई बार उन्हें डांट भी खानी पड़ती है, कई बार बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो वो मायूस भी हो जाते हैं। फूफा जी, मामा जी, सभी पूछते हैं लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सो कोई ऐसी एक प्रॉब्लम होती है जिसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता, और फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप सभी सोचिए, थोड़ा सा तो अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर वो है क्या, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वो जिसके लिए हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार जब हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। क्या है वो जिसकी बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, लाइफ स्पेंड करने में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी सोचें और सोच करके मुझे थोड़ा सा आप सभी जवाब दीजिए। चलिए दे देते हैं आपको थोड़ा सा टाइम सोचने का, जिसकी वजह से कि आप सोच सकें कि ऐसी क्या चीज़ होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद से ही इसका जवाब नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे यूथ्स की आज के टाइम में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनकर सामने आती है, और उस प्रॉब्लम का कह लें। ओके, सविता जी लिख रही हैं मैं ठीक हूँ, आप मैं ठीक हूँ मैम,
आप बताएं कैसी हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ सविता जी। और इसी के साथ अरविंद फ्रॉम मनकापुर, अरविंद जी लिख रहे हैं, हेलो आरजे मैम कैसे हैं आप। हेलो अरविंद जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और इस प्यारे से मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे और इस प्यारे से मौसम के साथ मेरी बातों को भी ज़रूर सुन रहे होंगे। तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्या होता है ना कि बीच बीच में जब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँगी ना, तब फिर आप जवाब कैसे देंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी इसलिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं उसकी जिसकी ज़रूरत सभी को होती है। सभी को मतलब सभी को। भाई मैं ये सोच रही हूँ ना कि पहेलियाँ बजाना बहुत हो गया है, अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि आखिर है क्या, क्योंकि मैंने इतनी देर से राउंड राउंड करके आपसे कई बार पूछा तो मुझे लगा कि लिसनर्स का जवाब आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वो होती है जॉब। जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यूथ्स जब होते हैं, यानी कि आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली होती है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया होता है, फिर आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो आता है, सवाल आता है, मतलब आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले सभी आपसे पूछते हैं ना। और ये यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है, क्योंकि सभी उनसे पूछते हैं, अरे जॉब मिल गई, अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो बेटा, अब तो जॉब कर रहे होगे ना। और हमें उनके सवालों के जवाब देने भी पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जवाब नहीं होता है तो फिर हम मायूस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं और फिर शुरू हो जाता है सिलसिला कि भाई क्या करें। तो आज हम लेकर के आए हैं कुछ बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसीज जो कि हम बताने वाले हैं। भाई देखिए, जो कहते हैं ना कि जॉब जब हमारे पास होती है तो आपका काम जो होता है ना, वो सिर्फ एक काम नहीं होता है, हमारा काम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा होता है, हमारा काम जुड़ा होता है हमारी कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक हमारी अपनी इमेज से जुड़ा होता है। जब आप कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है ना कि अरे वो तो अब नौकरी करते हैं ना, तो एक खुद में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और औरों की नज़र में भी कहीं ना कहीं हमें रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए जॉब जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे तो हमारे यूथ्स जो हैं वो हर दिन लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ते हैं सिर्फ इस उम्मीद के लिए कि एक दिन उन्हें जॉब मिलेगी और उनका जो भविष्य होगा वो बदल जाएगा। तो आज इसी स्ट्रगल को कह ले या एक संघर्ष कह ले, जो कहीं ना कहीं लाइफ में सभी को करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं, खुद से लड़ते हैं और औरों से नहीं कहेंगे, खुद से ही लड़ाई होती है, क्योंकि हर पल खुद को ही बेहतर बनाना होता है, तो कहीं ना कहीं हम निखर जाते हैं। और आज उसी को थोड़ा सा और निखारने और बेहतरीन बनाने, उसी पर बात करने और खोलने अपनी बंद किस्मत का ताला, हम लेकर के आए हैं कुछ एक ही बहुत ही अच्छी सी बढ़िया सी चाबी जो कि बंद किस्मत का दरवाज़ा बस यूं ही खोल देगी। तो आज हमारे पास कुछ हैं जॉब वैकेंसीज जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमारी जो बक बक बक बक बक बक है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आइए लिसनर्स, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपका वेट कर रहा है, इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और बस यू गई यू आई बहुत ही छोटे से ब्रेक के उस पार। सुने, इंजॉय करें, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका की नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलिए अब बातें करते हैं फाइनली उस बात पर जो कि हम देख रही हूं मैं सॉन्ग्स आप सभी को काफी पसंद आए हैं और इसी के साथ अब बात करते हैं सीरियस वाले टॉपिक पे। भाई सीरियस टॉपिक का अब आप सोच रहे होंगे सीरियस क्या है, तो जब बात होती है जॉब वैकेंसी की तो वो सीरियस तो हो ही जाती है ना, क्योंकि हमारा काम जो है वो हम बहुत सीरियसली करते हैं और करना भी चाहिए। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर बात करें गवर्नमेंट की तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज हर साल निकाली जाती हैं और मैं बता दूं कि ये राज्य स्तरीय वैकेंसीज होती हैं जिनकी ये पोस्टिंग लखनऊ तक होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूपी पुलिस डिफेंस सर्विस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हर साल निकलती है जो कि कांस्टेबल्स के लिए होती है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए होती है और भी कई सारी पदों पर हर साल इसमें वैकेंसी निकलती है। अगर आप चाहते हैं इसके लिए और ज़्यादा आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप UPPRBP ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। हर साल इन सारी ही जो भी मैंने आपको अभी पद बताए उनके लिए वैकेंसीज हर साल निकलती हैं और साथ ही साथ में भर्तियां भी होती हैं। तो आपको इसी वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कब फॉर्म आता है, कब आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें वैलिड हैं, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये सब आपको इसी पे पता चल जाता है इसी वेबसाइट पर। अब आते हैं कि जो कि नेक्स्ट वाली जॉब वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए होती है, यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो मैं बता दूं कि महिला और बाल विकास विभाग यानी कि WCD के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की बम्पर भर्ती चल रही है इस वक्त। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलों में हम बात करें तो जो आवेदन करने की जो डेट है वो अलग अलग होती है, जैसे कि 31 अगस्त 2026 तक ये डेट है। अभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आता है कि उत्तर प्रदेश अपनी विशेष सुरक्षा बल यानी कि UPSSF के लिए फायरमैन के पदों के लिए भी हर साल जो है बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं कि जिसमें 10th और 12th यानी कि अगर आप यूथ हैं और आपने 10th और 12th पास आउट किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बता दूंगा कि गोंडा ज़िले के लिए अगर हम बात करें कि हमारे गोंडा ज़िले में तो विशेष रूप से गोंडा ज़िले के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यानी कि MBBS मेडिकल ऑफिसर्स के पदों पर हर साल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधे भर्ती के लिए विज्ञापन हर साल आते हैं, हर साल इनमें पद निकलते हैं, जिसकी अगर आप और ज़्यादा अच्छे से इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गोंडा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ बहुत ही आसानी से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आते हैं कि ये तो हमने बात की कि सरकारी मतलब यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें निकालती है, कौन कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, क्या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और कैसे गवर्नमेंट जो जॉब वैकेंसीज निकालती है। अब आते हैं प्राइवेट, अगर हम बात करें प्राइवेट की तो गोंडा में ज़्यादातर बैंकिंग, सेल्स, फार्मा और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके लिए की जॉब वैकेंसीज निकाली जाती हैं प्राइवेट में। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनियों में जॉब की तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेल, HDFC लाइफ गोंडा लोकेशन के लिए असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और बजाज फाइनेंस गोंडा और मनकापुर के लिए सीनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैनेजर की भर्ती हर साल होती है। आप जाकर चेक कर सकते हैं और अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, आपको लगता है कि आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो इन जॉब्स के लिए है, तो आपको वहाँ पर जॉब आसानी से मिल सकती है। दूसरा आता है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव यानी कि गोंडा में सोशल मीडिया मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए वॉक इन इंटरव्यू 22 अगस्त से 15 सितंबर तक चल रहे हैं, आप जा सकते हैं देख सकते हैं। MS साहिल हेल्थ केयर गोंडा में सोशल मीडिया मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए वॉक इन इंटरव्यू, एक बार फिर मैं बता दूं कि 22 अगस्त से 15 सितंबर तक चल रहे हैं, आप जाएं चेक करें और वहां पे आसानी से मुझे लगता है कि ये जॉब अगर आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं तो आपको मिल सकती है। और हमेशा जब बात जॉब की आती है और हमारी बाहर काम करने की बात आती है तो स्पेशली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं जो कि फ्रेशर होते हैं,
फ्रेशर को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है, कैसे इससे हमें जीतना है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286-9976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो जिसका की नाम है ज्ञान अश्लील लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और बात जो हम कर रहे थे ना वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बात थी, अब तक हमने आपको बताई कई सारी जॉब वैकेंसीज, लेकिन इन सारी ही जॉब वैकेंसीज को बताने के बाद में यूथ्स जो होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कब होती है, जब उन्हें अपनी फर्स्ट जॉब करनी होती है। आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फर्स्ट जॉब की टाइम जैसे कहते हैं ना कि हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं, वो सबके साथ होता है कि हमें स्ट्रेस होने लगता है, हम डरने लगते हैं कि कैसे करेंगे, घबराहट होती है, ये बहुत आम बात है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसे दूर कर सकते हैं। तो अपनी फर्स्ट जॉब को शुरू करने से पहले आपको घबराहट होना आम बात होती है, स्ट्रेस भी बिल्कुल आम होती है जैसे कि हमने पहले कहा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम काम करें तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि काम पे जाने से एक रात पहले ही अपने कपड़े, जूते, आईडी सब तैयार करके रख लेने चाहिए, यानी कि कुछ प्रिपरेशंस हमें पहले से करनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि न्यू जॉब जब हमारी शुरू होती है तो हमें बिल्कुल भी काम की आदत नहीं होती है और पहले दिन तो थोड़ा सा लेट हो जाना बनता भी है क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठने की भी हैबिट नहीं होती है कि हम सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये आदत है और अगर स्ट्रेस में पूरी रात आपको नींद नहीं आई है और फिर आपको सुबह काम पे जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक रात पहले तैयारी की जाए। कुछ इन्फॉर्मेशन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ऑफिस पहुंचने का रास्ता, वहां लगने वाले समय का अंदाज़ा आपको पहले से ही लगा लेना चाहिए ताकि सुबह की भाग दौड़ ना हो। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा रहे। देखिए ये कुछ पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं बट इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि खुद से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि इस बात को आपको समझना है कि आपकी पहली जॉब है और आप वहाँ सीखने गए हैं। जब हम सीखने जाते हैं यानी कि अपनी लर्निंग एबिलिटी को हमेशा आगे रखते हैं तो चीज़ें बेहतर ही होती हैं। दूसरी चीज़ है कि पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में आपको सब कुछ नहीं आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे गलतियाँ ना हो। बस आपको ये करना है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है और उनसे आगे बढ़ जाना है, न कि अपनी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाना है और ये सोचना है कि मुझसे कितनी सारी गलतियाँ हो रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बस अपनी गलतियों को सुधारते रहना है, सीखते रहना है और उनसे आगे बढ़ते जाना है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने सीनियर से या बॉस से पूछें। पूछने में कभी भी शर्माए ना, क्योंकि सवाल जो होते हैं ना वो एक क्यूरियोसिटी जो होती है हमारे अंदर वो हमें सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन जब हमारे अंदर डर भरा हुआ होता है और हम सवाल नहीं करते हैं तो हमें जवाब कैसे मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है सवाल करना। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको घबराहट महसूस हो तो आँखें बंद करके गहरी सांस लें, इससे आपकी जो घबराहट है वो तुरंत ही शांत हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि दोस्ती बढ़ाएं, अपने साथ के नए लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं। जब आप दूसरों से बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाकी लोग भी ऐसी ही कंडीशन से गुजर रहे हैं, या कि अगर आप दोस्त बनाएंगे अपने दोस्तों से, अपने कलीग से बातें करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आप ही नहीं है जिसे नई जॉब की वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या इतना स्ट्रेस है, बाकी सब भी उसी तरीके से हैं। और जब हमें ये लगता है ना कि और लोग भी हमारी कंडीशन में हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम को समझने में और उसे सॉल्व करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो आइए लिसनर्स, चलिए चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं बस यूं गए यूं आए।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

गुंडा शहर की धड़कन और गुंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए फिर से वापस आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत बहुत वार्म वेलकम है आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है क्या असली लाइफ। तो आइए अब बात करते हैं आगे। और अभी तक हमने बात की बहुत सारी पॉइंट्स पर जो कि इम्पॉर्टेंट थी। हमने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ा आपकी हेल्थ को लेकर के बताया कि किस तरीके से जो स्ट्रेस हो जाता है जॉब का, फर्स्ट जॉब का, उसे कैसे कम करना है और अपनी हेल्थ को कैसे थोड़ा सा मेंटेन रखना है। अब आते हैं, बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी कह लें या ये कह लें कि बहुत ही मोटिवेटेड है। कहीं ना कहीं हम सबको अपनी लाइफ में खुद को हील करने के लिए या अपने स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए कई बार होता है ना कि हमें हीलिंग पावर की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अब बारी है मोटिवेशन की, और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है बहुत ही प्यारी सी, उसे मैं दो लाइनों से शुरू करना चाहती हूँ कि सफलता आँखों की रोशनी से नहीं, सफलता आँखों की रोशनी से नहीं, दिमाग के विजन और अंदर के हौसले से मापी जाती है। तो आइए चलिए बताते हैं कि आज हमारी स्टोरी है क्या। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वह है श्रीकांत की। श्रीकांत को असली संघर्ष तब करना पड़ा जब 10th के बाद एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी आँखें जो थी वो चली गई, यानी कि वो नेत्रहीन हो गए, और उसके कारण से उन्हें साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के लिए रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने हार ना मान करके कोर्ट से केस लड़ा और 6 महीने बाद न्याय पाकर 12th पास आउट भी किया, जो कि 98% आप सोच सकते हैं 98% से उन्होंने 98% उन्होंने जो है स्कोर किया, और फिर उन्होंने अपनी 12th को पास आउट किया, जिसके बाद आईटीआई में उन्होंने एडमिशन कराया, जहां जाने पर उन्हें सीधे अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी एमआईटी का रुख किया, और वहाँ दाखिला पाने के बाद दुनिया के पहले ऐसे वो छात्र बने जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने। जहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अमेरिका में मिली शानदार नौकरी को के ऑफर को ठुकराकर अपने देश वापस लौटने का फैसला किया। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अमेरिका में जॉब नहीं की और अपने देश के प्रति ये उनका लगाव था, उनका प्यार था, जो उन्हें वापस अपने देश भारत ले आया। न्याय श्रीकांत की अगर कहानी को हम सुने और समझे जहाँ तक अभी हमने सुना, तो कहीं ना कहीं इसमें ये दिखता है कि उनके साथ जो हुआ, यानी कि एक एक्सीडेंट जब हुआ और वो ब्लाइंड हो गए, उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपने लिए न्याय पाया, कोर्ट केस लड़ा, अपनी पढ़ाई भी पूरी की। सोचिए 10th में एक इंसान होता है तो क्या ही होती है उसकी, कहीं ना कहीं एज होती है या क्या ही होती है, और हम सोचते हैं अरे रहने तो, जो हो गया वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हार मानकर बैठ जाते हैं, या उनकी शायद श्रीकांत की जगह कोई और होता तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के बारे में सोचता ही नहीं, वो उसी जो उसके साथ हुआ वो उसी हादसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह टूट जाता। लेकिन श्रीकांत वो बहुत ही मजबूत कह लें हम, या ये कह लें कि जब हौसले बहुत बड़े होते हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ये एक मोटिवेशन हमें श्रीकांत की स्टोरी से मिलती है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, आईटीआई से जाकर के उन्हें सीधे अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी एमआईटी में गए, फिर वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी पहली जॉब ऑफर को भी ठुकरा दिया और अपने देश वापस लौट आए। इसके बाद में भारत लौट कर 2012 में उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की, जो पर्यावरण के इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जहाँ पर इको फ्रेंडली सारी पैकेजिंग होती है। उन्होंने कंपनी के सबसे पहले उन दिव्यांग और अशिक्षित युवाओं को रोज़गार दिया जिन्हें दुनिया ने नकार दिया था। रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति के निवेश और श्रीकांत की अद्भुत लीडरशिप के बल पर आज उनकी कंपनी 150 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर चुकी है, जिसने साबित कर दिया कि सफलता जो होती है, हमारी जो सक्सेस होती है, वो आंखों से नहीं बल्कि आपके देखने के नज़रिए से होती है, और साथ ही साथ में अटूट हौसले से हासिल की जाती है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम भी समझें,
हमारी लाइफ में, देखिए श्रीकांत की लाइफ में आपने देखा ना कितनी बड़ी बात हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़े, लगातार लड़े और उन्होंने अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। पर शायद इसका उल्टा हमारे साथ हो जाता है ना, हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि आखिर करना क्या है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, हमारे मन में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। सो श्रीकांत की स्टोरी सिखाती है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, मतलब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारे साथ, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उन पर कहते हैं ना 90% आपका रिएक्शन होता है और 10% वो होता है जो आपके साथ हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे रिएक्शन को सुधारने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से हम रिएक्ट करें कि हमारी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगे। आप सोचिए कि उनके पास आँखों की रोशनी न होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया और सभी के लिए, मुझे लगता है स्पेशली यूथ्स के लिए, एक ऐसा एग्जाम्पल कि वाकई रोशनी आँखों में नहीं इरादों में होती है। अगर हम ये कहें तो श्रीकांत के लिए ये लाइन्स बिल्कुल सही होंगी और हर यूथ को उनसे जज्बा, हौसला, समझदारी और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के प्रति एक जो डेडिकेशन है वो सीखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप, हम पढ़ते हैं तो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते हैं, उन किताबों से सीखते हैं और जो सीखते हैं वो अपनी लाइफ में आगे जा कर के उसको प्रैक्टिकल भी करते हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपनी पढ़ाई की तरफ एक लगन होनी चाहिए और साथ ही साथ में मुश्किलें तो हज़ारों आती हैं, बस उन्हें झुकाकर हमें हौसला कभी नहीं हारना चाहिए, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना उम्मीद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो उसकी उंगली थाम कर चलते हैं वो हमेशा आगे और सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं। तो आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, इन्जॉय करते हैं, सुनते हैं बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो ज्ञान असली लाइव, मेरे यानी अपने होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

जिसका कि नाम है ज्ञानश्री लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो वही हमारा टाइम हो गया है आपसे बाय करने का, लेकिन इससे पहले पहले पहले आज का टिप ऑफ द डे। तो आज का टिप ऑफ द डे यूथ के लिए स्पेशली ये है कि रोज कुछ नया सीखें, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो आप आसानी से अचीव कर सकें। हर दिन कुछ नया सीखने से, रोज कुछ ना कुछ बेहतर करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। तो हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ खास, क्योंकि हर एक दिन होता है अपने लिए बहुत ही ज़्यादा खास। तो यही था आज का टिप ऑफ द डे और इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। लिसनर्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और प्यारा सा मौसम है उसे एंजॉय करते रहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे सुन सहेली में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: अरे भाई आज कहाँ हो तुम? तुम्हारे शो का टाइम हो रहा है, टीकन भाभी अभी तक नहीं आई।
1: अरे भाई आपको बताया तो था, आज मैं आंगनवाड़ी सेंटर से लाइव करूंगी शो। आज टीकन भाभी की यहाँ नई माताओं और गर्भवती महिलाओं के साथ एक चर्चा है। मैंने सोचा यहाँ से क्यों ना लाइव शो कर दूं, बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं।
0: ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, चलो आओ ऑन एयर मैं ट्यून करता हूँ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपकी आरजे आकांक्षा। आज मैं पहुँची हूँ एक खास जगह, हमारा अपना गांव, जी हाँ केशवपुर, और वहाँ के आंगनबाड़ी में। यहाँ आज बहुत सारी माताएं और बच्चे मौजूद हैं। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा जिसका प्रत्येक बच्चे पर गहरा असर होता है, जी हाँ जिसे कहते हैं कुपोषण। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे बच्चों में बीमारियां और मृत्यु तक का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। और हमारे साथ हैं हर सवाल का जवाब देने वाली हमारी प्यारी टीकन भाभी, जो आज हमसे और यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से कुछ गंभीर बातें करेंगी। टीकन भाभी एक जिम्मेदार और जानकार माँ के साथ साथ सलाहकार भी हैं। नमस्कार टीकन भाभी जी, कैसी हैं आप?
2: नमस्कार आरजे आकांक्षा जी और नमस्कार बहने, अच्छा लग रहा है आज हम सब मिलकर अपने बच्चों के पोषण के बारे में खुलकर बात करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना आरंभ करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन में कुपोषण एक ऐसी परेशानी की शुरुआत करता है जो जिंदगी भर बच्चे के विकास पर असर डालती है, और इसकी शुरुआत होती है एक कमजोर माँ या कम उम्र में शादी और गर्भधारण। यदि माँ कमजोर या कुपोषित हो तो अपनी पीढ़ी में कुपोषण बढ़ जाता है।
1: और इसलिए आज ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चों को स्वस्थ और ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। टीकन भाभी सबसे पहले ये बताइए कि

0: हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसी को कुपोषण कहते हैं, या सरल भाषा में जिसे सही पोषण ना मिले वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसे माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं।
1: अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ खाना खाना ही काफी नहीं होता?
0: हाँ बिल्कुल, पेट भर लेना या सही पोषण मिलना ये दोनों अलग बात होती है। अगर बच्चा सिर्फ चावल खा रहा है लेकिन दाल सब्जी दूध फल ये सब नहीं अपने पोषण में ले रहा तो वह पूरा पोषण नहीं पा सकता।
2: दीदी हमार बच्चवा बहुत कमजोर है लेकिन वो खनवा पूरा खा लेते हैं, तब वो कर वजन नहीं बढ़त है।
0: गीता बहन, ये एक आम परेशानी है, ये आपको देखना होगा कि ये क्या होता है। उसके अलावा कभी कभी बच्चों को दस्त या सर्दी जुकाम बार बार होता है जिससे शरीर में पोषक तत्व नहीं टिकते, इसी कारण बच्चा कमजोर रह जाता है। इसलिए सही खान पान के साथ साथ साफ सफाई और बीमारी से बचाव भी जरूरी है। दोनों के अभाव में बच्चा अलग अलग तरह से प्रभावित होता है।
1: अच्छा, तो टिकन भाभी एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुपोषण के भी प्रकार होते हैं?
0: जी बिल्कुल, मुख्य तौर पर तीन प्रकार के कुपोषण का असर दिखाई देता है। पहला है कम वजन, जिसे अंडर वेट कहते हैं। जब बच्चा उम्र के हिसाब से बहुत हल्का होता है, ये स्थिति लंबे समय तक चल रहे या हालिया कुपोषण या दोनों का परिणाम हो सकती है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि में रुकावट, जिसे स्टंटिंग बोलते हैं। जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से छोटा कद वाला होता है, ये दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है और इसके पीछे अपर्याप्त पोषण सेवन, बार बार संक्रमण, गलत खान पान की आदतें और गरीबी जैसे कारण भी होते हैं। और तीसरा है दुबलापन, जिसे वेस्टिंग बोलते हैं। जब बच्चा अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत दुबला होता है, ये अचानक होने वाला कुपोषण है जो वजन बढ़ने में विफलता या वजन घटने के कारण होता है।
3: अब वही आप स्टंटिंग कहा गया है, यह का तनी आसान भाषा में समझाए दीन जाए।
0: जब बच्चा लगातार कई महीनों तक पोषण की कमी में रहता है, जैसे कि दूध ठीक से नहीं मिल पा रहा, खाना सही से नहीं मिल पा रहा, तो उसका शरीर बढ़ना बंद कर देता है, उसका कद उसकी उम्र के मुकाबले छोटा रह जाता है। इसे ही स्टंटिंग बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका असर बच्चे की बुद्धि पर भी पड़ता है।
4: दीदी हमार बच्चवा 2 साल के है लेकिन ओके दांत ना निकला अभी तक और चले ना पावत है, का यहू को पोषण के लक्षण है?
0: हाँ बहन, हो सकता है देर से विकास होना, जैसे चलना बोलना या दांत निकलना, ये भी कुपोषण की निशानियां हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उसकी जांच करवाएं।
1: तो श्रोताओं, कुपोषण कोई छोटी बात नहीं, इसका असर हमारे बच्चों के शरीर ही नहीं उनके दिमाग और भविष्य पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे आकांक्षा आपने। और अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो मैम MAM यानी कि मध्यम स्तर का तीव्र कुपोषण मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन धीरे धीरे बढ़कर SAM यानी कि SAM यानी कि गंभीर तीव्र कुपोषण सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बन सकता है। इससे बच्चे की सेहत और जीवन दोनों पर बड़ा खतरा मंडराता है।
3: अब ही तो आप ई बतावागा कि MAM और SAM की पहचान कौन मेर कही सकत है, और अगर बच्चन का यही दोनों में से कोनो बीमारी होए तब कैसे पहचाना जाए?
0: मैं वही बताना चाहती हूँ मैम और सैम, ये दोनों कुपोषण के स्तर होते हैं। जब बच्चे का शरीर थोड़ी मात्रा में कमजोर होता है यानी कि वो दुबला है लेकिन बीमारियों से लड़ने की ताकत अभी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है, तो हम उसे मध्यम तीव्र कुपोषण या मैम कहते हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है और उसके शरीर में सूजन तक आने लगती है या वो लगातार बीमार रहने लगता है तो वो गंभीर तीव्र कुपोषण या SAM कहलाता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है।
3: तब ई कस के पता चले कि बच्चा एम ए एम मा है या यस ए यम मा है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके कुछ मुख्य लक्षण भी होते हैं। अगर बच्चे की मध्य ऊपरी बाह की माप या जिसे एम यू ए सी कहते हैं वह 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो वह सैम की श्रेणी में आता है। अगर माप 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच है तो वह मैम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बच्चे का वजन उसकी लंबाई के मुताबिक बहुत कम है तो भी ये मैम या सैम का लक्षण है।
5: दीदी पहले ये बताओ कि जोने सूजन के आप बात करत थी वो कस सूजन हुए?
0: कविता बहन, सैम में कई बार बच्चे के दोनों पाँव में या पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। यह सूजन शरीर में पानी भरने की वजह से होती है। इसे बाइलेटरल पिटिंग ओडिमा बोलते हैं। अगर आप अंगूठे से पाँव दबाएं या निशान कुछ देर तक बना रह जाए तो वह सूजन का लक्षण है और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है।
1: ये तो कोई भी अपने घर में खुद टेस्ट कर सकता है। एडिमा का मतलब सूजन ही होता है। लेकिन टीकन भाभी, अब ये बताइए कि सैम से यानी एस ए एम से पीड़ित बच्चों को किन किन बातों का खतरा होता है?
0: जब बच्चा सैम से पीड़ित होता है तो उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। उसे बार बार दस्त, निमोनिया, बुखार जैसी बीमारियां हो सकती हैं और अगर समय पर इलाज ना हो तो जान का खतरा भी हो सकता है।
2: दीदी ये बतावा जाए, ये मध्य ऊपरी बाह का मापन कैसे किया जाता है और का ये हमहुक सीख सकित है? का हमहुक सिखावा जा सकत है?
0: बिल्कुल सिखाया जा सकता है सायरा। एम यू ए सी एक खास पट्टी से मापा जाता है जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध है। ये पट्टी हरे, पीले, लाल रंगों में होती है। हरा रंग बच्चा स्वस्थ, पीला मैम और लाल सैम। चाहे तो गांव की सभी माओ को सिखा सकती हैं ताकि घर पर ही शुरुआती पहचान हो सके।
3: यह का मतलब ये भा कि अगर समय रहता है यम ए यम के पहचान हो जाए तो बच्चा यस ए यम से बच सकत है।
0: बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कहते हैं समय पर पहचान, समय पर इलाज। यदि बच्चे को मैम है तो हम घर पर ही आंगनवाड़ी केंद्र की मदद से उसकी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। लेकिन अगर सैम है तो उसे तुरंत NRC यानी कि न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर या पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जा सकता है जहां उसे विशेष देखभाल, चिकित्सीय सहायता और पोषण आहार मिलता है।
1: ये जानकारी तो हर माँ और पिता क्या संपूर्ण परिवार के लिए जरूरी है। मैंने खुद अपने गांव में देखा है कि बच्चों के पेट फूले होते हैं लेकिन हाथ पांव काफी कमजोर होते हैं। अब मैं समझी कि ये मैम की स्थिति में हो सकता है। तो मेरी सभी से आग्रह है कि आपको जब कोई बच्चा पतला दिखे या अक्सर बीमार रहे तो तुरंत उसे नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ले जाकर MUAC पट्टी से माप कीजिए और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए।
4: दीदी हमें लड़कवा का परेशानी होता खाना खवावे में, ओका भूखवा नहीं लागत है, का यहू को पूछड़ कर अच्छा होए?
0: हाँ सुनीता बहन, जब बच्चे को भूख नहीं लगती, बार बार खाना उगलता है या हर चीज से मुंह मोड़ता है तो उसका टेस्ट करवाएं। ये परीक्षण NRC या पोषण पुनर्वास केंद्र या PSC में होता है जहां देखा जाता है कि बच्चा पोषक आहार को कितना खा सकता है। अगर भूख कम है तो ये गंभीर संकेत हो सकता है।
1: तो क्या सबके लिए जरूरी है कि सिर्फ वजन या लंबाई ही नहीं भूख पर एक नजर रखे? सैम और मैम की पहचान एक माँ के लिए सबसे पहला कदम उसके बच्चे की जान बचाना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और हम सब मिलकर आंगनवाड़ी, आशा, ANM और माताएं बच्चों को फिर से ताकतवर बना सकती हैं। मैम के बच्चे को हम सामुदायिक स्तर पर ठीक कर सकते हैं, यानी कि घर पर भी, और सैम के बच्चों को NRC में भर्ती कर सही पोषण, दवा और देखभाल दी जा सकती है।
3: और NRC का खर्च?
0: सरकारी योजना के तहत NRC में भर्ती और इलाज बिल्कुल मुफ्त है। वहाँ माँ के रुकने, खाने और देखभाल की भी पूरी व्यवस्था होती है।
4: दीदी, मध्यम स्तर के कुपोषित बच्चों का घर पर का खिलावा जा सकता है?
0: घर पर हम स्थानीय और समस्त पोषण युक्त भोजन बना सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन खिचड़ी, यानी कि दाल, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियां मिलाकर हम खिचड़ी बना सकते हैं। सत्तू और गुड़ का लड्डू बना सकती हैं। चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों का दलिया बना सकती हैं। बाजरे की रबड़ी और दूध के साथ उसे दिया जा सकता है। जरूरी है कि बच्चा एक बार में थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन दिन में 5 से 6 बार उसे खिलाना चाहिए।
3: और पिए खातिर?
0: और पीने के लिए साफ पानी, छाछ, नींबू पानी, हल्का सूप सब बहुत अच्छे हैं। याद रहे, हर खाने में थोड़ा सा घी, तेल या मक्खन भी जरूरी है, ताकि भोजन में ऊर्जा बनी रहे।
6: लेकिन दीदी, सब कुछ हमेशा घरे ना ही मिल जाता है।
0: सही कह रही हो, इसीलिए तो सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाला टेक होम राशन, यानी कि THR का बहुत बड़ा सहारा दे दिया है। और अगर आपका बच्चा मैम या सैम की स्थिति में है, तो आपको अतिरिक्त पोषण भी मिल सकता है। बस आपको यहाँ आकर खुद को रजिस्टर कराना होगा।
3: और अगर बच्चा तब्बो न खाए और खाए के कोई उपाय करे, जैसे बच्चा खाए मतनी रुचि ले?
0: बच्चों को साथ बिठाकर प्यार से खेल खेल में खिला सकती हैं। कृपया एक ही खाना बार बार ना दे, अलग अलग रंग और स्वाद की चीजें देने से वो उत्साहित होंगे।
7: और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा अब उस गंभीर स्थिति से बाहर है?
0: जब बच्चा कमजोर होता है और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, तो हर 15 दिन में उसका वजन मापा जाना चाहिए। अगर सुधार हो रहा है तो आपका इलाज काम कर रहा है, और जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखें। अगर नहीं तो PSC या NRC में तुरंत जाएं। और आप सभी याद रखिए, जन्म के समय कम वजन वाले शिशु में कुपोषण का जोखिम अधिक होता है। यदि लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन का सेवन नहीं किया जाए, तो बच्चा धीरे धीरे कुपोषित हो सकता है। दस्त जैसी बीमारियां शरीर में अत्यधिक पोषक तत्वों को हानि का कारण बनती हैं, जिससे बच्चा कुपोषित हो सकता है। तीव्र श्वसन संक्रमण, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बच्चे के पोषण स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
1: और एक बात का ध्यान रखें, रोगों से बचाव का एक और तरीका है साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, टीकाकरण और साफ सफाई। ये सब कुपोषण से लड़ने में आपके हथियार हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने RJ आकांक्षा। और आजकल सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे पोषण अभियान, अस्पताल पोषण थाली, वजन त्योहार और गांव स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान।
1: मतलब ये है कि पोषण सिर्फ रसोई की ही नहीं, पूरे गांव की जिम्मेवारी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और माँ का प्यार, आंगनवाड़ी का साथ और गांव की जागरूकता, यही है सही सेहत का राज, जिससे मिलेंगे अनेक लाभ।
8: आंगनवाड़ी दीदी, आप चाहे तो गांव की सभी माओं को सिखा सकती हैं, ताकि घर पर ही शुरुआती पहचान हो सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि कुपोषण कोई अकेली समस्या नहीं, ये भोजन, देखभाल, साफ सफाई और प्यार सबका मेल है। लेकिन आपसे विदा लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साल 2025 तक दुनिया भर में बच्चों में स्टंटिंग, कद में रुकावट, वेस्टिंग कमजोरी, एनीमिया खून की कमी और कम वजन को घटाने के लक्ष्य बनाए हैं। ये लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब आप सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक आंगनवाड़ी आइए, सेवाएं पाइए और अपने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इन सभी का लाभ उठाइए।
9: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
10: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9289176, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। भाई आज आ गए हैं हम फिर से एक बार, हमने एंट्री कर ली है सुन सहेली में प्यारे से मौसम के साथ और प्यारी प्यारी बातों के साथ। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले अपना हाल चाल बता दें और आप सभी का पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली और दोपहरिया तो वाकई है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी और मौसम ने भी कर दिया है इशारा कि बहुत ही प्यारा सा एक मौसम है और उसके साथ बहुत ही प्यारी ये दोपहरिया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से भी और साथ ही साथ में, आज आप सोच रहे होंगे ना कि भाई ये क्या बात है, अंशिका जी अकेले कहाँ है, हमारी समता जी कहाँ हैं? वो तो मैं बता दूँ कि मैम आज छुट्टी पे हैं, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से वो अभी नहीं आ पाईं, सो वो छुट्टी पे हैं। लेकिन लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, वो कल आपसे आकर के ज़रूर मिलेंगी और बहुत सारी आपसे बातें करेंगी। फ़िलहाल के लिए तो भाई मैं हूँ और मैं आपसे बातें करूँगी और साथ ही साथ में इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आएं, अपनी एंट्री दर्ज करवाएं और जो कि आज मैम हमारे साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, सो हम उनके बारे में बातें करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके लिए आज अच्छी सी द लाइन्स भी पढ़ेंगे और उन्हें बहुत बहुत बहुत सारा याद करते हुए आज के शो को करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाली हैं, जुड़ने वाली हैं, इस सब का आप करिए इंतज़ार, पर उससे पहले हो जाइए तैयार क्योंकि आज का जो हमारा दिन है वो बहुत ही प्यारा सा है और वो हमारा दिन आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि सुन सहेली में बच्चों का दिन, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, बच्चों की पाठशाला, बिल्कुल बच्चों पे बात होगी, बहुत सारी बात होगी। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमारा रोज़ का रूटीन होता है कि आप सभी को शुभ दोपहर।

समता और आरजे अंशिका। लेकिन आज ऐसा है कि आज हमारी जो समता मैम है ना, वो फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी नहीं है। सो आज उन्हें हम याद करेंगे। और रोज़ जब मैम पोएट्री पढ़ने वाली होती हैं तो मैं उन्हें रास्ता देती हूँ ना, मैम कहती हैं कि अंशिका अब तो तुम रास्ता दोगी। ओके, और दीपक जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आंटी अंशिका। मैम गुड आफ्टरनून आपको भी। और मैम बोलती है ना, मैं हूँ आपकी आरजे समता, और फिर मैं कहती हूँ ना, मैं हूँ आरजे अंशिका। तो बिल्कुल वही वाला है हमारा, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की दूरियाँ नहीं होती हैं, वो भले ही सामने नहीं है पर दिल से बहुत पास है। तो कुछ लाइंस से शुरुआत करूँगी और ये उन्हीं को डेडिकेट मैं करना चाहूँगी। अगर वो सुन रही होंगी तो आई होप, मैं उन्हें लाइंस डेडिकेट करती हूँ कि आ रही है उनकी याद, आ रही है उनकी याद, दिल कर रहा है प्यारी प्यारी फरियाद। आ रही है उनकी याद, दिल कर रहा है फरियाद। तो चलिए करते हैं सुन सहेली की शुरुआत कुछ आरजे समता की बातों के साथ। बिल्कुल बातों के साथ होगी शुरुआत, क्योंकि सुन सहेली है भाई, सहेलियां हो या ना हो, हम उनकी बातें और यादें दोनों अपने पास रखते ही रखते हैं। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं पोएट्री की तरफ। और आज की पोएट्री का जो हमारा टाइटल है वो बहुत ही प्यारा सा है, बचपन का कोमल मन। न कोई छल है न कोई कपट है, न कोई छल है न कोई कपट है, बचपन का मन होता है कितना पावन। जो कोरी स्लेट पर लिखी हो कोई कहानी, जैसे कोरी स्लेट पर लिखी हो कोई कहानी, या जैसे बरसता हो खुशियों का सावन। तितली के पीछे वो नंगे पांव भागना, कागज की कश्ती को पानी में बहाना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, पल भर में फिर मान जाना और सबको हंसाना। इस कोमल मन में कोई भेदभाव नहीं, इस कोमल मन में कोई भेदभाव नहीं, अमीरी गरीबी का कोई नाम नहीं। हर बच्चा यहाँ बस प्यार ही ढूंढता है, हर बच्चा यहाँ बस प्यार ही ढूंढता है, दुश्मनी का दिल में कोई काम नहीं, दुश्मनी का दिल में कोई काम नहीं। सच्चाई और मासूमियत की मूरत है ये, सच्चाई और मासूमियत की मूरत है ये, इस दुनिया में सबसे सुंदर नज़ारे हैं ये। सहेज कर रख लो, सहेज कर रख लो इस कोमलता को हमेशा के लिए, क्योंकि भगवान के घर के सितारे हैं ये। न कोई छल न कोई कपट, बचपन का कोई नहीं मन, बचपन का मन होता कितना पावन। बिल्कुल बचपन का मन वाकई बहुत पावन होता है, कोई छल नहीं होती, कोई कपट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस हमारे मन में हमारी बचपन की निश्चल यादें होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे खूबसूरत अगर कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं आपका बचपन ही होता है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही कह लें कि पीसफुल भी होता है, हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं पड़ता, लगता है ना लाइफ कितनी ईजी है। सो बहुत प्यारा होता है बचपन, और हम सभी कहीं ना कहीं अपने बचपन को जब भी याद करते हैं तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तो आ ही जाती है। तो आइए चलते हैं, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो ये है कि बीते हुए कल, कभी भी बीते हुए कल का दुख नहीं मनाते और आने वाले कल की चिंता नहीं करते, पूरी तरह से आज के दिन और आज के पल में जीना ही असली खुशी होती है। बिल्कुल कई बार होता है ना कि बीते हुए कल में कुछ चीज़ें हुई होती हैं हमारे पास्ट में, हम उनकी बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं उनके बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, वो मेरी लाइफ से चले गए, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हम अपने पास्ट को लेकर बहुत सोचते हैं। और अगर पास्ट की नहीं सोचते हैं तो फ्यूचर की चिंता करते हैं कि आज तो ये है, कल क्या होगा, कैसे करेंगे। अगर कई सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये एक बात होती है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन फ्यूचर की चिंता ना करें और पास्ट जो बीत गया है उसे अपने हाथों से जाने दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना बीता हुआ कल कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। अगर आपको फिक्र करनी है तो सिर्फ अपने आज की फिक्र करें, क्योंकि हमारे पास हमारा आज ही होता है। आज आप जो प्रेजेंट में जो कुछ भी जी रहे हैं ना, बस वही आपका अपना है। इसलिए हमेशा प्रेजेंट को जीते रहिए, प्रेजेंट को जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, ये सारी तो कहीं ना कहीं पास्ट हो गया, वो आप बदल नहीं सकते। फ्यूचर आने वाला है, वो क्या हम बदल सकते हैं, नहीं, लेकिन प्रेजेंट को हम जी सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं।

और ढेर सारी खुशियों को अपने पास ले सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीते रहना चाहिए। और इसी के साथ नव्या जी आ गई हैं, जो कि हमें गोंडा से सुनती हैं, लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून सेनोरिटा एंड स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप दोनों मैम? सो बहुत अच्छे हैं नव्या जी, हम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं ज़रूर बताइए। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए इस सॉन्ग के उस पार तत्व के लिए, आप सुने आपका अपना पसंदीदा फेवरेट वाला शो, जिसका कि नाम है सुन सहेली विथ आरजे समता एंड आरजे अंशिका। सो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: सहेली विद आरज समता एंड आरजे अंशिका। और बहुत ही प्यारे से ब्रेक के बाद में वापस आ गए हैं हम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाली हैं। वैसे हम उन्हें फैमिली मेंबर भी कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी ज्ञानस्थली फैमिली से ही हैं। लेकिन हमारे पास आज है कौन, चलिए कुछ जैसे कहते हैं ना कि जैसा हो अंदाज वैसा ही कुछ बयां करने का अंदाज भी होना चाहिए। तो भाई म्यूज़िक सुनना किसे किसे पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और कहते हैं ना कि म्यूज़िक सिर्फ सॉन्ग्स ही नहीं होते, वो हीलिंग थेरेपी भी होती है। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और सिर्फ म्यूज़िक सुन लें तो मूड जो है वो यूं बदल जाता है और फटाफट से अच्छा हो जाता है। तो कुछ आज हमारे पास हमारी जो गेस्ट हैं वो भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुरीला गाती भी हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी करती हैं। तो आज हमारे साथ हमारी ज्ञानस्थली फैमिली से जुड़ रही हैं किरण पांडे मैम, जो कि हमारी म्यूज़िक डिपार्टमेंट से हैं और बहुत ही प्यारा गाती हैं और बहुत ही प्यारी है उनकी आवाज़। तो अगली आवाज़ आइए सुनते हैं मैम की।
6: हेलो, नमस्कार।
5: नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
6: बिल्कुल ठीक है, कैसी हूँ अंशिका?
5: बहुत अच्छी हूँ मैम।
6: अच्छा, तो भाई अब तुमने बताया है कि मैं म्यूजिक टीचर हूँ, तो बिना गाए तो मैं रह नहीं सकती।
5: बिल्कुल नहीं,
6: है ना। और सावन अभी है, थोड़ा सा सावन के गाने और गा लें।
5: जी बिल्कुल,
6: नहीं बाद में मुझे पेट में दर्द भी होगा कि अरे मैंने गाया नहीं सावन के गाने। तो एक फिल्मी गाना मैं सावन का गाती हूँ, वैसे गले में थोड़ी खिचखिच है लेकिन सुना दे रही हूँ।
5: जी बिल्कुल।
6: सावन का महीना पावन करे शोर, सावन का महीना पावन करे सोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा।

0: वाह, मैं
1: मेरी आदत है ना गाने की
0: जी मैम,
1: तो मैं बिना गाए नहीं रह सकती अंशिका, ये मेरी कमजोरी ही समझ लो।
0: बहुत अच्छा गाया आपने मैम, और मैं तो आपकी आवाज में बिल्कुल खो गई थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बारिश में भीग रही हूँ।
1: क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सुनकर भी, चूंकि मेरी गले में थोड़ी सी खिचखिच हो रही है। असल में मौसम ऐसा हो रहा है ना, जिसको देखो वायरल फीवर, वायरल फीवर, क्योंकि मौसम ठंडा और गर्म भी हो रहा है
0: जी मैम।
1: इसलिए मौसम से खुद भी बचें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी बचाएं, है ना। आज बात भी हो रही है बच्चों
0: जी
1: पर
0: मैम,
1: तो मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों को बचाएं, खुद भी बचें, क्योंकि लोग गर्मी तो बाहर है, फिर ठंडी भी होती है, एसी चलाकर बैठ जाते हैं। तो एक तो जब जरूरी हो तभी एसी चलाएं, और दूसरी बात आप पानी को उबाल कर पिएं, क्योंकि बरसात में इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा अटैक करता है, वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: है ना। ज्यादातर देखो पेट खराब हो जाता है बरसात में, लूज मोशंस हो जाते हैं, डिप चढ़ते हैं। तो इसलिए पहला काम ये करें कि पानी को उबाल कर पिएं। अगर उबाल नहीं सकते हैं, जिनके यहाँ प्यूरीफाई नहीं लगा है, फिल्टर नहीं लगा है, वो क्या करें कि पानी को भर के रख लें और उसमें फिटकरी को 2 से 4 बार घुमा लें। फिर वो पानी का जितना गंदगी पानी में जितना होगा वो सब नीचे बैठ जाएगा। फिर छान कर उस पानी को इस्तेमाल करें, ठंडा पानी नहीं पिएं।
0: बिल्कुल।
1: और एक काम ये भी करें कि बच्चों को खुद भी रात में सोते समय थोड़ा काढ़ा वगैरह प्रयोग करें। इसी समय काढ़े की ज़रूरत होती है, और काढ़े में पानी के साथ तुलसी की पत्ती और काली मिर्च, अदरक, दालचीनी ज़रूर डालें, और अगर मिल जाए तो थोड़ा सा पीपर भी डाल दें। तो ये जो आजकल सांस की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें कफ हो जाता है अंदर, तो इससे हमें सांस की दिक्कत होती है। और उसमें उसको पकाकर गुड़ डालें, चीनी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और इसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू 2-4 बूंद डालें और उसको सिप सिप करके पी जाएं और चुपचाप सो जाएं। ऐसा बच्चों को भी पिलाएं
0: जी। अभी आपने सुना लिसनर्स कि मैम ने कितने अच्छे घर के ही सारी चीज़ें बताई, और ये वो चीज़ें थी जो हमारी किचन में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मौजूद होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: आप इनका यूज़ ज़रूर करें, और हाँ, काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है ना, जैसे मैम ने भी बताया कि सर्द गर्म है, गर्मी भी हो रही है और सर्दी भी हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: हाँ, और मैं बताऊँ आज तुम्हारा टॉपिक भी बच्चों का ही है
0: जी मैम,
1: कि देखो एक बच्चा अगर किसी को नहीं होता है, उनसे पूछो बच्चों की कदर जिनके पास बच्चे नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बच्चे हों लेकिन बच्चे उनके पास नहीं हैं। तो बच्चों के लिए आप कहते हैं जीते भी हम उनके लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उन्हीं को खुश रखने के लिए उनकी व्यवस्था में लगे रहते हो, उनको और अच्छी व्यवस्था दी जाए, ये अच्छी बात है, पर एक लिमिट तक, है ना। जैसे आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि बच्चों की जिद कभी पूरी ना करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम।
1: हाँ, कभी नहीं पूरी करें। बच्चे जब छोटे होते हैं किसी बात का जिद करते हैं, आप उनको समझाइए, और मारिए भी नहीं बच्चों को, मारना भी नहीं है, अपराध होता है मारना। आप उनको समझाइए जितना समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए और उनको समझाने का भी प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं अभी लिस्टर्स मैम ने जो पॉइंट दिया वो बिल्कुल सही है कि समझना और समझाना होता है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना मैम कि मन किसी का बदलना बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है या ज़िद कर रहा है, हमें उसके मन को बदलना है ताकि वो बात दोबारा उसके मन में ना आए। अगर आप मारेंगे या वो करेंगे तो बच्चों को बस यही हो जाता है कि मम्मी पापा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही। और बता दूँ, आप इतने व्यस्त हो, आप अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो कि आप अपने बच्चे को वक्त ही नहीं दे पाते हो। ज़रा थोड़ी देर एक किनारे, हम एक कोने में बैठ जाइए, आप हम कह रहे हैं मत कीजिए पूजा पाठ, एक कोने में बैठ जाइए और विचार कीजिए अपनी दिनचर्या पर कि आप अपने बच्चों को कितना वक्त दे रहे हैं। एक तो वैसे भी वक्त नहीं था, ऊपर से मोबाइल आ गई। माताएं मोबाइल चलाना ज़्यादा अच्छा समझती हैं कि अपने बच्चों के साथ बैठ लें, थोड़ी देर अपने बच्चों की बात सुन लें, उनको समझें, समझने का प्रयास करें। क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं बच्चों को लेकर के, बच्चे भटक रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि आप व्यस्त हैं अपने काम में। ऐसा नहीं है कि आप पिता हैं, आप पैसे कमा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप बाहर निकल रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम दोनों की है, माता की भी और पिता की है।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो जब पिता बाहर से आता है तो चाहे 10 मिनट ही निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठे। आजकल क्या होता है अंशिका, मैंने भी देखा है कई घरों में चाय बन रही है तो सबके कमरे में चाय जा रही है। खाना बन रहा, अरे मेरा खाना यहीं ले आना।
0: जी मैम,
1: ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी प्रथा थी कि हम एक साथ बैठकर, जमीन पर बैठकर एक साथ मिलकर खाते थे, हंसी ठिठोली करते थे, बातचीत करते थे, अपनी बात रखते थे, आज कहीं ना कहीं बच्चे और माँ बाप सब उसी मोबाइल में और अपनी व्यस्तता के कारण गुम हो गए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और कहीं ना कहीं एक अलग मज़ा होता था लिसनर्स, और जब हम एक दूसरे की था मतलब अपनी थाली में खाना पूरा भरा हुआ होता था, लेकिन फिर भी अचार दूसरे की प्लेट से लेकर के खाने में मज़ा आता था, और ये कहने में मज़ा आता था कि अच्छा मम्मी ने तुमको खीर देखो ज़्यादा दी है और मुझे कम दी है। ये तब होता था जब हम साथ बैठते थे।
1: बिल्कुल,
0: बट अब ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रही है मैम कि उन चीज़ों को फिर से लाना चाहिए और अपनी आज की पीढ़ी को सिखाना भी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो अंशिका। और मैं बताऊं, आजकल ऐसा भी होता है कि बच्चे लोग कहते हैं अरे बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों स्ट्रेस में रहते हैं? आप उनकी काउंसलिंग करो। देखो, अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। दूसरी बात ये है, आपका बच्चा है, आप उसे अपने तरीके से, अपने ढंग से पालिए, ऐसे पालिए कि दूसरा कोई उंगली ना उठा पाए।
0: बिल्कुल मैम।
1: संस्कार दीजिए उसको, सबसे पहले तो संस्कार की बात आती है। आप पहले खुद संस्कारिक बने। होता क्या अंशिका, आप फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी पी रहे हो और बच्चे को मना करें ठंडा पानी मत पीना। पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, फिर आप अपने बच्चों को रोकिए।
0: बिल्कुल। तो आइए लिसनर्स, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और मैम से और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, पर उससे पहले आइए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय करते हैं, आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। Stay tuned.

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही पसंदीदा वाला शो जिसका कि नाम है सुन सहेली। सुन सहेली और वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां आपसे बातें करने के लिए और आपको कुछ बहुत ही प्यारा बताने के लिए। सो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों में जो पुराने संस्कार हैं वो होने चाहिए, क्योंकि वही उनकी नींव है। और कहते हैं ना, नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। सो आइए चलिए सीधे चलते हैं और बात करते हैं मैम से और जानते हैं उनसे कि उनके पास हमारे लिए और क्या है।
1: बिल्कुल अंशिका, वेलकम। मैं बता रही थी आपको
0: जी मैम
1: कि बच्चों के लिए जैसे बच्चों की काउंसलिंग कीजिए।
0: हाँ,
1: काउंसलिंग होनी चाहिए। जब वो स्कूल से आता है तो आप बच्चे की बातें सुनिए, उसके साथ बैठिए, कुछ पल निकाल कर उसकी बातें सुनिए और फिर उसके बाद उसको कुछ खिलाइए पिलाइए, थोड़ा सा खेलिए भी उसके साथ, क्योंकि बच्चों को पालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारा लक्ष्य भी होता है, आप समाज को एक अच्छा बच्चा देकर जाएं। आप समाज में रह रहे हैं तो समाज को कुछ लेने, अगर समाज से कुछ ले रहे हैं तो देना भी आपका फर्ज बनता है। तो कम से कम इतना करें कि एक स्वस्थ समाज को एक अच्छा बच्चा देकर के जाएं।
0: जी मैम,
1: है ना अंशिका?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई दोनों हमारे ही हाथों में होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही तुम कह रही हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो कोरा कागज होता है, उसको कुछ नहीं मालूम। और उसको पालने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा। आप करते ही हैं त्याग, अपने सुखों का त्याग करते हैं प्लस अपनी इच्छाओं को भी मारते हैं। बच्चों को जितना ज्यादा हो सके आप सोचते हैं कि उनको सुविधा देकर आप उनको बनाएंगे, नहीं, आप उनको अभावग्रस्त रखिए ताकि उनको कद्र हो। अगर आप उनको एक पेन भी दिला रहे हैं तो उनको बताइए कि बेटा ये 10 रुपए की पेन है और 10 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। उनको ये समझ दीजिए, समझ उनको आएगी जब वो थोड़ा अभाव में रहेंगे कि कौन सी चीज कितनी मुश्किल से प्राप्त की जा सकती है भले आपके पास बहुत कुछ हो। आप उनको अगर बहुत नाजुकता से पालेंगे तो फिर काम गड़बड़ होगा। जैसे अभी हाल ही में एक सुना होगा अंशिका तुमने, एक बच्चे ने जिद करी कि मुझे जो है फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए।
0: जी मैम।
1: और जब पिता शायद ई रिक्शा चला रहा था या क्या ऐसे कुछ, वो नहीं अफोर्ड कर सकता था, वो नहीं दे सकता था वो मोबाइल। तो आप अपने बच्चे को शुरू से, और ये चीजें जब बिगड़ जाती हैं तब आप कहते हो अरे मैंने तो ये किया मैंने वो किया, नहीं, बच्चे अपने माता पिता का सर्टिफिकेट होते हैं। बच्चे अगर अपना व्यवहार दिखाते हैं, अपने व्यवहार से काम करते हैं, वहां पर आप दिख जाते हो। हर कोई ये कहता है कि अरे भाई इनके माँ के संस्कार हैं, इनके पिता के संस्कार हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो उन बच्चों के बिगड़ जाने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही काम मैम ने।
1: बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि विभीषण रावण के राज में रहता था, तो रावण के राज में तो सारे राक्षस थे, फिर विभीषण ऐसे कैसे हो गए? ऐसे ही राम के राज में मंत्रा रहती थी, तो फिर मंत्रा ऐसी कैसी हो गई? आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तब से हो जाती है जब आप एक माँ बनते हैं या एक पिता बनते हैं। उस जिम्मेदारी को खेल खेल में नहीं लेना है, उस जिम्मेदारी को समझना है, क्योंकि वो बच्चा समाज में रहेगा, आप भी समाज में रह रहे हो, समाज का एक टुकड़ा, एक अंश बनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। अगर बच्चे स्ट्रेस में हो रहे हैं तो आप उनसे बैठें, बात करें, हर समस्या का सलूशन है, समाधान है, क्यों अंशिका?
0: बिल्कुल मैम,
1: है ना, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है ना?
0: बिल्कुल है, बस देखने वाला नजरिया चाहिए होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए आप हैरान ना हो, परेशान ना हो, अगर आपका बच्चा जिद्दी भी है, बहुत जिद कर रहा है, तो आप उसको संभालिए, उसको देखिए, कहते हैं प्यार से पत्थर पिघलता है। और मुझे पता है ये बात कि अगर आप अपने बच्चे को बिठा कर, अपने पास बिठा कर प्यार से बातें करेंगे, उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा मैं ये तुम्हें नहीं खरीद के दे सकती हूँ। मेरा बेटा अंशिका, मैं अपनी बात बताऊं?
0: जी मैम।
1: मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, यही 2.5-3 साल का, सारे तब उसमें बेबलेट बहुत चलता था, बेबलेट चरखा ऐसे लट्टू की तरह होता था।
0: जी जी।
1: तो वो पीतल का भी आता था, प्लास्टिक का भी आता था, तो वो जिद करता था मुझे मुझे भी चाहिए। तो मैंने एक प्लास्टिक वाली ऐसे मिला था 20-25 रुपए का,
0: जी
1: मैंने उसको लाकर दे दिया, हमने कहा लो इसको घुमाओ। फिर उसका ही दोस्त क्या उससे बड़ा था बच्चा, वो मेरी पड़ोस में था, वो पीतल वाला लेकर के आया, वो थोड़ा महंगा था। अब ये जिद कर बैठा, मुझे तो वही चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं दिला सकती हूँ तुम्हें, अगर चाहती तो अपनी कटौती करके मैं उसको लाकर दे सकती थी, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ।
0: जी जी।
1: लेकिन मैंने उसको ये बताया कि नहीं बेटा, ये मैं नहीं ला सकती हूँ। गुस्सा हो गया, थोड़ा देर जाके इधर उधर बैठा, मेरे से बात नहीं करी, 3 साल का था। फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि अभी ये खुद मेरे पास आएगा, बच्चा है ना। फिर जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको समझाया, दूसरों की चीज को देखकर लालच नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे पास प्लास्टिक वाला है तो तुम प्लास्टिक वाला चलाओ, वो भी तो घूम ही रहा है ना।
0: बिल्कुल।
1: मैं वो पीतल वाला नहीं खरीद सकती हूँ, ऐसी अगर तो उसकी आदत पड़ जाएगी, मैं उसकी जिद पूरी करूँ, उसकी आदत पड़ जाएगी तो कल वो आईफोन की बात करेगा जैसे उस बच्चे ने करी। तो ये सारी चीजें आप उसको 9-10 में नहीं, पैदा हुआ और जब वो चलना फिरना आपसे बात करना शुरू करता है तभी से उसको सिखाना शुरू कीजिए। कहते हैं कि संस्कार पेट से ही आते हैं, जब बच्चा पेट में होता है तभी संस्कार उसके अंदर पड़ सकते हैं और पड़ते हैं। अभिमन्यु नहीं था क्या? तो ये जो पुरानी चीजें हैं, हमें लगता है अरे हमारे जो पूर्वज थे उन्हें कुछ आता ही नहीं था। दरअसल अगर देखा जाए तो हमें कुछ नहीं आता, वरना इतने बिगड़े बच्चे तो नहीं हुआ करते थे जितने बच्चे आज हैं। आज की स्थिति क्या है अंशिका
0: जी? मैं
1: कि माता पिता अपने बच्चों से डरते हैं, बच्चे नहीं डरते माता पिता से, माता पिता डरते हैं कि अगर मैंने उनको कुछ कह दिया तो कहीं कुछ ऐसा न कर लें, अगर मैंने कुछ कह दिया तो कहीं कुछ ऐसा न कर लें। स्थिति ये इसीलिए आती है जब आप उनसे अपनी कनेक्टिविटी नहीं करते हैं। आप बिल्कुल पिता हैं तो बिल्कुल शेर की तरह बने बैठे हुए हैं, नहीं, पिता और पुत्र आपस में दोस्त हो जाते हैं जब वो कंधे के बराबर बेटा पहुंच जाता है। उसका जूता अपने पापा को होता है, पापा का जूता उसको होता है, तब वो पिता नहीं वो एक अच्छे दोस्त होने चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और सारी ही बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं। कहते हैं कि जिसने मन को साथ लिया उसने पूरी दुनिया साथ ली।
1: बिल्कुल।
0: इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता, हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं लेकिन सब कुछ मिल नहीं सकता, और जो मिला है वो बहुत मुश्किल से मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: उसकी कद्र करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। आपको आपके कहते ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक, आपको जो मिला है जितना मिला है उसको अपना भाग्य समझिए और भाग समझकर उसको एक्सेप्ट कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि कम से कम आपको रोटी और दाल तो नसीब हो रही है, भले सब्जी नहीं मिल रही है, पर अगर देखो पीछे मुड़के तो कई ऐसे हैं जिनको रोटी दाल भी नसीब नहीं है। तो जो मिला है जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, यही जीवन है। हमारी अपनी कमाई है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, उनकी वजह से हमारा ये बिगड़ गया, उनकी वजह से हमारा ये बिगड़ गया, ये हमारी अपनी कर्म कमाई है। हम जो करके आए हैं उसका भुगतान करते हैं, कुछ पीछे किया होगा, अगर इधर अच्छा कर रहे हैं तो कुछ पीछे करके आए होंगे, उसी का दंड मिलता है और आपको भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। हार मत मानिए जीवन से कि अगर बहुत ज्यादा कष्ट है तो हमने सुसाइड कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस जीवन को संभालो और संघर्ष करो, लड़ाई करो, तब जाके जीवन कहीं जीवन होता है। अगला जीवन तो बना लो, ये जीवन तो बिगड़ गया किन्हीं कारणों से, पर आने वाला जीवन, अगला जो जीवन है उसको तो बना लो। और मैं सभी माताओं, सभी बहनों, सभी जो भी गार्जियंस हैं, फादर हैं, भाई हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़िए, अध्यात्म की तरफ ले चलिए, उनको ये बताइए कि परमात्मा है। इतने ज्यादा मॉडर्न न बनिए कि वो कहीं कुछ है ही नहीं, और ये बिल्कुल गलत है। हम बोल रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, ये उसकी ही कृपा है, इसलिए अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़िए। इतने सारे मंत्र हैं हमारे पास, इतने जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, मंत्र हैं, उन बच्चों को बचपन से ही सिखाइए, गीता के श्लोक सिखाइए, गायत्री मंत्र सिखाइए, महामृत्युंजय मंत्र सिखाइए, ताकि अपना जीवन वो बदल सके। आप उन्हें इतने मॉडर्न न बना दीजिए कि कल को उन्हें सुसाइड करना पड़े या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े अपने बच्चों को लेकर के।
0: बिल्कुल सही कहा मैम ने। कहते हैं ना कि अगर जड़ काट दी जाए तो पेड़ हरा नहीं रह सकता,
1: बिल्कुल,
0: हमारा अध्यात्म, हमारा जो भी हम पढ़ते हैं सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ होती है कि हमें उसकी जरूरत है। संस्कार कहीं ना कहीं अगर आप में हैं तो वो दिख जाता है कि उनके अंदर संस्कार हैं।
1: बिल्कुल,
0: सूरज की चमक नहीं छुपा सकते हैं आप, उसी तरह अपना व्यवहार भी नहीं छुपा सकते। और किताबों से ही आता है, पढ़ने से ही आता है, समझने से ही आता है। कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारे शब्दों में मैम ने बता दिया, और मुझे भी, मैं जब मैं सुन रही थी तो लग रहा था कि हाँ वाकई, शायद इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की छांव बहुत ज़रूरी होती है, उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो भाव होते हैं, वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बस सुनना और समझना चाहिए।
1: अनुभव होता है इंशिका
0: जी मैम,
1: हम लोगों ने, अब अगर मैं 50 की हूँ तो 50 साल मेरे जीवन का अनुभव है
0: जी।
1: और अभी आप बच्चे हो, अभी आप 50 के नहीं हो, जब आप 50 के आओगे तो आपके भी जीवन का अनुभव हो जाएगा। आप अगर 16 साल के हो तो आपके 16 साल के जीवन का अनुभव है, और अगर मैं 50 की हूँ तो मैंने तुमसे कुछ बहुत ज्यादा देखा है, सुना है, जाना है। इसलिए बड़ों का एक हाथ अपने सर पर होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मैम, और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास बड़ों की जो हमारे ऊपर छत्र छाया है वो बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि हमें जब भी लगता है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमारी फैमिली से कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता है गाइडेंस के लिए। सो हम अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं, और यही कहना चाहूँगी, आज बच्चों का दिन है, अपने बड़ों का सम्मान करिए, उनके अनुभवों से सीखिए, क्योंकि वो कोई किताब नहीं सिखा सकती जो आपके बड़ों का अनुभव सिखा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही तुमने कहा, और मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में अपना जीवन देखिए, और उन बच्चों के लिए जिए जिनको आपने 9 महीने पेट में रखकर पैदा किया है, पाला है, पोसा है, तो उनके भविष्य के लिए सोचें।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बातों को सुन करके। थैंक यू सो मच, और हम फिर कोशिश करेंगे कि फिर मैम से बातें करें और मैम की बातों को जानें। लेकिन आज के लिए तो बस मैं मैम से यही कहना चाहती हूँ, फिर से एक बार दिल से थैंक यू सो मच।
1: वेलकम वेलकम अंशिका, आज मैं समता, आरजे समता को भी याद कर रही हूँ।
0: हाँ मैम, उन्हें तो हम भी बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी
1: मिस कर रहे हैं,
0: और मैंने स्टार्टिंग में भी अभी उनको मिस किया था और अभी भी मिस कर रही हूँ। और जब आप बातें कर रही थी तब भी उन्हीं की याद आ रही थी।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो भी ऐसी ही बहुत सारी अच्छी हाँ। बातें कहीं ना कहीं बताती हैं, और जब मैं सुनती हूँ तो मुझे यही लगता है कि बस मैं सुनती रहूं, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बोलूं और मैं सुनती रहूं, और फिर मैम कभी मुझसे कहती है अंशिका सो गई हो कि जाग रही हो, तो मैं कहती हूँ नहीं मैम, मैं जाग रही हूँ, बस आपकी बातें सुन रही हूँ। तो बहुत याद आ रही है
1: समता, बहुत अच्छी, बहुत
0: बहुत अच्छी मैम, मतलब क्या कहें उनके लिए, तो ऐसे लगता है कि आप क्या कहें। हम तो कहते भी है ना कि जैसे सबको लगता है कि अगर कोई गुस्सा करता है या कोई बोलता है तो वो इंसान, बस आपको समझने की जरूरत होती है कि वो भीतरी दिल से कितना अच्छा इंसान है। हमारी मैम भी वैसे ही हैं कि भले वो थोड़ा सा गुस्सा कर देती हैं कभी कभी, बट वो दिल की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद है मेरा अंशिका तुम्हें भी।
0: थैंक यू मैम।
1: सभी लिसनर्स को हमारी बातें अच्छी लगी तो फिर हमें फिर दोबारा याद कीजिएगा, मैं
0: जरूर
1: आऊंगी
0: जरूर,
1: और समता को भी बहुत ढेर सारा प्यार।
0: तो चलिए, बहुत ही प्यार मिल गया हमें मैम का, और इसी के साथ वो गई, वो अभी भाई उन्हें भी अपने घर जाना है, क्योंकि मौसम जो है वो बारिश का है, और बारिश के इस मौसम में होता है ना कि हमें अपना काम खत्म करके अपने घर भी जाना होता है। लेकिन हम आएंगे आपसे मिलने के लिए बस इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, तो सुने इस प्यारे से गाने को। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: अरे यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा पसंदीदा शो जिसका की नाम है सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। और चलिए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो यहाँ नव्या मुझे दिख रही हैं और लिख रही हैं, मैम आप कहाँ गायब हो गई। तो बता दूँ नव्या कि मैं कहीं गायब नहीं हुई थी, बस आपको कुछ सॉन्ग सुनाने थे इसलिए चली गई थी और अब टाइमली वापस भी आ गई हूँ। और इसी के साथ रवि जी जुड़े हुए हैं जो कि हमें गोंडा से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। सनी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इसी के साथ अरविंद जी हैं जो कि मनकापुर से सुनते हैं और नव्या अगेन। सो आइए लिसनर्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक बच्चों को ही लेकर होने वाला है। क्या होता है ना कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं हम कह लें कि वो अपनी स्कूलिंग कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं इमोशंस आने लगते हैं कि उनको लगता है कि अरे मुझे हर चीज़ के लिए पापा से पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना कहीं ना कहीं आ जाती है, हम अवेयर हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बच्चों को समाज, पैसे की कीमत, माता पिता की मेहनत, सब कुछ महसूस होने लगती है। जैसे कि इससे पहले हमारे साथ किरण मैम जुड़ी हुई थी और हमने इस टॉपिक पे उन्होंने कहीं ना कहीं बात की और बताया कि किस तरीके से बच्चों को उनकी एक आत्मा जो है उससे जुड़ा होना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए, उनमें संस्कार होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आप इस तरीके से अवेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात भी होती है। बच्चों में इन भावनाओं की शुरुआत धीरे धीरे होती है, जब वे दूसरे दोस्तों को खुद से फैसले लेते हुए या अपनी पॉकेट मनी को मैनेज करते हुए देखते हैं तो वो भी वैसा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बड़े होते हुए बच्चे, ये टीनेजर्स की अगर हम बात करें, तो वो ये समझ जाते हैं कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मेरे लिए बहुत काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और इसलिए मुझे टाइम टू टाइम उनसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। कहीं ना कहीं एक बचत की भावना आती है कि हमें अपनी पॉकेट मनी से कुछ बचाना चाहिए। उन्हें लगता है कि हर छोटी चीज़ के लिए, ज़रूरतों के लिए बार बार पैसे मांगना, ये उनको सही ना कहीं उनकी जो एक सेल्फ अवेयरनेस होती है वो रोकती है कि नहीं नहीं बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है और क्यों ना मैं खुद से ही बचाऊं। और बच्चे जब ये देखते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आज इसी पे बात होगी कि क्या होते हैं इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और क्या होते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट की तरफ। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, खुद के पैरों पर खड़े होने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियां लेने लगते हैं और कहीं ना कहीं मेंटली एक तरीके से तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब मुझे ये चीज़ इस तरह करनी है। वो समझने लगते हैं, कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होने लगते हैं। सेकेंड आता है कि उन्हें फाइनेंशियल वैल्यू होने लगती है। जब पैसे मांगने में माँ बाप से हमें संकोच होता है तो हम फिजूल खर्ची नहीं करते और पैसों की अहमियत समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चों में मैच्योरिटी को भी दर्शाता है, बताता है कि आपका बच्चा अगर ये सोचता है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मम्मी पापा से नहीं कहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को समझ रहे हैं, उनमें बचपना नहीं है कि अरे छोटी छोटी

के लिए। वैसे ये बचपना नहीं होता है, मतलब हक है हमारा कि हम लें, बट फिर भी उन्हें लगता है कि मेच्योर रहो, जितने की ज़रूरत है उतने ही खर्च करो, ज़्यादा ना खर्च करो। अगर बात करें निगेटिव इफ़ेक्ट की, तो अगर इस चीज़ को सही से ना संभाला जाए तो इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बच्चों में झिझक आ जाती है और वो अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए को भी छिपाने लगते हैं, जैसे किताबों के लिए ज़रूरत है, कोर्स के लिए ज़रूरत है, या किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो वो मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को दबाने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। और साथ ही साथ में उनमें अपनी ज़रूरतों को पूरा न कर पाने की वजह से या मांग न पाने की वजह से बच्चों के अंदर ही अंदर घुटन आने लगती है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं, उनमें तनाव भी हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चों में आप देख रहे हैं ऐसे कुछ चेंजेस की जिसकी वजह से उनमें ये भावनाएं आ रही हैं, तो आपको ही उन्हें समझाना है कि बेटा देखो, अभी आप काम नहीं करते हो ना, तो आपका हक है कि आप मुझसे लीजिए, इसमें आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कि आप मेरे पैसों की मतलब मेरी और पैसों की बहुत वैल्यू करते हैं, समझते हैं अपने घर को, घर की सिचुएशन को, लेकिन फिर भी आपको मुझसे लेना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल यही सही है। अगर इस तरीके से आप बच्चे को समझाएंगे तो वो समझेगा, और सिर्फ इन जो ये फीलिंग होती है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को ही लेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को नहीं लेगा। सो आइए चलिए लिसनर्स, चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा हम सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, आएंगे इस सॉन्ग के उस पार आपसे बातें करने। और अभी हमारी मॉरल स्टोरी जो है वो अभी बची हुई है, तो मॉरल स्टोरी को हम सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग स्टेडियम।

बिल्कुल तुझे चाहते ही रहेंगे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के सॉन्ग सॉन्ग के साथ हमने एंट्री कर ली है क्योंकि अभी मॉरल स्टोरी हमारी जो है वो बाकी है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी सी मॉरल स्टोरी को, और इस मॉरल स्टोरी के बाद में हम फिर से आपसे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं मॉरल स्टोरी की तरफ। हमारी आज की जो मॉरल स्टोरी है वो हमारी श्री कृष्ण कन्हैया जी की लाइफ से रिलेटेड है। तो चलिए सुनते हैं और बताते हैं आपको कि इस मॉरल स्टोरी में है क्या। सो इस मॉरल स्टोरी में है ये कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ दोस्तों के साथ गाय चरा रहे थे। दोपहर में सभी बच्चे एक पेड़ की छांव में बैठकर अपने अपने घर से लाया हुआ खाना भोजन करने लगे। श्री कृष्ण के पास मक्खन मिश्री थी, जबकि सुदामा और अन्य ग्वालों के पास सूखी रोटियां थीं। वो उसे लेकर आए, और इसी के साथ भाई आज समता जी ने एंट्री कर ली है हमारे चैट बॉक्स में। सो वेलकम मैम, और कैसी हैं आप, फटाफट से अपना हाल बता दें। और आपका आप ही के घर में यानी कि सुन सहेली में बहुत बहुत स्वागत है मेरे यानी आपकी अंशिका की तरफ से भी और हमारी लिसनर्स की तरफ से भी। सो मोस्ट मोस्ट मोस्ट वेलकम आपका मैम। और सो आप तो आपकी आरजे समता भी आ चुकी हैं, तो लग चुके हैं चार चांद हमारे चैट बॉक्स में, और इसी के साथ हम स्टोरी को सुनेंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे। सो मैम के साथ आज भले ही वो यहाँ पे मतलब हमारे साथ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चैट बॉक्स से तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, इसे कहते हैं प्यार। सुन सहेली से और अपने घर से उन्हें इतना ज़्यादा मतलब प्यार है, वो कहती है ना कि सुन सहेली हमेशा मेरा घर ही है, तो इतना वो मानती हैं कि कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई ही होती हैं। सो आइए लिसनर्स, इस स्टोरी को हम फटाफट से कर लेते हैं कंप्लीट। सो ये स्टोरी है कि जब श्री कृष्ण माखन और मिश्री थी उनके हाथों में, सब खाने लगे, जबकि सुदामा और जो उनके और दोस्त थे वो सूखी रोटियां लेकर आए थे। अपने दोस्तों को संकोच करते हुए देख श्री कृष्ण ने कहा, आज हम सब अपना खाना आपस में बांट कर खाएंगे। तभी एक ग्वाले ने अपनी सूखी और आधी खाई हुई रोटी बहुत ही संकोच करते हुए छुपाई, तो श्री कृष्ण ने हंस कर उसके हाथ से वो सूखी रोटी छीन ली और बड़े चाव से खाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम से दी गई सूखी रोटी भी दुनिया के इस 56 भोग से ज़्यादा अच्छी लगती है। यह देखकर आकाश से भगवान ब्रह्मा देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी एक साधारण ग्वाले की जूठी और सूखी रोटी खा रहे हैं। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के मन की बात जान ली और मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु, जहाँ सच्चा प्रेम और दोस्ती होती है वहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद नहीं होता। मैं केवल प्रेम का भूखा हूँ, 56 भोग का नहीं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने आपको सोचने पर मजबूर हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका लिया। सो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है लिसनर्स कि इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में कभी गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं होता। भगवान और सच्चे मित्र केवल हमारे साफ दिल और दिल के प्यार से ही जुड़ते हैं। दिल के प्यार का मतलब होता है कि निस्वार्थ आप किसी को प्यार करें। सो कहीं ना कहीं ये एक बात होती है कि हमें दिल से जुड़ना चाहिए और दिल से ही बातें करनी चाहिए, क्योंकि दिल की बात जो होती है वो सीधा दिल तक जाती है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या है, कोई डजंट मैटर, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि आपके दिल में किसी के लिए कैसी फीलिंग्स है, हमारा दिल किसी के लिए क्या महसूस करता है, इस बात से फ़र्क पड़ता है, न कि इस बात से कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। कहते हैं ना कि जब श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, वाकई में इसका बहुत प्यारा उदाहरण है कि हमारे जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने सुदामा के प्यार को, उनकी दोस्ती को सबसे पहले रखा, और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती को ही वो हमेशा महत्व देते रहे, उन्हें ही प्यार करते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सुदामा की कंडीशन क्या है, मतलब वो कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। और इसीलिए श्री कृष्ण हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत नटखट, बहुत सारी बातें करने वाले,
बहुत जल्दी हम मान लेते हैं नहीं वो तो बहुत नटखट हैं, पर अपनी नटखट और बाल लीलाओं में ही उन्होंने ऐसे ऐसे मैसेजेस दिए हैं कि अगर उन्हें हम समझें तो हम जानेंगे कि कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है चीज़ों को समझना। सो इसी के साथ नव्या जी लिख रही हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन। नीना जी आ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और मैम तो आ ही चुकी थी, मैम भी आ चुकी हैं और उनका भी हमने वेलकम कर लिया है। सो आप सभी लिसनर्स, चलिए चलते हैं। जो गाना हमने बीच में ही स्टॉप कर दिया था, अब तेरे दिल में रहेंगे, उसे सुनते ही आऊँगी सॉन्ग के बीचों बीच आपको बाय-बाय बोलने के लिए, क्योंकि अभी हमारा समय थोड़ा सा आपसे बाय-बाय करने के लिए बाकी है। तो बाय-बाय बाय बोलेंगे, बट उससे पहले इस प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। आइए

तुझे अपना कहेंगे कसम से इसी बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। लिसनर्स, कल मिलूंगी मैम के साथ आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में, जिसका कि नाम है सुन सहेली, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से कहना चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और मैम से तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि उनकी बहुत याद आ रही थी, उन्हें बहुत मिस किया, और बस अब तो एक्साइटेड हैं कल उनसे शो में मिलने के लिए। बाय बाय लिसनर्स, टेक केयर।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 3:04 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोना शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और इस सुहाने से सफ़र का आगाज़ वापस से होने जा रहा है, क्योंकि ये वक्त है आपके अपने फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा का। तो अपनी फरमाइशों को लगातार भेजते रहिए 6393316429 पर। और आइए चलते हैं, ट्यून करते हैं हमारी पहली फरमाइश, जो कि सभिया जी की है। नहीं जाना, और नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना फिलहाल। मैं तो ढूंढ ढांड के आई हूँ दूर दराज से। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए इस गाने को, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस।
1: वो जा रहा है और तू उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाई। टोन वाली, आज वो तेरे दिल की बात सुनेगा भी और समझेगा भी। चल।

क्या बात है भाई, सविया जी की फरमाइश थी नहीं जाना, तुलसी कुमार की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे। और अगली फरमाइश को ट्यून करने से पहले आइए आपके चैट बॉक्स के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस आ चुके हैं। और आपको बता दें, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, ये है आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा। हमारे साथ जुड़ी हैं नाजिया अंसारी जी, नव्या गोंडा जी, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं दीपक जी। और आप सभी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम उन्नति जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून डियर मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून आज उन्नति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपक जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। मिश्रा जी गोंडा से जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। और सवाल है कि हमारी आकांक्षा मैम कब आएंगी? आपका दिल तोड़ते हुए माफी चाहते हैं, लेकिन आकांक्षा मैम अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए कुछ और कर रही होंगी, और फिलहाल के लिए वो अब वापस नहीं आने वाली हैं। अभी आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा हर दिन कॉल ट्यून गोंडा में, अफसोस की बात है। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो आया है देवी प्रसाद जी का, तो इन्जॉय कीजिए। आज उन्होंने 90s का एक नगमा फरमाइश की है, गाने का नाम है आखिर तुम्हें आना है, थोड़ा देर लगेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। एंड सनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। लगातार अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश और बारिश का स्पेशल वाला गाना आप एंजॉय कर रहे हैं। आखिर तुम्हें आना है लेकिन जरा देर लगेगी। उदित नारायण सपना मुखर्जी की आवाज है और हम आपको बता दें सुदर्शन फकीर ने लिखे हैं इस गाने के बोल और चन्नी सिंह ने दिया है इस गाने को संगीत। और उसी के साथ मेरा आपसे एक सवाल है भैया, इस गाने के बीच में मतलब रोमांटिक गाने के बीच में हमारे सज्जन दत्त भाई साहब इसमें कुंग फू कराटे काहे करने लग जाते हैं? मतलब हम कुछ और भी मूव कर सकते थे लेकिन उन्होंने जापान का और चाइना को मिक्स करके कुंग फू कराटे दिखा दिया। व्हाई, कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? हम बारिश में लड़ाई झगड़े फसाद क्यों करने लग जाते हैं? एंड उसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर, लिख रहे हैं हेलो मैम, हेलो कैसे हैं आप? और राइट, आप सफर तय कर रहे हैं, आई होप आपका सफर खूबसूरत हो प्लस सेफ भी हो। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, है नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं आपके अपने वाले शो कॉल ट्यून गोंडा में। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं जो कि हमारे अमित कुमार जी की फरमाइश पर आई है, अलका जी की आवाज़ में इतना बेहद खूबसूरत गाना जो आज के टाइम पर मैं गुनगुना रही थी बिकॉज जब मैं घर से बाहर निकली थी तो बहुत ज़ोर की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और तब मैं बारिश से कह रही थी थम के बरस और थोड़ा थम के बरस। तो भैया आइए एंजॉय कर लीजिए अलका जी की आवाज़ में थम के बरस।

आप एंजॉय कर रहे थे अमित कुमार जी की फरमाइश और आवाज थी हमारी प्यारी अलका जी की थमके बरस तो जरा थमके बरस। और घर से निकलने से पहले हम भी यही चिल्ला रहे थे बिकॉज घर से पहला कदम बाहर रखते ही इतनी तेज बारिश स्टार्ट हुई थी, ऐसा लगा था आज भिगा कर ही मानेगी। और आते जब भीग चुके थे तभी बंद भी हो गई, झटके से शुरू झटके से ख़त्म। और आई वॉज लाइक ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने, मुझे भिगा क्यों दिया तुमने। फिलहाल आइए चलते चैट बॉक्स में और देख लेते हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। मुझे अपने घर को जाना है, ऐसे नहीं बोलते डियर, आप बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह बोल के दिखाइए कि मुझे मेरे घर जाना है, तो मैं आपको जाने दूंगी। फिलहाल के लिए केके जी हमारे साथ जुड़े हैं, केके गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स से लिख रहे हैं, डियर एंड डियर उन्नति जी नमस्ते, नमस्ते टू यू, कैसे हैं आप, हम हूँ जुड़ गए हैं, जी हाँ आपका भी स्वागत करते हैं। एंड इसके बाद लगातार आपके इमोजीज बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस सॉन्ग लिखा है केके जी ने। एंड सनी पांडे जी लिख रहे हैं, ओके वो अपने फ्रेंड को कुछ लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और आज लगता है जिस तरह से बारिश हो रही है मौसम बदल चुका है और आज हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी कहीं ना कहीं आपको भीगी भीगी ही नजर आएगी, भीगी भीगी प्लेलिस्ट, भीगी भीगी चैट बॉक्स, भीगे भीगे हम, भीगे भीगे आप। और घर के अंदर रहिएगा, चाय पकौड़ों का एंजॉय करते रहिए क्योंकि हम प्ले करने जा रहे हैं रिजु जी की फरमाइश बरस जा। कहाँ बरसना है बस ये बताइए, बादल तो तैयारी खड़े हैं बरसने के लिए। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोड, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

अगर हमारे रेडियो स्टेशन से इतनी आवाजें उठेंगी ना तो बादल कहेंगे लो बरस ही जाएं, बाढ़ बड़ आ ही जाए। वैसे भी मेरी गली के अंदर तो पहले से बाढ़ आ गई है। मुझे लग रहा है कि मुझे नाव वाव बनाकर तैरना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो तैरना आता नहीं है, नाव ही तैरा लिया जाए। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि हमारी नाज़िया अंसारी जी बहुत देर से इंतजार में बैठी हैं। और गाने का नाम है प्यार का अंजाम किसने सोचा है। ये सही बात है, जो मोहब्बत करता है वो अंजाम नहीं सोचता है, और जो अंजाम सोच लेता है वो मोहब्बत नहीं करता है कि नहीं। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, बहुत ही प्यारा सा नगमा है। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस नजर आई है इस गाने के अंदर, बेवफा फिल्म से इंजॉय कर रहे हैं आप प्यार का अंजाम, नाज़िया अंसारी जी की फरमाइश। और ये है आपका रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति।

प्यार का अंजाम किसने सोचा, बेवफा फिल्म से आप सुन रहे हैं कुमार सानू, अलका जी और सपना मुखर्जी की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल और नाजिया जी की फरमाइश। बेहद खूबसूरत पसंद है आपकी और लिख रही हैं, ज्यादा भीगोगी तो अच्छी अच्छी करोगी। जी नहीं, हम अच्छी अच्छी नहीं करते, हम अच्छू अच्छू करते हैं। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है दीपक जी की, तो आइए जरा उनकी आंखों में नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आंखों से ही उन्हें बातें करनी है। और उनका गाना कुछ इस तरह से है कि तेरी आंखों की कसम मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या बात है भैया, आंखों की कसम खा रहे हैं, अगर झूठी हुई तो आंखें चली जाएंगी। फिलहाल के लिए झूठा कुछ भी नहीं है, गाना बहुत ही खूबसूरत है, एंजॉय करते रहिए। ये बीच बीच में मेरी रोस्टिंग स्किल कहीं से आ जाती है और हम रोस्ट कर भी नहीं पाते हैं, बिकॉज आजकल सीलन का मौसम ज्यादा है ना बॉस।

पहले तो भाई मुझे ये बताओ, इस गाने में मोहब्बत का इकरार हो रहा है, इजहार हो रहा है, या सीआईडी की पूछताछ? क्योंकि हर वक्त पे तो यही हो रहा है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलती है। अरे अरे तौबा तौबा, मतलब कितना मजा आता है ना किसी को परेशान करने में, स्पेशली जब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, आपसे आकर बता रहे हो कि आप उनके लिए कितने खास हैं, कितने प्यारे लगते हैं, और आप कहें ना तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तारीफें सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आती है कि नहीं। फिलहाल राहुल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल तिवारी सिंचाई विभाग कॉलोनी गोंडा से आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। और इसी के साथ आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है रेनु तिवारी जी की। इतना खूबसूरत गाना है, इसको सुनने के बाद मेरा दिल गार्डन गार्डन होने जा रहा है, और ये गाना सच में आपका भी दिल चुरा लेगा, बिकॉज इस गाने का नाम ही है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। क्या बात है, आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और भाई इसको कहते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। और हमारे जनाब कहते हैं, हमारे जनाब जिनका नाम है के गुप्ता जी, की फोन चुरा लेना लेकिन दिल ना चुराना। लेकिन सोचिए जरा, जो फोन चुरा रहे हैं वो कितना कुछ चुरा लेते हैं, दिल चुराने में तो क्या ही आपका इतना भी नुकसान नहीं होगा जितना फोन चुराने से हो गया। क्या ख्याल है आपका? एंड सनी पांडे जी कह रहे हैं हमारे पास 36 दांत है, हाउ दिस इज पॉसिबल, मेरे 28 भी नहीं आए अभी तक। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है रईस साहब जी की फरमाइश पर, थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, और ये गाना फिल्माया गया है आपकी अपनी ऐश के ऊपर, यानी कि ऐश्वर्या राय के ऊपर। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुंडा विद राज युनिति। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमारे 90s की सिंगर और अदाकारा ने मिल करके एक सवाल का जवाब दे दिया है। और सवाल आजकल लोग कहते हैं ना कि क्या चाहिए लड़कियों को, बस यही चाहिए जो हमारी ऐश्वर्या राय फिल्मा रही है, फरमा रही है, बता रही है, जता रही है। सुनिए लीजिए बस, कि चेहरे को चांद कहो, जुल्फों को रातें, और अगर मैं बिगड़ू तो हकलाना भैया शुरू कर दो, क्योंकि तुम मुझसे डरते हो ना। तो भैया इस गाने के जो बोल लिखे थे ना, वो लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, और वो भली भांति जानते हैं कि किसको क्या चाहिए और किस बात से आपका दिन बनने वाला है। फिलहाल हमारी नाजिया जी लिख रही है, मैम आपने तो 400 वाट का झटका दे दिया, 28 दांत। जी हाँ, 36 दांत तो हमारे आज तक आए ही नहीं, हमने सुने भी नहीं किसी के, सिर्फ सनी पांडे जी को छोड़ के। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो आया महाराष्ट्र से, और वो सुनना चाह रहे हैं रमेश जी। गाने का नाम है मैं सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा। ओ माय गॉड, तो चलिए थोड़ा सा ग्रूवी ग्रूवी हो जाए, क्योंकि यह है कॉलर ट्यून गोंडा, और हम मिलते हैं इस फरमाइश के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून।

और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। वाह उन्नति मैम, पसंद आया और गुनगुनाओ ना। जी बिल्कुल गुनगुनाएंगे, लेकिन इस गाने के बाद, क्योंकि ये गाना हमको आता ही नहीं है गाइज। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश है, याद आ रहा है तेरा प्यार। ओ माय गॉड, आइए भैया एंजॉय करें, थोड़ा सा पुराना लेकिन थोड़ा सा खास, थोड़ा सा जबरदस्त। और ऑफकोर्स मिथुन चक्रवर्ती, हमारे बचपन के पसंदीदा एक्टर के ऊपर फिल्माया गया गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के दूसरा गाना।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे याद आ रहा है तेरा प्यार, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले सॉन्ग को ट्यून करने के लिए, क्योंकि भैया उस्मान खान जी की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है और आप एंजॉय करने जा रहे हैं चांदनी। ओ मेरी चांदनी, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला, नया नवेला वाला। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी जानवी जी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

जी, तो ये थी फरमाइश हमारे उस्मान खान जी की, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी जानवी जी और सुनीता जी की है। राखी का स्पेशल सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं, आपकी अपनी आज होती कॉलर ट्यून गुना में, तो एंजॉय करते रहिए सुनीता जी और जानवी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून गाइस।

0: सुनीता जी और जानवी जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया राखी स्पेशल सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। मुस्तफा जी लिख रहे हैं सऊदी से और आपका स्वागत करते हैं। आपने लिखा है गुड आफ्टरनून टू यू, एंड इसके बाद ओके मैम, कोई तड़कता भड़कता हुआ सॉन्ग नहीं है क्या, चला दीजिए, नाचने का मन कर रहा है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए फिर हम आपको सुनाते हैं एक तड़कता भड़कता हुआ गाना। लेकिन उससे पहले आप हमारे लिसनर्स की फरमाइशों को एंजॉय करें। और अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो आया है मथुरा से, ब्रज से, शारदा जी की फरमाइश, और आइए एंजॉय कीजिए आज राधा को श्याम की याद आई। सुंदर या मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के जो कि होने वाले हैं हमारे ही लिसनर्स के, अरविंद जी की फरमाइश आने वाली है बस कुछ ही पल में।
1: दिल को

लता जी की आवाज में आप सुन रहे हैं चांद का टुकड़ा। फिल्म से आज राधा को श्याम याद आ गया और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो आई है वो अरविंद जी की आई है और गाने का बोल है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है राधा जी और कुमार सानू की आवाज में। दिल है कि मानता नहीं, फिल्म से आप एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के और उसके बाद आपके लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग जो मेरी तरफ से होता है ऑफ कोर्स।

और ये गाना था हमारे अरविंद जी और के गुप्ता जी की तरफ से, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। ओम प्रकाश जी की फरमाइश आ चुकी है और उन्होंने लिखा है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरमाइश है, तुमसे मिलने को दिल करता है ओ बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो आइए एंजॉय करते हैं 90s का ये बेहतरीन नगमा, और इसके बाद हम मिलेंगे लेकर के आज की स्पेशल वाला डेडिकेटेड सॉन्ग जो आपके लिए होने वाला है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा।

ये फरमाइश थी हमारे ओम प्रकाश जी की, और उन्होंने फरमाइश की थी तुमसे मिलने को दिल करता है, जो हमने आपको सुना दिया। और आइए चलते हैं आपके डेडिकेटेड सॉन्ग की तरफ। और जैसे कि हमसे कहा गया था कि भैया हमको सुनना है एक तड़कता भड़कता गाना, बिकॉज आई वॉन्ट टू डांस, यानी कि मेरा डांस करने का मन कर रहा है, तो क्यों ना आज आपको सुना दिया जाए ग्रेट ग्रैंड मस्ती से रेशम का रुमाल। आइए इंजॉय कीजिए, और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, वक्त है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज के गाने आपको कैसे लगे, फीडबैक में जरूर से बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। और फिलहाल आपका अगला कार्यक्रम है ज्ञानसली बीट, तो सुनना मत भूलिएगा।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

You are listening. Bollywood Podcast. With Priyanshu Nayar.

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9281976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शाम का शो शुरू हो गया है, हाथ में आपके ऑफ कोर्स चाय की प्याली है, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसमें गोंडा की पर्सनालिटीज आती हैं, जी हाँ गोधुली। गोधुली में आज जिन मेहमान को हमने बुलाया है, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, बजाहिर है हमको पहले से भी अच्छे से जानते हैं, और गोंडा में ना जाने कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनसे पढ़ाई की है, एंड ऑफकोर्स आज कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है गोंडा का, जी हाँ आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं कॉमर्स के थॉमस इंटर कॉलेज में। सर सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में जिसका नाम है गोधुली।
2: थैंक यू अदनान जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
1: थैंक यू सो मच टू यू, एंड ऑफकोर्स आपने जैसा कि नाम सुना है, हाँ वही कॉमर्स वाले डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, जिनके आपने बहुत सारे बोर्ड्स देखे हैं, और ऑफ कोर्स काफी सारे आप भीड़ भी देखते थे जब सर कोचिंग पढ़ाया करते थे, काफी बड़ा नाम है सर का। तो आइए सबसे पहले तो आपके बारे में जाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट हैं आज, और आज हम उन पहलुओं पे भी नजर डालेंगे जो शायद ही आपको नहीं पता होगा। आपको इतना तो पता है कि भाई सर जो पढ़ाते हैं कॉमर्स में वो हमेशा आपको याद रहता है, और एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। तो सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दें।
2: मैं मूल रूप से सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील के सेमरी गांव का रहने वाला हूं। पिताजी पढ़ाई को लेकर के कि हम लोगों की अच्छी शिक्षा हो सके, इसके लिए जब लोग क्लास 8 तक की जो पढ़ाई रही वो सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर इटवा जनपद सिद्धार्थनगर में हुई। उसके बाद की शिक्षा के लिए वो गोंडा लेकर हम लोगों को चले आए। फिर 10th हमने मारवा इंटर कॉलेज से किया, 12th थॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा से किया, बीकॉम और एमकॉम दोनों एलबीएस पीजी कॉलेज से किया। उसके बाद कॉमर्स में ही डॉक्टरेट की डिग्री 2015 में मिली मुझे, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, और करंट टाइम में 1 दिसंबर 2020 से थॉमसन इंटर कॉलेज में एज असिस्टेंट टीचर कॉमर्स का ज्वाइन किया। 2000 मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में वो दौर कोरोना का था, और 2020 में वैकेंसीज आई थी यूपी गवर्नमेंट की टीजीटी और पीजीटी की
1: जी।
2: उस दौर में एक आपदा था ही, ये सच है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोग पैनिक थे, सारी ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कहते हैं कि आपदा को जो अवसर में बदलता है वो वाकई में कहीं ना कहीं अपने नाम को बहुत आगे ले जाता है, और अपने अपनों के लिए भी बहुत कुछ करता है।
1: बेशक
2: उस दौर में एक तो मैं जरूर कहूँगा कि मेरे लिए मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है, और स्पेशली मेरे छोटे भाई सुमित श्रीवास्तव जी का, जिनका मैं हमेशा आभारी रहता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक अचीवमेंट्स में मतलब उनका पूरा पूरा साथ रहा, चाहे वो छोटे जरूर हैं एज में, बट गाइडेड जिस तरह से वो करते हैं वो शायद कोई बड़ा वैसे गाइड करेगा मुझे।
1: ओके
2: तो मतलब पापा मम्मी माय लाइफ पार्टनर हर किसी का, सिस्टर्स का, सबका सपोर्ट बहुत रहा। तो उस टाइम पे ये हुआ कि कोचिंग मैं 2010 से 2020 तक पढ़ाता रहा, और जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ा नाम था, धीरे धीरे हम आपसे बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट से हम अटैच इतना हुए, और उस जर्नी को 10 ईयर्स की जर्नी कैसे सक्सेसफुल हम लोगों ने बिताई।
1: बेशक
2: लेकिन 2020 में जब कोरोना का टाइम आया तो ये हुआ कि क्यों ना कुछ और अच्छा किया जाए, तो फिर वैकेंसीज आई और मैंने तैयारी की। और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आपदा को अवसर में हर किसी को बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बदल सकता हूँ या आप बदल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हार्डवर्क ईमानदारी से करता है वो हर कोई बदल सकता है। उस समय मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी के यहीं गोंडा में रहकर ही प्रिपरेशंस किया। मैं स्पेशली ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे लोगों का कहना होता है ना कि आप छोटे शहर से हैं तो आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट के जब टीजीटी और पीजीटी के पेपर हुए तो मेरी पूरी एजुकेशन इस गोंडा डिस्ट्रिक्ट से ही रही
1: जी,
2: और मेरे साथ उस टाइम पेपर देने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी साथ में बैठे हुए थे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पीजीटी में 90,000 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें रिटन में 180 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, उसमें से फाइनल सिलेक्शन 45 का हुआ था। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट से होने के नाते कहीं ना कहीं ज्यादा खुशी आपको भी होगी
1: जी,
2: कि मैंने उस पेपर में पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक हासिल किया।
1: वाह क्या बात है।
2: और टीजीटी में भी मैंने रैंक होल्डर रहा उसमें भी। अब मेरे पास उस समय दो दो ऑप्शंस थे कि मैं लेक्चरर में ज्वाइन करूं कि असिस्टेंट टीचर में। तो मुझे एक चीज यह लगा कि लेक्चरर में मुझे सीतापुर मिला, क्योंकि यूपी में 15 सीट्स केवल थी, और टीजीटी में असिस्टेंट टीचर में मुझे वो कॉलेज मिला जहां से मैंने खुद 11th 12th किया था,
1: यानी थॉमसन इंटर कॉलेज। क्या बात है।
2: तो मुझे यह लगा कि अगर आप उस कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, जिस कॉलेज ने आपको यहां तक पहुंचाया है, जिसने आपको इतना कुछ दिया है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके पीछे मेरी फैमिली भी पूरी इस बात के सपोर्ट में थी कि अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो एक तो अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं छूटेगी, ना अपने लोग छूटेंगे, और सबसे बड़ी चीज तो आप उस कॉलेज में आज पढ़ाने जा रहे हैं जिस कॉलेज से कभी आप पढ़ के निकले हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स मैं अपनी लाइफ का अभी तक मानता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ की एक जर्नी है अभी, मतलब अभी तो जहाँ मुझे जाना है वो बहुत आगे है,
1: ये तो अभी आगाज हुआ है
2: जी।
1: अंजाम है अभी आगे,
2: अंजाम भी बाकी है। और मैं ये चीज कहूंगा कि टीचिंग फील्ड में होने के नाते कि एक टीचर कोई भी हो उसे हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, और खासकर डिजिटल जो लाइफ हो रही है उससे हर एक चीज का चेंज हो रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि जो चीजें आज के हमने कुछ साल पहले पढ़ी थी या पढ़ाई थी वही चीजें आज भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और बच्चों का फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने के लिए, उन्हें अच्छा बताने के लिए जरूरी है कि खुद भी बहुत अपने आप को नई नई चीजों से आप अपडेट करते रहें, जिससे कि आप बच्चों में नए नए अवेयरनेस ला सकते हैं, नई नई चीजें आप कर सकते।
1: क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने जिस तरह से अपनी लाइफ के बारे में बताया बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, और मुझे लगता है कि इसको भी थोड़ा और करीब से जानना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मेरा वापस से आपको बचपन में एक बार फिर से ले चलते हैं, और सिद्धार्थ नगर के इटवा पे आपने बताया कि वो एरिया था जहां आपका जन्म हुआ, वहां पैतृक आपका निवास है। मैं जानना चाहूंगा बचपन कैसा बीता, किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं आप, बाकी बच्चों की तरह शरारती थे या बहुत चुप चुप रहते थे, कैसे थे आप
2: बचपन में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक बिलो द एवरेज में था। जैसे मैंने आपसे अभी बताया ना कि 10th से लेकर के और PhD तक की इस लाइफ को पूरा करने में, जहाँ तक मुझे लगता है और ये सच भी है कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी पढ़ाई अपने सही से किया, यानी सिंसियर होके किया, वो क्लास 10th से किया।
1: Okay.
2: मैं आपको इसका एक वाक्य छोटा सा बताना चाहता हूँ।
1: जी जी जरूर।
2: स्टार्टिंग में मैं फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं
1: जी,
2: कि मैं दो भाई दो बहन हूँ।
1: ओके।
2: और मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ।
1: ओके।
2: और ये सच है कि स्टार्टिंग से ही मैं नहीं जानता क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे, लेकिन मेरा पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन बहुत कम लगता था। इस बात को लेके मेरे पापा मम्मी बहुत ज्यादा, उनको ये लगता था कि बड़े हो और नहीं पढ़ोगे तो बाकी छोटे भाई बहन कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, उनके लोगों को लेकर के ये चीजें थी। लेकिन अब नहीं लगता था मन, तो नहीं लगता था,
1: नहीं लगता था, सही बात है।
2: फिर जब मैं ऐसे एक एवरेज स्टूडेंट की तरीके से पढ़ता गया, और मुझे याद है कि मैं और मेरी सिस्टर नीति श्रीवास्तव, जो 2014 के बैच की PCS ऑफिसर है
1: जी,
2: इस समय लखनऊ में वो पोस्टेड है, तो मैं दोनों एक क्लास में पढ़ा करते थे, और मुझे रोज क्लास में टीचर मारा करते थे।
1: ओके।
2: मेरी सिस्टर आके मम्मी पापा से यही कहती, मम्मी मैं कल से नहीं जाऊंगा क्योंकि भैया रोज मार खाता, मेरी बेइज्जती होती है।
1: ओके।
2: जर्नी ऐसे चलती रही, फिर हम लोग 9th से अलग अलग कॉलेजों में हो गए, वो गर्ल्स कॉलेज में, मैं बॉयज कॉलेज में चला गया, 8th तक को कॉलेज में थे हम लोग।
1: ओके।
2: टेंथ में मैं फेल हो गया
1: फर्स्ट टाइम ओके।
2: और मेरी सिस्टर पास हो गई। फैमिली में बड़ा था उस समय, मेरे फैमिली मेंबर्स में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आप लड़के पे ध्यान नहीं देते, मेरे पापा मम्मी को, कि तो कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो उस क्लास टेंथ का फेल होना था।
1: ओके।
2: मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय फेल ना हुआ होता तो आज मेरी लाइफ भी एक एवरेज लाइफ होती।
1: ओके।
2: अगर आज आपने स्टार्टिंग में कहा आपने इतने लोगों को पढ़ाया, लोग जानते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट्स मुझे ना मिला होता। तो उस क्लास टेंथ में फर्स्ट टाइम फेल होना, फिर मैं आपको बताऊं कि वो टर्निंग पॉइंट था और जिससे मैंने अपनी लाइफ में फिर आगे आज तक मैं कह सकता हूं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं।
1: Okay.
2: फिर मैंने हार्ड वर्क अपना स्टार्ट कर किया टेंथ में। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पास हुआ तो मेरे 39% टोटल मार्क्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अब और हार्ड वर्क करना चाहिए। ट्वेल्थ में 58.80 था। बीकॉम में मुझे लगा कि और अच्छे, तो बीकॉम एंड एमकॉम दोनों में LBSPG कॉलेज का टॉपर रहा।
1: क्या बात है।
2: फिर मैंने PhD की, MBA मेरा फिनांस में है, UGC नेट मैंने क्वालिफाइड किया।
1: वाओ।
2: तो लाइफ में आपका पास्ट कैसा था? मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप, मैं किसी आज ऐसे पर्सन की स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनका पढ़ा है, मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस किया है और
1: जो मैंने जिया है
2: वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ तक अचीवमेंट किया। तो मैं उन बच्चों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ जबकि मैं बिलो द एवरेज था, तो आप सारे तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए लाइफ में कभी मत देखिए आपका पास्ट कैसा था। जो बीत गया वो आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला कल है उसमें आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपका डेडिकेशन और आपका हार्डवर्क किसी चीज को पाने के लिए होना चाहिए।
1: बेशक, बिल्कुल सही बात आपने कही। और कितना ज्यादा हम इसको जोड़ के देख पा रहे हैं, मतलब मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है कि मैं भी एवरेज स्टूडेंट से पीछे रहा हूं, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं चीजें चेंज हुई। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन से आप ठान लेते हैं एक ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट हमेशा एक फेलियर होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: तो मुझे, मैं तो सर खुश नसीब हूँ और खुश नसीबी इस बात को मानता हूँ कि मेरी लाइफ में भी फेलियर आए ना, आते तो मैं जाग ही ना पाता और मैं भी वहीं का वहीं रह जाता। जो आपने कहा वही मेरे साथ भी है और मैं भी इस चीज को बहुत रियलाइज कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा बात हम करते हैं कि आपका एम्बिशन स्टार्टिंग से क्या था। बच्चों का होता है, अक्सर बताया जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर ISPCS। आपके साथ आपका कोई खुद का एम्बिशन था या फैमिली मेंबर्स में आपके फादर आपको कुछ बताते थे कि आपको ये बनना है, क्या था आपका?
2: नहीं, स्टार्टिंग से ही पापा का कोई ऐसा फोर्स नहीं था कि आपको यही चीज करना है, बट हाँ पढ़ाई को लेकर के मम्मी पापा दोनों लोगों का हमेशा ये रहा कि नहीं, आप जो है जिस भी ट्रैक में या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं क्लास 8th तक था, मुझे पता भी नहीं था इंजीनियर होता क्या है, तो मुझे लगता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्लास 8th तक की मैं बता रहा हूं।
1: सुन सुन के
2: लगता था कि हाँ मुझे भी इंजीनियर बनना है, बट मुझे इंजीनियर के बारे में उसका
1: नहीं पता,
2: ई और आई भी नहीं पता था, ये रियलिटी थी। बट मैं पढ़ाई में रियली बहुत वीक था, 8th तक का बहुत ज्यादा वीक था मैं। तो जब हम लोग अपने गांव से बलरामपुर में, हम लोगों ने एक दो साल रहे वहां पे, 9th हमने वहीं से किया और 10th जब फेल हुए तो बलरामपुर में ही मैं फेल हुआ।
1: ओके।
2: तो एक पास के मेरे भैया थे, तो उन्होंने कहा कि पापा से मेरे कि इनका कॉमर्स में एडमिशन करा दीजिए। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कॉमर्स दिलाया क्यों जा रहा है, मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
1: अच्छा।
2: अब मुझे लगता है कि उन्होंने कॉमर्स दिलाया और मेरी फैमिली उस चीज पे एग्री हुई, तो शायद ऊपर वाला कुछ अच्छा सोच रहा था मेरे लिए। क्योंकि अगर हम उस समय कॉमर्स ना लिए होते तो हम अपनी लाइफ को आज तक यहाँ ना लाए होते। तो मिशन उस समय रही बात। फिर उसके बाद मैं फिर टीचिंग फील्ड में जब धीरे धीरे आ गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचर आप का मतलब बनना, उसका रीजन ये है कि मुझे लोगों से कनेक्ट होना या लोगों से अपने आप को रिलेट करते रहना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता रहा। और टीचिंग मुझे लगता है कि आप दूसरे को अगर कुछ सिखाते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा आप सीखते हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती।
1: वाह क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा और मुझे भी इस बात का अंदाजा है क्योंकि स्टार्टिंग मैंने भी अपने करियर की ट्यूशन्स पढ़ा के की थी, होम ट्यूशन के लिए। एंड उस दौरान मुझे नॉलेज तब ज्यादा हुई जब मैं पढ़ाने लग गया, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अगले को समझाना, तो उसके लिए पहले खुद समझना होगा।
2: खुद पढ़ने के लिए उन चीजों को छोड़ देते हैं कि ये टॉपिक छोड़ दिया जाए, नहीं आएगा पेपर में या हमारे नहीं है, लेकिन जब आपको पढ़ाना होता है तो आपको लगता है नहीं ये भी पढ़ा जाए, हो सकता है पेपर में बच्चे के आ जाए, तो पहले आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है, तो फिर आप जाकर के उन चीजों को भी, इसलिए आप कहीं ना कहीं ज्यादा सीखते हैं जब आप पढ़ाते हैं।
1: एग्जैक्टली। सो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, जो कि कॉमर्स के टीचर हैं, और ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम है ICS, आपने भी नाम सुना होगा। 10 साल तक सर ने बताया कि कोचिंग चलाई और सफलतापूर्वक चलाई। ऑफ कोर्स ये कोचिंग का सफर, ये कोचिंग तक कैसे पहुंचे, कोचिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किस तरह बच्चे आए, इसकी शुरुआत हुई कैसा, क्या कुछ रहा, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, यानी वक्त हो गया है एक गाना सुनने का, एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बात बहुत अहम है। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं अपना गोंडा वाला FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे साथ आपके स्पेशल प्रोग्राम गोधुली में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं कॉमर्स के और थॉमस इंटर कॉलेज में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जाने से पहले सर, हमने अपने श्रोताओं से कहा कि आने के बाद आपसे हम पूछने वाले हैं कि भाई इतना ज्यादा आपका नाम कोचिंग से हुआ है, वो कोचिंग जहां पे लोग कहते थे जब निकलते थे कि भाई साइकिल्स की भरमार है, और जो अनजान लोग होते थे कहते थे यहाँ चलता क्या है, यहाँ होता क्या है। मतलब मैं तो कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ निकलता था तो इस तरह की बातें होती थी कि भाई कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 100+ साइकिल्स हैं, 200 है। तो इतना फेम आपको कोचिंग से मिला, ऑफ कोर्स ऐसी क्वालिटी जरूर होगी, कुछ तो आपका ऐसा टीचिंग मेथड होगा, कुछ तो आपका ऐसे बच्चों से कनेक्शन होगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये कोचिंग का आइडिया आपको कहां से आया, किसी ने एडवाइस किया था या आपने खुद सोचा, कैसे क्या रहा?
2: कोचिंग में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जब ने 2008 में M.Com अपना क्वालिफाई किया
1: जी,
2: फिर उसके बाद कुछ फैमिली की सिचुएशन से ऐसी थी जिससे मुझे कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना था।
1: ओके।
2: उसके पहले भी मैं होम ट्यूशंस एक दो ऐसे छोटे छोटे पढ़ाता था, और फिर मुझे ये लगा कि अगर हम कॉमर्स की फील्ड में, खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से मैंने बहुत कुछ मिला है, जहाँ कुछ मैंने बहुत कुछ पाया है, जहाँ से सब कुछ सीखा है मैंने, अगर आने वाली जनरेशन को अगर हम कुछ दे सकें तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और इतने दिनों मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए, या जब मैं खुद स्टूडेंट था तो क्या चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं उस चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करता हूँ तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा और एक सेकेंडरी तो मेरा जो है वो होगा ही होगा। फिर हमने 21 जून 2010 में कॉमर्स क्लासेस के नाम से मैंने कोचिंग ओपन की।
1: ओके।
2: और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपने बोला कि टीचिंग मेथड्स आपका डिफरेंट होने के नाते ये भीड़ इतनी रही, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका रीजन मुझे ये लगता है कि बच्चों से जो कनेक्ट होने का था वो ये था कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास आता था तो उस समय उसे लगता था कि मैं टीचर के पास जा रहा हूँ, मुझे लगता था मेरे पास स्टूडेंट आया है। लेकिन एक से दो दिन के बाद में वो बच्चा मेरे से इतना मिक्सअप हो जाता था, हम दोनों लोगों के बीच में ये नहीं होता था कि टीचर और स्टूडेंट्स वाला कोई रिलेशनशिप हम नहीं रखते थे, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि अगर आप बच्चे से टीचर और स्टूडेंट्स मान के चलेंगे तो वो एक गैप मेंटेन होगा, और उस गैप में बच्चा अपने क्वेश्चंस आपसे पुट नहीं कर पाएगा, वो आपसे नहीं पूछ पाएगा, जिससे क्या होगा कि वो वहां पर एक जो गैप है वो फिल हो जाएगा और वो गैप डे टू डे बढ़ता जाएगा। फिर होगा ये कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, फिर उन चीजों को वो गैप करने लगेगा, क्लास छोड़ने लगेगा, बंक करने लगेगा, उसको इंटरेस्ट अराइज नहीं होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास ये था क्योंकि हम कॉमर्स स्ट्रीम में थे, बच्चा 12th तक साइंस या मैथ्स और आर्ट्स से आता है, उसको एक बैग कॉमर्स मिलता है, तो फिर उसको लगता है कि यार हमारे लिए सब कुछ नया है, मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि नया फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायो है, ना इंग्लिश है, ना मैथ्स है, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अलग था। तो मुझे ये लगा कि अगर बच्चों से आप पर्सनली कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा क्वेश्चंस अराइज करेगा और उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अराइज होगा, और जिससे दोनों के फायदे होंगे। तो जैसे कि आपने स्ट्रेंथ की बात की कि इतने स्ट्रेंथ होने का क्या रीजन था, तो मैं आज आपको बता दूं कि इतनी स्ट्रेंथ होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि बॉयज और गर्ल्स कोई भी हो, उसने वो उनको कभी ये नहीं लगता था कि विवेक सर मेरे साथ नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी बच्चों के साथ नहीं खड़ा हूं। मतलब ये मैं आपको बताऊं कि जब बच्चों के पेपर्स आते थे तो मैं उन लोगों को अपना मेरा मोबाइल नंबर उनके पास होता था, और तब मैं व्हाट्सएप या इन चीजों को या एंड्रॉइड सेट्स को यूज भी नहीं करता था, वो छोटे वाले सेट कीपैड वाले सेट होते थे, मैं उनको उसी पर क्वेश्चंस के मैसेज के रिप्लाई करना, उनको फोन करना, उनके विशेष मतलब पेपर में उनको सेंड करना। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन ना, जिससे एक 10 years की जो जर्नी थी मतलब उस कोचिंग की, वो हमने एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा।
6: क्या बात है।
2: इसी दौर मुझे ये भी लगा कि कंप्यूटर आज की जो डिमांड है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2012 में मैं आपको बताऊं कि 5 computers से हमने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जिसको शॉर्ट में आज ICS के नाम से जिला ही नहीं पूरा मंडल जानता है, 2012 में हमने ओपन किया, और अब तो उसकी जर्नी के 12 years कंप्लीट हो गया। जब मैं कॉमर्स स्ट्रीम में था, यानी कोचिंग में था, तो 2020 में कोरोना का टाइम आया, कोचिंग उस समय बंद कर दिया। 2021 में गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिया, तो फिर कोचिंग पढ़ाने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, फिर कॉलेज में ही पूरी तरीके से डेडिकेट हूँ। लेकिन कंप्यूटर सेंटर 5 computer के सेट से मैंने स्टार्ट किया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस सेंटर को पूरा पूरा आगे ले जाने का जो काम है वो मेरे भाई साहब सुमित श्रीवास्तव ने, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली उसको रन करा रहे हैं, आज 200 computer set के साथ जो है कई गवर्नमेंट एफिलिएशंस, जैसे कि ओ लेवल का नाम आपने सुना होगा
6: जी,
2: CCC का आपने नाम सुना होगा
6: जी,
2: टैली है, तो ये सारे कोर्सेस हम लोग रन कराते हैं, और सारा कुछ छोटे भाई साहब उसको देखते हैं, बाकी टीचिंग फैकल्टी है उसमें देखती है, और जितने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो CCC के हों, ओ लेवल के हों, या प्रमोशनल्स पेपर्स हों अदर डिपार्टमेंट्स के, या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हों, आज ICS उन पेपर को कंडक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराता है इतने ईयर्स में, और उस ऑर्गेनाइजेशन के भी सक्सेसफुल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं मानता हूँ कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उनका हार्डवर्क बहुत अच्छा है, और उससे जितने यहाँ के ऐसे बच्चे जो इनको कंप्यूटर के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, वो सेंटर पे आने के बाद में 3 to 4-5 months सीखने के बाद में उनको ये लगता है कि एक तो उनको ऐसी डिग्री मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 100%
6: एलिजिबल होती है, क्राइटेरिया में होती
2: उनके है। क्राइटेरिया में होती है
6: जी।
2: दूसरी चीज ये भी रहता है कि वो बच्चे जिसको कुछ भी नहीं आता वो 3 to 4 months कोर्स करने के बाद बहुत कुछ सीख के जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट ने हमको बहुत कुछ दिया है, आज में जो भी नेम फेम है वो यहाँ की ही देन है। अगर मैं यहाँ के लिए कुछ भी कर पाता हूँ, उनके लोगों के लिए कुछ भी कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत छोटा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से किया है उस देने का। तो इसीलिए कंप्यूटर सेंटर, जैसा कि आपने बोला कि ICS के नाम से, तो उसको ओपन करने के पीछे भी हमारा रीजन यही रहा कि लोगों को नॉलेज, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि कंप्यूटर तो हर किसी के लिए आज के लिए नीड हो चुकी, और खासकर आज के टाइम में जब इंटरनेट ही सब कुछ हो चुका है, तो कंप्यूटर के नॉलेज होना हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
6: बेशक। और जैसा कि आपने बताया कि 2010 में आपने कोचिंग की शुरुआत की, 2012 में आपने ICS के लिए एक इसकी फाउंडेशन डाल दी, तो आपको क्या उन 2 सालों में ऐसा महसूस हुआ कि कॉमर्स के लिए तो एक अच्छा काम आप कर ही रहे हैं, लोगों को, चूंकि उस वक्त मैं, मुझे जहां तक पता है, बहुत सारे सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे कि सीख लें, जैसे आजकल तो बहुत लोग बहुत सारी वीडियोस के जरिए बहुत सारी चीजें सीखा करते हैं, लेकिन उस दौरान सेंटर्स का होना बड़ा रेयर होता था। तो किस तरह से आपने जब स्टार्टिंग की तो क्या चेंज आपने देखा, लोगों ने उस टाइम किस तरह से एक्सेप्ट किया इस सेंटर को, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस और भी रही होगी। आज तो बहुत ज्यादा अवेयर है 12 साल बाद, लेकिन अगर हम 12 साल पीछे जाते हैं तो क्या सिनारियो था उस टाइम?
2: उस टाइम मुझे पता है कि गोंडा में 2-3 सेंटर्स हुआ करते थे। एक तो ये था कि हो सकता है कि उस टाइम में मुझे ज्यादा लगता है कि बच्चे वहां की फीस कुछ शायद एक्सपेंसिव रही होगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुझे ये लगा कि मिनिमम फी पर उनको एक अच्छी नॉलेज दी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ये लगा 12 साल पहले ही कि आने वाला टाइम कंप्यूटर का ही है। अगर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आज आप खुद देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम के बाद से जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ, आज आपको बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।
6: बिल्कुल,
2: आज आपको पैसे जमा भी करने हैं तो आप ATM के थ्रू जमा कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं,
6: बिजली का बिल आप घर से भर सकते हैं,
2: मोबाइल का बिल घर से दे सकते हैं, मतलब इवन आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप तो ये हो गया कि अगर आपको अकाउंट भी ओपन कराना है
6: वो
2: भी घर बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप ये सारे फंक्शंस अच्छे से आप कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंक्शंस आपके मोबाइल पे ही आज ऑपरेट हो रहे हैं। उस समय तो आपको भी पता होगा कि मोबाइल भी इतने एडवांस नहीं हुआ कर सकते थे ना, नेट की फैसिलिटीज इतनी हुआ करती
6: नहीं हुआ करती थी,
2: नहीं हुआ। तो आज के टाइम में तो मुझे ये लगा कि कंप्यूटर से कहीं ना कहीं लोगों की एक तो अर्निंग आप बढ़ा सकते हैं। जैसे गोंडा जैसे छोटे शहर में अगर जनरली हम फीमेल्स की बात करें तो उस टाइम में, आज के टाइम में मान लीजिए किसी की फैमिली बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती या मेल्स कैंडिडेट्स के लिए वो नहीं जा सकते, फैमिली की कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, तो अगर वो कोई भी कोर्स कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के या हार्डवेयर के, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपनी इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये सोच के साथ हमने ICS को एस्टैब्लिश किया, और नो डाउट इस 12 सालों में इस मंडल में ICS एक अच्छा नाम रखता है, और उसका रीजन है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि
6: जी,
2: अभी रिसेंट में ICS ने अपनी ओन बिल्डिंग मीन्स अपनी खुद की बिल्डिंग को बना लिया है, और अब जून यानी कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब ICS अपनी बिल्डिंग में होगा। अभी तक तो रेंट की बिल्डिंग पे ICS चलता था, अब तो अपनी बिल्डिंग में होगा, और ये बिल्डिंग विवेकानंद इंटर कॉलेज के ठीक पीछे, ये पूरा कैंपस 3 फ्लोर्स के बने हुए हैं, तो उसमें पूरे का पूरा वो सेटअप और जितनी मॉडर्न एमिनिटीज हो सकती हैं उसके साथ एक नए उसमें ICS आपको देखने को मिलेगा।
6: क्या बात है, सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको।
2: धन्यवाद आपको नंद जी,
6: क्योंकि इतने साल का जो सफरनामा आपने बताया, मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा जो भी आपने जर्नी बताई, और इस तरह इतना बड़ा सेटअप लेकर के आ रहे हैं, मतलब ये सच में कहीं ना कहीं आपके उस विजन को दर्शाता है जिसको आप फ्यूचर की चीजों को अभी देख रहे हैं। दूसरी बात, गोंडा से आपके लगाव को दर्शाता है कि भाई गोंडा ने अगर आपको दिया है तो आपका भी ये कहीं ना कहीं ये आप खुद मान के चल रहे हैं कि आपका फर्ज है, जितना कुछ आप गोंडा के लिए कर सकते हैं ऑफकोर्स कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, करना भी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस शहर से आप बने हुए हैं, जिस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसको अगर आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत छोटा सा एफर्ट्स होगा, बहुत ज्यादा तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इंसान पाता है उसका बहुत छोटा सा ही दे पाता है।
6: बेशक बेशक, सही बात है। सर, आपने अभी कोचिंग की बात की, जिक्र किया, इतना लंबा सफर रहा, इतने ज्यादा बड़े बड़े बैच आपके यहाँ होते थे, इवन जो नए स्टूडेंट्स होते थे वो एक बार को सोचते थे कि कैसे जाए सर तक, इतने पीछे से इतनी भीड़ है, कैसे बात करें, बड़ी शर्म आती है। कईयों ने तो बताया कि भाई पहली बार तो किसी को माइक का इस्तेमाल करते और स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए देखा है कोचिंग में, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के बीच में। सो ऑफकोर्स आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इवन आप खुद भी नहीं गिन पाएंगे कि कहां कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि कुछ तो ऐसी स्पेशलिटी आपके टीचिंग मेथड में, एक तो आपने कहा कि बॉन्डिंग, आप स्टूडेंट के बीच में ऐसी बॉन्डिंग बनाते हैं कि वो गैप नहीं रहता है, वो फ्रेंडली कहीं ना कहीं गैप जो है वो मेंटेन हो जाता है। और क्या क्या चीजें हैं जिसके जरिए आपको लगता है एक टीचर में होनी चाहिए, और आपने उन चीजों को अपनाया और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखा, उसका इम्पैक्ट देखा कि काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्लीज बताइए।
2: मेरा अपना मानना है कि पहली चीज तो अगर वो टीचर है तो उसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स बेसिक्स क्या हो सकती है उसे ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि इतने बैच में बच्चे पीछे बैठते थे, 100-150 में आप कैसे जान जाते थे, या कॉलेज में 30-40-50 लोग बैठते हैं आप कैसे जान जाते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको ये सोचना चाहिए कि आज जो स्टूडेंट्स आया है, पहले आप भी कभी स्टूडेंट्स थे।
6: बेशक बेशक।
2: आज आप टीचर हैं तो कभी आप स्टूडेंट्स थे, तो आपने भी तो वो प्रॉब्लम फेस की होगी अपने टीचर से कि आप क्वेश्चंस नहीं अराइज कर पा रहे थे किसी भी रीजन से, या तो टीचर का आपको डर था, या तो आपको लगता था कि हम पूछेंगे तो लोग हंसने लगेंगे।
6: राइट।
2: तो आप चाहे स्कूल की टीचिंग करते हो या कोचिंग की टीचिंग करते हो, आप एक एक बच्चों से अपने आप को कनेक्ट करिए। जितने भी टीचर्स हैं, मैं किसी की एडवाइस तो नहीं दे सकता, बट मैं अपना जो व्यू है वो रख रहा हूं।
6: जी, जी, जी, जी।
2: कि आप एक एक बच्चों से खुद को कनेक्ट करिए, फिर आप देखिए कैसे वो बच्चा आपके लिए फॉरएवर का हो जाता है। मतलब वो आपके यहाँ से सारे, मतलब ग्रेजुएशन भी करके चला जाएगा, 12th भी करके चला जाएगा, फिर भी वो कहेगा कि कहीं ना कहीं जहां भी रहेगा वो आपको मिस ही करता रहेगा। दूसरी चीज ये कि आप जब जो भी चीज टॉपिक पढ़ाए उसमें आपने सोचा कि ये मत सोचिए कि ये चीज बच्चे को आती होगी। ये नहीं कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचें कि ये तो आपने कल पढ़ा होगा, ये आपको आता होगा। हमें लगता है कि जो गैप मेंटेन होता है वो इसी रीजन से मेंटेन होता है। ठीक है, आप उस चीज को थोड़ा सा बता दें, अगर आपको लगता है कि आपने पहले बताया है तो थोड़ा सा बता दें जिससे कि बच्चा कनेक्ट हो जाए।
6: बेशक।
2: और मेरी जहां तक पर्सनल बात है, मैं जब भी, जैसे मान लीजिए मैंने ट्यूसडे को क्लास स्टार्ट की, तो ट्यूसडे को क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मंडे को मैंने पढ़ाया था, मैं पहले वो रिकैप कराता था 10 मिनट्स के लिए।
6: ओके, ये मतलब आपकी एक स्ट्रेटजी रही है।
2: जी।
6: ओके।
2: उसका रीजन ये था कि जो बच्चा हो सकता है किसी भी रीजन से वो मंडे को ना आया हो,
6: ना
2: तो उसका गैप हो गया, तो वो फिर कनेक्ट ट्यूसडे को नहीं कर पाएगा मेरे साथ। तो 10 to 15 मिनट्स उसको अगर आप रिकैप करा देते हैं उस चीजों को, तो वो बच्चा आपसे फिर कनेक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप ये जरूर देखते रहे कि बच्चे का जो टॉपिक छूट गया उसको एक्स्ट्रा टाइम देके आप कंप्लीट करा लें। बच्चे को पर्सनली आप, मतलब ये ना सोचे कि अगर उसने 10 बार पूछ दिया, मैं बताऊं, मैं तो क्लास में हमेशा, आज भी मैं थॉमसन इंटर कॉलेज में हूं, आप पता कर सकते हैं
6: जी।
2: मैं बच्चों से कहता हूं कि आप 1000 times मुझसे पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसका रीजन है आप सीखने आए हैं।
6: बेशक।
2: तो ये कहीं ना कहीं एक टीचर्स के लिए होना चाहिए कि बच्चों से वो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, वो हर एक तरीके से कनेक्ट होके चले। तो बच्चे की जो पढ़ाई बीच में छूट जाती है आज के टाइम में, जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे पढ़ते रहे, उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे, तो छूटेगा तब नहीं जब उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। और इंटरेस्ट बनने के लिए जरूरी है कि बच्चे को आप कनेक्ट करते रहें उसके सब्जेक्ट से। अगर उसको वो नहीं आ रहा है तो उसके स्कूल कॉलेज ना आने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन्स रहा होगा, तो उससे आप पर्सनली उस चीज को पूछें कि क्या रीजन था, क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो सही में नहीं आना चाहते, मतलब जानबूझकर नहीं आना चाहते, लेकिन बाकी के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो हो सकता है कि अगर आप 10 से पूछते हैं तो 1-2 की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन 1-2 के लिए तो आप अच्छा कर सकते हैं।
6: बेशक। यानी आपको एम्पैथाइज करना है बच्चे के साथ, उस जगह खुद को रखना है, जैसे हर बार कहते हैं ना कि अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो उस एक्टर को भी उस दर्शक की निगाहों से बनाना पड़ता है कि अगर मैं इस मूवी को देखूंगा तो मुझे कैसा लगे। तो बिल्कुल वैसी है कि कभी हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो आज जो वो फेस कर रहे हैं, कल हमने भी वही चीज फेस की थी, तो मेरे जहन में क्या था, तो वो आप अगर ऑलरेडी पता है, उस चीज को आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो इसीलिए आपने कहा कि बच्चा 2 नहीं 10 साल भी आपसे पढ़ेगा, और 10 साल के जाने के बाद भी वो आपको कहेगा कि सर शायद आज भी बहुत कम वक्त मुझे लगता है कि आपके साथ मिला, मैं तो और चाहता था कि आपके साथ और टाइम बीते। बिल्कुल, बेशक ये होता है, और ये बिल्कुल सही बात आपने कही। बातचीत के दौरान, चूंकि अभी जस्ट मैंने देखा भाई छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है, आने के बाद बहुत अहम सवाल, चूंकि हम कॉमर्स के बारे में बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉमर्स के बारे में अब हम ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आखिर ये कॉमर्स है क्या चीज, जहां सिर्फ क्या हिसाब किताब ही होता है कि आपने उधार कितना लिया और कितना आपने चुकाया, नहीं इसके अलावा भी हम जानेंगे क्या स्कोप होता है, करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, गोंडा में कितनी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से इसको ऑप्ट करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफकोर्स आज की पर्सनैलिटी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, इनकी लाइफ की वैल्यूज के बारे में भी हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको फॉलो करके आज आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो सब कुछ जानने को मिलेगा ब्रेक के उस पार, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस अकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख।
4: गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने इवनिंग वाले शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। जाने से पहले हमने कहा था कि भाई कॉमर्स पे आकर के बात करने वाले, क्योंकि आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स होम्स इंटर कॉलेज गोंडा। सर, कॉमर्स की बात हो रही है, कॉमर्स की कोचिंग की बात हुई, कॉमर्स में बताया कि अभी आप थॉमस इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर भी हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉमर्स मतलब अभी तक कई लोगों के मन में बस ये कि भाई कितना लिया कितना दिया, यानी हिसाब किताब खाता कुल मिला करके। लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या कॉमर्स सिर्फ खाता ही है या इससे और भी किस्मत का खाता भी खुल जाता है और बहुत सारे ड्रीम्स हम फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि इसी में हमने जहां तक हम सुनते हैं लोगों की ड्रीम जॉब होती है सीए बनना, सीएस करते हैं लोग, और भी इस तरह से बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारी जॉब होती है, वैकेंसीज आती है कॉमर्स को लेकर के। तो बेसिकली हम जानना चाहेंगे कि कॉमर्स है क्या और इसके स्कोप्स कितने हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और अपने गोंडा लेवल पे।
1: देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो छोटे शहरों में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लोगों में जो अवेयरनेस है कॉमर्स को लेकर के वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कम है। लेकिन आप अगर मेट्रो सिटीज में जाएं, यानी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखें तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि इस

0: मैं आपको ज्यादा ना कहूं कि आप खुद चेक कर सकते हैं जो आईएएस के रिजल्ट्स आते हैं, आप उसमें देखिए टॉप टू टॉप थ्री में जो लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा उसमें टॉप थ्री के जो बच्चे ने टॉप किया आईएएस में वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही थे।
1: ओके, वाओ, क्या बात है।
0: तो ऐसा नहीं कि कॉमर्स स्ट्रीम के लोग सिविल सर्विसेज में नहीं जाते या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए नहीं जाते। और स्पेशली मैं आपको कि जितने भी आज जो ये पॉपुलेशन है या जितने लोगों को जॉब्स चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब सबके लिए अवेलेबल होगा ये सही नहीं है। इसलिए आज के टाइम में कहीं ना कहीं हमें ऐसे कोर्सेस करने चाहिए जिससे कि हम वो हमारा करियर ओरिएंटेड हो। लाइक जैसे आपने अगर बीकॉम या बीबीए किया तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। अब एमबीए आप किस फील्ड में करेंगे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है। मींस मार्केटिंग में आप करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में करेंगे कि आप आईटी में करेंगे कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करेंगे। मींस आप एमबीए के में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
1: ऑप्शंस
0: अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक लग्जरियस लाइफ हर कोई जीना चाहता है तो उसके लिए एमबीए एक अच्छा स्ट्रीम हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं जहां पर पैसा लिमिट्स नहीं रखता, क्योंकि कहते हैं ना मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपके अंदर नॉलेज है, विद्वता है तो पैसा आपके पीछे आएगा, आप पैसे के पीछे नहीं जाएंगे।
1: क्या बात है।
0: तो अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है बट एक चीज है कि इसमें आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जो बच्चे अपने आप को बिलो द एवरेज मानते हैं, एवरेज मानते हैं, वो इतना नहीं कर सकते, शहर छोड़कर नहीं जा सकते, उनकी फैमिली इतने पैसे वाली नहीं कि वो एफर्ट्स कर सके, तो वो किसी भी जो है ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर में वो जीएसटी फिलिंग का काम आज टाइम में जो बहुत तेजी से चल रहा है या टैक्स रिटर्न्स के काम वो सीख सकते हैं। तो अपने शहर में रहकर ही वो लोग बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करके। तो कॉमर्स स्ट्रीम का जो आज एडवांटेज है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको बीकॉम या ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ करने के बाद सीधे आपको एक, हमें नहीं कह रहा कि आपने ट्वेल्थ किया ग्रेजुएशन किया तो आपको बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा, बट इतना तो हो जाएगा कि अगर आपकी फैमिली अफोर्ड आपके फीस या एक्सपेंसेस को नहीं कर सकती तो आप अर्निंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम का जो एडवांटेज है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी चीज ये है कि इस स्ट्रीम से आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं। छोटे शहरों में तो कम, बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस कंपनियों के में आपके पास हैं। तो केवल ऐसा नहीं, कॉमर्स का मतलब पैसा देने और लेने या हिसाब बनाने से ही है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम में। और एक तो अगर आज का टाइम आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर ही बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर्स में कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
1: तो ये आपने बता दिया कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें यानी ग्लोबल लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे और चाहे गोंडा लेवल पे। एक बात अब और अहम है, पहले तो इस बात को भी जरा हम जानने की कोशिश करें कि ये कॉमर्स है क्या और एक्चुअल में हम इसमें किन किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं।
0: देखिए जैसे आपका साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज एक स्ट्रीम है, वैसे कॉमर्स भी एक स्ट्रीम है। कॉमर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी आपको कराई जाती है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें वो सब्जेक्ट्स आपके लिए होते हैं जिनका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में यूज ज्यादा होता है। जैसे आपने कहा हिसाब किताब के लिए, तो हिसाब किताब के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग चलती है और अकाउंटिंग के भी बहुत सारे ब्रांचेस चलते हैं। जैसे एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट लॉस को जानना चाहता हो कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उनकी पोजीशन क्या है,
1: स्टॉक क्या है,
0: फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करते हैं।
1: बेशक
0: आपने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और आप ये जानना चाहते हैं उसकी कॉस्ट क्या आई है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। हम अपनी सैलरी हो या बिजनेस की प्रॉफिट्स हो उसके लिए हमें टैक्स फाइल करना है, उसके लिए हम लोग इनकम टैक्स अकाउंटिंग का यूज करते हैं। मैनेजर्स को क्या डिसीजंस लेने में क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज होता है। ठीक इसी तरीके से मार्केटिंग, एक सक्सेसफुल आप मार्केटर कैसे बन सकते हैं, आप मार्केटिंग कैसे अच्छा कर सकते हैं, यानी मार्केटिंग का तो बड़ा सीधा सा फंडा है कि आप ऐसे इंसान को भी कंघी बेच देना जिसके सर पे बाल ना हो, ये है मार्केटिंग। okay. आपके मींस मार्केटिंग का मतलब हम आपके अंदर उस चीज की नीड को अराइज कर दें।
1: हाँ, नीड क्रिएट कर देना सही बात,
0: ये मार्केटिंग कहलाता है। अगर आपको उस चीज की नीड है और मैं वो चीज आपको सेल करूं तो मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है,
1: वो तो चाहिए ही थी,
0: वो तो आपको चाहिए ही था। मैं आपको वो चीज सेल कर दूं जिसकी आपको नीड भी नहीं थी, तो मार्केटिंग का फंडा ये है।
1: ओके,
0: क्योंकि बिजनेस यही है।
1: बेशक
0: एक बात मैं ये कहूंगा कि आज के टाइम में नेटवर्क्स आप मोबाइल में देखते हैं, ये साइंस की देन जरूर है, लेकिन आज के टाइम में

0: पर्सन दो सिम लगा के अपने मोबाइल में रखता है या दो से तीन हैंडसेट्स लेके चलता है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग की ही देन है।
1: क्या बात है, बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, ऑफ कोर्स सही बात है। फिलहाल मैं तो एक ही सिम यूज कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ा एग्जांपल है, ऑफ कोर्स मैंने भी देखा कि लोग दो सेट्स इस्तेमाल करते हैं सेलफोन्स की, भाई एक ये प्रोफेशनल है, एक घर वालों के लिए है, या दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एक एग्जांपल आपने दिया है, बिल्कुल सही बताया है। सर आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी में मैं जानना चाहूंगा, आजकल एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता है फ्रीलांसिंग, यानी घर बैठे ऑनलाइन काम करना। जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो कंटेंट राइटर्स होते हैं जो घर से लिख करके देते हैं किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, यूट्यूब एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं खुद भी हूं, तो किसी की वीडियो में वॉइस देना है, कोई न्यूज चैनल है उसके लिए वॉइस देना है, डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए वॉइस देना, वो सारी चीजें। मैं जानना चाहता हूं कॉमर्स में ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन करते हैं या कर सकते हैं। बहुत सारे सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपने कहा ना स्टडी पर्पस होता है, तो घर पे भी रह सकते हैं, ऑनलाइन वो काम भी कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कॉमर्स के अगर हम फील्ड की बात करें।
0: देखिए आप घर बैठे इसमें इनकम टैक्स में जो रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले कुछ दिन सीख सकते हैं और फिर घर पे ही अपना सेट लगा करके और उसपे जो है ऑनलाइन आप रिटर्न फिल लोगों का करा सकते हैं, जीएसटी रिटर्न आप फिल करा सकते हैं। क्योंकि आज स्मॉल स्केल का बिजनेस हो या लार्ज स्केल का बिजनेस हो, आपको पूरे शहर में बहुत सारे बिजनेसमैन मिलेंगे जिनका एक ही चीज है कि हमको जीएसटी फाइल करनी है, जीएसटी फाइल करनी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी जीएसटी को फाइल कर सके। तो आप अपने शहर में ही रह करके और इस चीज को सीख करके आप ये काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उससे एक अर्निंग जो आपकी है वो बराबर जनरेट होती रहेगी। और जब आप एक लोग का ये ऐसा काम करेंगे तो एक से दो बिजनेसमैन, दो से तीन, चार, पांच आपसे खुद ऐड होते जाएंगे। क्योंकि डे टू डे आप देखते होंगे अपने ही शहर में, आप देखिए पहले का गोंडा और आज के गोंडा में बहुत अंतर है।
1: बेशक बेशक,
0: आज डे टू डे कहीं ना कहीं चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों या छोटे छोटे बिजनेस हों, बहुत सारे बिजनेस ओपन हो रहे हैं तो उसमें जीएसटी फाइल करना ही होता है। तो ये भी एक काम घर बैठे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आपको डेटा फीडिंग के काम आते हैं, तो उस चीज पे भी आप अपना काम कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते।
1: हाँ बेशक आपने सही कहा, क्योंकि आज मैं खुद भी जो अपना ITR फाइल कराता हूँ वो ऑनलाइन ही कराता हूँ, जो बंदा करता है वो यहाँ का है ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक एग्जांपल मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि वो बाहर आउट ऑफ गोटा का बंदा है, वो मुझे हर साल कॉल करता है, मैं अपनी डिटेल्स बता देता हूँ, सारे एक्सपेंसेस अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ और उसके बाद मेरा ITR फाइल हो जाता है घर बैठे। हालांकि उनका पूरा ऑफिस है और उनका मेन बिजनेस है और वो बंदा मेरे जैसे न जाने कितने सारे क्लाइंट्स उनके पास है जो जिनकी वो फाइल ITR करते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने कहा कि घर बैठे भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या समझना होगा, या गोंडा में जो भी इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं, किस तरह की अवेयरनेस की जरूरत है अगर हम कॉमर्स के टर्म में देखें तो?
0: देखिए पेरेंट्स से तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को इस चीज के लिए ना फोर्स करें कि नहीं आप साइंस लेके पढ़ो, हमने साइंस पढ़ा है, घर में सारे लोग साइंस पढ़े हैं, या मैथ्स आप लेके पढ़ो। आप पहले देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। आप ऐसा नहीं कि बच्चे पे केवल आप बर्डन डाल रहे हैं, आप ये तो देखिए ना कि बच्चा आपका साइंस लेके नहीं चल पा रहा है, आप उसको साइंस में डाल दे रहे हो, आप मैथ्स कह रहे हो बच्चे मैथ्स करो, पता लग रहा है बच्चे का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में है। तो पहले बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ये भी देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, पेरेंट्स हमें नहीं कह रहे कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं, बट ये चीज तो एक स्कूलिंग लेवल तक तो जरूरी है, देखें कि उनका बच्चा सही ट्रैक पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब वो अगर आप घर से कॉलेज गया है तो गया कि नहीं गया। हम नहीं कह रहे कि आप पूरे वीक्स में रोज ये चीजें वॉच करें, लेकिन एक दिन तो आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको लाइफ टाइम का रिटर्न अच्छा नहीं मिल सकता। इसलिए आप अपने बच्चे को जरूर टाइम दें, क्योंकि जब आप उसको टाइम देंगे, देखिए मन में डर किसी ना किसी का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर डर एकदम खत्म हो जाएगा तो बच्चा कुछ नहीं करेगा,
1: कुछ नहीं करेगा। सही, बिल्कुल सही है।
0: तो इसलिए गार्जियंस को ये जरूर चाहिए कि वो बच्चे को वॉच करते रहे। हमें नहीं कह रहे कि वॉच करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप बच्चे को हर एक चीज में रोकते रहिए, टोकते रहिए, लेकिन वॉच करने का मतलब ये कि ये जरूर देखते रहे कि बच्चे को आपने अगर घर से भेजा तो बच्चा गया कि नहीं गया। टाइम टू टाइम अगर हो सके तो जब भी कॉलेज आपके PTM होते हैं तो उसमें आप जरूर टीचर्स से मिले, और PTM जिन स्कूलों में नहीं होते वहां पर भी टीचर्स गार्जियन से मिलते हैं, तो आप खुद जाके टीचर्स से मिलिए और पूछिए आपके बच्चे का कैसा क्या, आखिरकार वो आपका बच्चा है, अगर आप उस पर टाइम नहीं देंगे तो फिर आप क्या कर सकते।
1: बेशक, मतलब बस पैसे को इन्वेस्ट कर देना अच्छी कॉलेज में स्कूल में डाल देना ही काफी नहीं है। हाँ। उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका खुद के टाइम का इन्वेस्टमेंट बच्चे के लिए होना है। बेशक सर, आप चूंकि असिस्टेंट टीचर हैं कॉमर्स के थॉमसन टेक कॉलेज में। एंड अगर हम बात आज की करें तो लोगों का ऐसा मानना है कि भाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, बहुत अच्छी पढ़ाई तो अब वैसी नहीं रह गई जैसे एक जमाने में हुआ करती थी। लोग एग्जांपल देते हैं, मेरे पापा जब पढ़ते थे, मेरे दादा जब पढ़ते थे, तो वो दौर था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज के वक्त में आप वहां पे टीचिंग कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों के अंदर वहां टैलेंट है, क्या प्रतिभा आप देखते हैं, किन चीजों की आप कमी देखते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वहां किस तरह से आप टीचिंग आपकी चल रही है?
0: देखिए, एक चीज जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेज में लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, या बच्चे जाते हैं तो उनको भी ये लगता है कि, या गार्जियंस या लोगों को लगता है कि पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कॉलेज उतना देखने में सुंदर आपको ना लगे या स्कूल्स उतने सुंदर ना लगे, बट मेरा अपना मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा जो टीचर्स की क्वालिटी, उनका एजुकेशन है, वो ज्यादा मायने रखता है। आज के टाइम में जितने भी आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि गवर्नमेंट का ये अपना मानना है कि आप भी देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस नथिंग है या बहुत नॉमिनल सी फीस ही है, जिसको एक मतलब आप एक चाय के पैसे से भी आप कम अगर कंपेयर करें तो इतनी कम फीस में गवर्नमेंट एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। रही बात गवर्नमेंट कॉलेजों में लोगों की जो टेंडेंसीज रिसेंट ईयर्स में चेंज हुई है, पहले ऐसा नहीं था, लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी, बट रिसेंट टाइम में कॉन्वेंट एजुकेशन के नाम पे आप भी देख रहे हैं कैसे क्या चीजें चल रही। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई का लेवल कहीं ना कहीं पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। हमारी थिंकिंग थोड़ी सी बदली है, हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस रहे हों, बट करंट टाइम में मैं जो कुछ देख रहा हूं ये तो ये है कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है और हर एक टीचर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों पे ध्यान दे रहा है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट भी हर एक चीज को चेक करती है कि मतलब बच्चे को आपने क्या सिखाया, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब वो दौर पुराने चले गए जिसकी आप बात अभी कर रहे थे कि पढ़ाई होती या नहीं होती। अब तो गवर्नमेंट देखती है कि कैरिकुलम एक्टिविटीज में क्या हुआ, आपने सिलेबस कितने कंप्लीट किए, कितने नहीं कंप्लीट किए, आप डेली आपको टास्क कंप्लीट कर मतलब जो है जो असाइन किया गया वो आपको पूरा करना होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सोच मिड में थोड़े से आए थे ना, वो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से चेंज कर दिए हैं। तो इसलिए मैं लोगों से कहूंगा कि अपनी थिंकिंग को बदलिए और एक बार गवर्नमेंट स्कूलों को जाके देखिए, जरूर देखिए कि किस तरीके से चेंज हुआ है और पढ़ाई का लेवल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो चुका है।
1: यानी आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिव्यू सिस्टम अपना रही है।
0: बिल्कुल अपना रही है। हम लोग ये देखते हैं कि अब तो ये हो गया है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होने लगी है, आप क्लासेस में जो आपको असाइन में आप क्लास में है या नहीं है, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट देख रही है।
1: ओके, और बच्चों के अगर हम एंड से बात करें तो अभी क्या आपको दिखाई देता है, आज भी वही प्रतिभावान बच्चे वहां भी नजर आते हैं आपको?
0: देखिए, बच्चों में एक बात है कि पढ़ने का जो उनका लेवल था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है।
1: ओके,
0: ये मेरा अपना मानना है।
1: ओके।
0: उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि मतलब बच्चे खूब पढ़े, खूब अच्छे से पढ़े और सारी चीजें हों, लेकिन बच्चे उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं जितना उनको अपने करियर या फ्यूचर को लेकर करना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क आज के टाइम में है।
1: अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है
0: जी। बच्चे जिस अकॉर्डिंग उनको मेहनत करनी चाहिए उस अकॉर्डिंग वो मेहनत नहीं कर रहे हैं।
1: इसका बड़ा रीजन क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे जस्ट आपका व्यू जानना चाहूं
0: तो? इसमें मेरा व्यू यही है कि आज के टाइम में नो फेल पॉलिसी एक गवर्नमेंट ला दी है, तो नो फेल पॉलिसी में बच्चे के अंदर डर नहीं रह गया। और मैंने पहले ही कहा कि बिना डर के कुछ नहीं होता। जब हम लोग के टाइम में बच्चे, आपके टाइम में भी ये देखा होगा कि जब बच्चे डरते थे तो वो मेहनत करके पढ़ते थे। अब तो बच्चे को लगता है कि मुझे फेल नहीं होना तो बच्चा फिर पढ़ना नहीं चाहता।
1: तो मतलब
0: ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक्स आप कह सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने नो फेल पॉलिसी लेकर आई क्योंकि जो नंबर ऑफ डेथ केसेस थे वो बढ़ गए थे, कहीं ना कहीं लोग सुसाइड ना करें, वो चीजें कम हो जाए। बट मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ और ऑप्शंस गवर्नमेंट को खोजना
1: अभी चाहिए,
0: क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो ये बच्चे जो आज ऐसे ही पास होते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उतनी नॉलेज के साथ नहीं पास हो रहा है,
1: खाली एक भीड़ बन जाएगी
0: और ये भीड़ आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
1: नहीं, ये बहुत गंभीर बात, आपने बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है, उसको वो एक कंसर्न है, वो एक कंसर्न एरिया हमको तलाशना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन कौन सी वजह है, उन पे काम करना होगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सर, आपने बखूबी बताया अभी अपने कॉलेज के बारे में, यानी थॉमसन टेक कॉलेज के बारे में, जिससे हम सभी लोग रूबरू हैं। अब चूंकि बहुत सारी आपसे बातें हो गई हैं, इसी बीच में मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि आपने भी अक्सर बहुत सारे इवेंट्स गोंडा में देखे होंगे, कार्यक्रम। जिसमें डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी की उपस्थिति जरूर आपने देखी होगी और एक अच्छे वक्ता की तरह आपने बोलते हुए भी सुना होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या है, मतलब मैंने खुद भी कई सारे प्रोग्राम्स में देखा है कि आपकी प्रेजेंस रहती है, आप चीजों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्या सोशल एक्टिविटी से जुड़ना आपका कोई शौक है, आपको अच्छा लगता है, क्या है?
0: जैसा कि आपने कहा कि सोशल एक्टिविटीज को लेकर के, तो मैं आपको बताऊं कि सोशल एक्टिविटीज से एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप नंबर ऑफ पर्सन से अटैच होते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि लोगों से अटैच होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी चीज है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सपोज मैंने अभी आपके ही कॉलेज में यहाँ ज्ञानस्थली में ही डिजिटल मार्केटिंग का एक सेमिनार था, उसमें आए थे, तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें बोलने आया था एज अ स्पीकर, वहां से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का रीजन यही है कि एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको बहुत मिलता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि आप उसके साथ बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का रीजन यही है कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का पाना और दूसरी चीज बहुत कुछ सीखना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, मतलब लाइफ में आप सिर्फ सीखते रहें क्योंकि ये कभी एंड नहीं होता। तो इसलिए जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बहुत आगे जाते हैं, इसलिए हर किसी को हर स्टेप पर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
1: ओके, ये शायद ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जिंदा होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही
1: कहा आपने। अगर जिंदा है तो उसकी निशानी है कि कुछ ना कुछ आता रहता है। बेशक, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस पूरी लाइफ टाइम चलता है और ये कहा भी जाता है और ये बहुत फैक्ट बात भी है। सर, अभी तो जो कुछ भी क्वेश्चंस थे वो हमने पूछे, उसका आपने बखूबी बेहद सहजता और सरलता के साथ में उत्तर दिया। हमारे श्रोताओं तक बहुत सारी बातें पहुंची हैं जिनको कहीं ना कहीं अगर वो जीवन में उतारते हैं तो ऑफ कोर्स बदलाव नजर आएगा। आप खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस पीरियड में खुद को कहां से कहां पहुंचाया, और कहीं ऐसे नहीं, यानी सुविधाओं का अभाव आपके भी साथ रहा है, आप भी एक छोटे शहर एक छोटी जगह से ही बिलोंग करते हैं, आपने भी एजुकेशन इसी गोंडा से ली है, और अगर आज आप कुछ अलग कर रहे हैं तो शायद आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, शायद आपका अप्रोच ऐसा है, शायद आपकी लाइफ की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसके बिहाफ पे आज आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और एक अलग पहचान अपनी बना पाए हैं, ये तो फैक्ट है। अब चूंकि चलने से पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई, अगर मैं जानना चाहूँ कि डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव की लाइफ की वैल्यू ऐसी कौन सी है जिसको ये किसी भी हालत में निगोशिएट नहीं करना चाहेंगे, कभी भी चेंज नहीं करते हैं और फॉलो करते ही करते हैं, तो वो क्या है?
0: मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज पर, मतलब मैं अपनी बात करूं तो अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हार्डवर्क करते रहिए, और वो राइट वे में आपका हार्डवर्क हो तो एक बात कन्फर्म है कि आप उस चीज को पा लेंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कभी भी आप ये मत देखिए कि लोग आपको क्या कहेंगे। उसका रीजन ये है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप जिंदगी में हमेशा अकेले होते हैं, लेकिन सक्सेस में दुनिया आपके साथ चलती है। लोग आपके अचीवमेंट्स तो देखते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट्स को पाने में आपने कितनी रातें जागी हैं या कितने आपने किए हैं या कितना आपने कुछ त्याग किया है, ये कोई नहीं देखता।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज पानी है या उस सक्सेस किसी पॉइंट्स को या कोई भी चीज आपका जो ड्रीम है उसको आपको अगर पूरा करना है तो उसके लिए आप रात दिन सब कुछ एक करते रहिए जब तक कि वो चीज आपको नहीं मिल जाए। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं, या मैं खुद अपनी बात करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो एक ना एक दिन मेरे हाथों में होंगे, ये चीज मुझे पता है।
1: क्या बात है। तो अभी तक भी आपने बहुत सारी चीजें की हैं और अभी भी आपका मानना है कि ड्रीम आपका बड़ा है और वहां तक पहुंचना है। हमारी तरफ से, यानी आरजे अदनान की तरफ से और हमारे सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों विशेष हैं आपकी लाइफ को लेकर के, एक ब्राइट फ्यूचर की हम भी आपकी कामना करते हैं। जहां पे भी आपने सोचा है वहां जरूर जाएं। साथ ही साथ, अब चूंकि एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बनाया है, इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है, एक या दो कोई ऐसी चेंज स्टोरी, जो बच्चा आया था तो बड़ी परेशानी में था या बड़े ही अलग ही सर्कमस्टेंसेस थे और उसके बाद उस बच्चे ने मेहनत किया और एक अच्छी पोजीशन हासिल की।
0: ऐसे 10 इयर्स की जर्नी में बहुत सारे बच्चे आए और आज वो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, न केवल इंडिया में जबकि फॉरेन कंट्रीज में भी है, जिसमें एक दो इवेंट्स मुझे याद है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप सभी श्रोताओं से
1: जी,
0: क्योंकि उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं और हो सकता है सुनने के बाद आपको भी ये लगे कि हाँ, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब हमारे पास कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम टूट से जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को ना खोते हुए भी बहुत आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है काफी साल पहले की बात है, एक लड़का मेरे पास आया था क्लास 11th, तो क्लास 11th कॉमर्स में पढ़ा, 12th में पढ़ा, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से करीब 15 से 20 दिन पहले अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की डेथ हो जाती है।
1: ओके।
0: एक तरफ 15 डेज बाद यूपी बोर्ड्स के पेपर और फादर का डेथ होना, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि उस लड़के को मैंने बहुत मतलब पर्सनली सपोर्ट किया इस चीजों को लेकर के कि भाई जो चीजें हैपनिंग्स हो चुकी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक तरफ सोचने के लिए पूरी लाइफ आपके पास बची है और दूसरे तरफ आपके पास आपका आने वाला पूरा फ्यूचर है, तो आपको दोनों के बीच बैलेंस करके चलना है। मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे ने ये काम जरूर किया और फिर 12th में अप्रोक्स 80% से वो पास हुआ।
1: ओके।
0: उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली चला गया अपने प्रिपरेशंस को लेकर के और फाइनली वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया। करंट टाइम में वो कुवैत में है, बहुत अच्छी कंपनी में है, अच्छे पैकेज पर है। और वो आज भी कहता है कि अभी मैं आपको बताऊं उसकी मैरिज में मैं गया था तो उसने अपनी वाइफ से मेरे को मिलाया और बोला कि मैं तुमसे कहता था ना कि अगर मैं कॉमर्स में सी जानता हूँ ना तो उस कॉमर्स का सी बताने वाले मेरे सामने आज खड़े हैं, आज तुम भी इनसे मिलना।
1: वाओ क्या बात है।
0: तो ये ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, आज तो कई अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो जिन बच्चों ने भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का, ऐसा नहीं कि केवल इसी तरीके से, हो सकता है किसी के पास इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा रही हो
1: जी,
0: या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी अगर आप अपने आप का जो डेडिकेशन है वो लगे रहते हैं, आप लगे रहते हैं, तो ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ता निकाल देता है, ये बात है। तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो एक जरूर सोचें कि ये प्रॉब्लम्स आपको ये बताना चाहती है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि समस्याएं ईश्वर जीवन में उन्हीं के देता है, क्योंकि बॉल उसी के पास फेंकी जाती है जो अच्छी बैटिंग्स कर लेता है। तो प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आई है तो वो इसीलिए आई है कि आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत दूर फेंकेंगे अपने उस हार्डवर्क से और एक दिन आप अपना नेम फेम बहुत अच्छा।
1: क्या बात है, कितना परफेक्ट सा एग्जांपल दिया भाई। बचपन में तो बैट लेने के लिए लड़ पड़ते थे लेकिन आज पता चला कि वो बैट क्या था और वो बॉल कौन सी है। बहुत ही गहरी बात आपने
0: जी, वो बॉल उस प्रॉब्लम्स की थी और बैट वो था जो आपका डेडिकेशन था जिससे उस प्रॉब्लम्स को और बहुत दूर फेंकना चाहते हैं।
1: बेशक, और जरूर फेंकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका डेडिकेशन होगा, उतनी दूर फेंकेंगे। मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है जिनके बारे में आपने बताया, लेकिन मैं खुद भी पर्सनली काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। इतनी बुरे हालात में भी अगर इंसान इतना बेहतर कर सकता है तो शायद मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि हम और आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह की बातों को बताया। और जितने भी क्वेश्चंस हमने आपकी लाइफ से जुड़े हुए करे, आपकी करियर से जुड़े हुए, आपके ऑक्यूपेशन पेशे से जुड़े हुए, कि आपने उसका बखूबी उत्तर दिया। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन चलने से पहले कि आप देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियो स्टेशन में बैठे हैं यानी 89.6 FM में, जिस तरह के शोज यहां से जाते हैं, टॉक शोज होते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जो इसको सुनते हैं यानी इसके जो लिसनर हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले वक्त में, गोंडा के लिए क्या चेंज ला रहा है 89.6 FM, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये FM देवीपाटन मंडल का, यानी जिसमें आपकी चार डिस्ट्रिक्ट आती है, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, इन चारों डिस्ट्रिक्ट यानी मंडल के लिए ये पहला FM है। नॉर्मली लोगों को पहले लगता था कि, या दूसरे को मुझे ही लगता था कि FM का मतलब सिर्फ गाने सुनना होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ
1: जी जी।
0: बट जब से ज्ञानस्थली FM स्टार्ट हुआ, मुझे ये लगा कि ये सिर्फ एक गाना सुनने के लिए नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को अवेयर करते हैं और आप लोगों को जो चीजें उनके पास नॉलेज, जिस चीजों की नहीं है, उनको देते हैं। जैसे मैंने कई बार आपका देखा कि आप फार्मर्स के प्रोग्राम करते हैं, आप डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं। हो सकता है कि आपने डॉक्टर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे हों जो किसी पेशेंट जो सुन रहा हो वो उस डॉक्टर से एडवाइस ना लेने के बजाय आपके FM से उसको नॉलेज हो गई और वो अपने आप को उस चीज को ठीक कर ले
1: जी।
0: तो आपका ये FM स्टेशन, मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को देना चाहूंगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए आप काम करते हैं। तो जो लोगों की सोच हुआ करती थी एक नॉर्मल पर्सन की कि FM का मतलब सिर्फ गाने सुनना होता है, उस सोच को आप लोगों ने बखूबी चेंज कर दिया है। इसके लिए आप मेरे लिए, मेरी तरफ से, तहे दिल से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं यही ब्लेसिंग्स करूंगा और क्या कह सकता हूं कि जिस तरीके से आप इतने कम समय में लोगों के दिलों की धड़कन ये एफएम बन चुकी है। आने वाले टाइम में लोगों के दिलों की धड़कन को आप ऐसे ही और बढ़ाते रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते ना कि एक गुरु का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स आपने इतने बच्चों की जिंदगी को संवारा है, इतने लोगों की दुआएं आपके साथ में है। अगर आपकी ये दुआएं हैं तो हम भी कहीं ना कहीं और भी बेहतर कर पाएंगे, हमको ये पूरी की पूरी उम्मीद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत की।
0: धन्यवाद नंदन जी, बहुत अच्छा लगा,
1: थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपसे बता दें कि आज हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, थॉमस इंटर कॉलेज, गोंडा। आप भी सुनते रहिए अपना FM 89.6 FM, अगला प्रोग्राम एंजॉय करिए और कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनकी जर्नी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
10: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
10: आज ही कॉल करें 9861-976-9260-981-976।
7: पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
9: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
11: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
12: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

का आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल मुझे जरूर बताना, और कैसा लगा आप सभी को सरप्राइज ये भी आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि घड़ी की सुइयों ने 6:30 बजा दिए हैं और शाम ने अपने आप को एकदम आगोश में ले लिया है। दिन भर की धूप अब ढल चुकी है और शहर की गलियों में ढलती शाम का सुकून उतर आया है। ऐसे माहौल में किसी ने क्या खूब लिखा है कि दिन भर की इस भागदौड़ से थोड़ा सा चुराया है शाम का ये ढलता सूरज, चाय की चुस्की संग लाया है। और मिर्जा गालिब का भी वो मशहूर शेर याद आता है कि शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुल्फिस का, लेकिन आज इस शाम हम दिल के इस चिराग को बुझने नहीं देंगे। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए दुनिया भर की फिक्र, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए दुनिया भर की टेंशन, और सुनो आपकी ढलती शाम को बनाओ खूबसूरत, और सुनो ना आपका दोस्त आया है, आपकी दोस्त आई है आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के गोंडा मैसेज मसाला शो में। तो अपने दिन को एकदम बहुत खुश, बहुत बढ़िया, बहुत बिंदास बनाना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अरविंद फ्रॉम मनकापुर, धर्मेंद्र मोहन आवाज जी कासगोंडा से, सनी पांडे नव्या गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निपर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सभी हा गोंडा से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। ओहो, आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में, पता नहीं क्यों ये ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आगाज कर दिया है कि मैं आ चुकी हूँ, शाम ढल चुकी है, बातें ढेर सारी होने वाली हैं, पंचायत ढेर सारी होने वाली है, गॉसिप्स ढेर सारी होने वाली हैं, बताऊंगी क्या क्या गॉसिप्स होने वाली है। लेकिन चलते हैं इसके पहले एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद में मिलेंगे और फिर बात करेंगे, और फिर जो सरप्राइज मेरे पास आप सभी के लिए है उसको मैं डिस्क्लोज करूंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये आपका शाम का बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट गोंडा मैसेज मसाला। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: साथ साथ चलते
1: तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला शो में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.666। हाँ जी 89।

की कोई डेडलाइन रही होगी, किसी का टारगेट रहा होगा, तो कोई ट्रैफिक से जूझ रहा था। लेकिन अब बस, क्या कहा मैंने, अब बस, अब अगले कुछ मिनट, कुछ पल, कुछ क्षण, जब तक आप गुंडा मैसेज मसाला की महफिल में हैं, ना कोई टारगेट है, ना कोई जल्दबाजी है, अब सिर्फ चाय का एक कप होगा, आपकी और मेरी प्यारी बातें होंगी, और भारत के कोने कोने से निकली ऐसी सच्ची कहानियां होंगी जो सीधे आपके दिल को छू लेंगी। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड को थोड़ी सी धीमी कर लीजिए, और अगर घर पहुंच चुके हैं तो बालकनी की हवा का आनंद लीजिए, और बस अपने रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, और चलिए चलते हैं, दिन भर की थकान को दूर भगाते हैं इस बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से गाने के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। एक कप चाय मेरे लिए भी चैट बॉक्स में शेयर कर देना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जुगल किशोर वर्मा जी MP से। स्टे ट्यून्ड।

once again, welcome back in your show, Gunda Message Masala, with your simple who is not so simple. और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM. कितना खूबसूरत सा नगमा था, बहुत ही प्यारा सा नगमा था, जिसको म्यूजिकल ब्रेक के लिए आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल ने सेलेक्ट किया था. फिलहाल चले चलते हैं अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल की तरफ, रुक करते हैं. क्या आप सभी तैयार हैं? दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपकी चाय का कप आधा खाली हो चुका होगा. और वैसे एक बात बताऊं, दोस्तों के साथ चाय की चुस्की और जिंदगी की उलझनों पर बशीर बद्र साहब ने बहुत ही कमाल की बात भी कही है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो. लेकिन इस फासले भरे शहर में अपनों के साथ की मिठास कैसे बची रहती है? चलिए आज की हमारी पहली कहानी की तरफ चलते हैं, जो सीधे हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ से जुड़ी होती है. जी हाँ दोस्तों, बात है एक यूनिवर्सिटी की, जहाँ एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में एंट्री लेते हैं. उनके हाथ में रहता है कांच का बड़ा सा खाली जार, और उन्होंने बिना कुछ बोले बैग से बड़े बड़े पत्थर निकाले और उस जार में भरने लगे. जब जार ऊपर तक भर गया तो उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, क्या ये जार पूरी तरह भर चुका है? सबने कहा, हाँ सर, बिल्कुल भर गया है. तभी प्रोफेसर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से छोटे छोटे छोटे छोटे कंकड़ निकालते हैं और जार में उसको भी डालने लगते हैं. जार को थोड़ा सा और हिलाया तो कंकड़ पत्थरों के बीच में जाके खाली जगह में सेट हो गया. उन्होंने फिर पूछा कि क्या ये जार अब पूरी तरह भर चुका है? सबने कहा, हाँ सर, बिल्कुल भर गया है. तभी प्रोफेसर मुस्कुराते हुए टेबल के नीचे देखते हैं और टेबल के नीचे से एक रेत का डिब्बा निकालते हैं और उस रेत के डिब्बे में से रेत को जार में उड़ेल देते हैं. तो रेत ने तो कंकड़ों के बीच बची कुछ ही थोड़ी सी जगह भी भर ली. छात्र हंसने लग गए, लेकिन बात यहाँ कहाँ खत्म होनी थी. प्रोफेसर ने अपनी थैली से दो गर्मा गर्म चाय निकाली और सीधे जार में डाल दिया. आप देख रहे हैं, पहले बड़े बड़े पत्थर जार में डाले, फिर छोटे छोटे कंकड़ जार में डाले, फिर उसके बाद में रेत जार में डाल दिया, फिर उसके बाद में अब जो बची कुची जगह थी उसको लिक्विड से वो फिल करना चाहते थे, उन्होंने गर्म गर्म चाय, दो कप चाय उसमें डाल दी और वो दोनों के दोनों कप चाय रेत और पत्थरों के बीच समा गई. फिर प्रोफेसर ने कहा कि ये जार आपकी जिंदगी है. उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाया कि ये जो जार है ना, ये आपकी जिंदगी है. बड़े पत्थर आपके जीवन के सबसे अहम, सबसे प्रीशियस, सबसे अनमोल चीजें हैं. आपका परिवार, आपकी सेहत और आपकी खुशियां.

और अगर फिर हम बात करें, प्रोफेसर ने कहा कि फिर अगर हम बात करें कंकड़ की, तो कंकड़ आपकी है नौकरी, आपका घर और आपकी गाड़ी, ये सारी चीजें हो गई कंकड़। और ये रेत आपके जीवन के छोटे मोटे मनमुटाव, गुस्सा और चिंताएं हैं। अगर आप जार में सबसे पहले रेत भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह तो बचेगी ही नहीं। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा अपने परिवार और अपनी सेहत को पहली प्रायोरिटी दीजिए। और हाँ, एक बात और, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना लग रही हो, दोस्तों के साथ दो कप चाय पीने की जगह हमेशा हमेशा बची रहती है। तो बस अपनों को संभालिए और सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा गाना। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आप लोगों को हमारे इस प्रोफेसर की स्टोरी कैसे लगी है, कैसी लगी, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल चलती हूँ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। कैसा लगा ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक वाला नगमा, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम अक्सर जिंदगी में छोटी मोटी रुकावटें आने पर शिकायत करने लगते हैं ना, कि सिस्टम सही नहीं है, या ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है, या ये काम तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, या तो मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, या तो मैं क्या, अरे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसे जुनूनी और ऐसे जज्बे पर अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर बिल्कुल खरा उतरता है कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और इसी बुलंद हौसले की मिसाल देखने के लिए आपको ले चलते हैं हमारे देश भारत के बिहार राज्य के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दशरथ मांझी की, एक ऐसा इंसान जिसकी पत्नी फागुनी देवी पहाड़ से गिरकर घायल हो गई और गांव में अस्पताल ना होने की वजह से 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ पार करते करते उसने दम तोड़ दिया। दशरथ मांझी टूट सकते थे, रो सकते थे, शायद वो भी कुछ मतलब शायद वो हताश हो जाते, निराश हो जाते, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। बहुत लोग होंगे, मेरे बहुत सारे लिसनर्स होंगे जो दशरथ मांझी के बारे में जानते होंगे। उन्होंने दोस्तों अकेले एक हथौड़ा और छेनी उठाई और उस विशाल काय पहाड़ के सामने खड़े हो गए। लोग उन पर हंसे, उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन मांझी ने पूरे 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल नहीं, दशरथ मांझी ने पूरे 22 साल 1960 से 1982 तक अकेले दिन रात पत्थर तोड़े। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अकेले उस पहाड़ का सीना चीर कर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया, जिसको लोग बोल रहे थे कि इम्पॉसिबल है, हंस रहे थे कि अरे ऐसे कैसे होगा एक चीनी एक हथौड़े से, उससे उन्होंने 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाया, जिसने 55 किलोमीटर की दूरी को घटाकर सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का कर दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इतना बड़ा पहाड़ अकेले कैसे तोड़ लिया, तो मांझी ने एक ही बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब लोगों ने पूछा मांझी से, दशरथ मांझी से, कि आपने अकेले कैसे इस पत्थर को तोड़ दिया, इस इतने बड़े पहाड़ को तोड़ दिया, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, जब भारत का एक आम इंसान ठान ले तो वो पहाड़ का रास्ता भी बदल सकता है। अपनी मुश्किलों से डरिए मत, उनका सामना कीजिए। और चलिए सुनते हैं एक एनर्जेटिक गाना और मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आपको दशरथ मांझी की कहानी कैसी लगी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना, और जिन लोगों को पहले से पता है दशरथ मांझी के बारे में वो भी मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला शो में, आपके अपने आज सिंपल नॉट के साथ में। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा खैरियत, और अब चलते हैं, रुक करते हैं अपने गोंडा मैसेज मसाला के गॉसिप वाले महफिल का। जी हाँ दोस्तों, ढलती शाम के साथ ही सड़कों की लाइटें भी अब धीरे धीरे धीरे धीरे जलने लगी होंगी हमारे स्ट्रीट पर, और हमारी सड़क, आई मीन हमारा गोंडा, हमारा शहर सब जगमगाने लगा होगा, और खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके भी अंदर आ रहे होंगे, आते जा रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शाम का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। और इस ढलती शाम में जब हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी को देखते हैं, तो दिल में बस एक अजीब सी तड़प होती है, किसकी? सुकून की। ऐसी सादगी और निस्वार्थ प्रेम को देखकर मुनव्वर राणा साहब की पंक्तियां सीधे दिल पर दस्तक देती हैं कि पेड़ को हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, मियां दरख्त लगाने से बात बनती है, और जो छांव बांटता फिरता है सारे शहर में, वो धूप छांव के मौसम से बेनियाज रहा। दोस्तों आज इस वक्त चलिए आपको ले चलते हैं कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले के एक छोटे से शांत हरे भरे आदिवासी गांव में। ये कहानी किसी और अमीर उद्योगपति या बड़े नेता की नहीं, बल्कि 72 साल की तुलसी गौड़ा जी की है, जिन्हें पूरा देश और उनके चाहने वाले प्यार से जंगल की देवी या प्लांट इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं।

का जीवन कभी आसान नहीं रहा। वे कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और एक बेहद गरीब परिवार में पली बड़ी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया। उनके पास कोई बड़ी डिग्रियां तो नहीं थी, लेकिन उन्हें पेड़ पौधों से इतना सच्चा प्रेम था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों को संवारने में समर्पित कर दी। उन्होंने अपने हाथों से 30,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए और उनकी देखभाल बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह एकदम कमाल से, एकदम इंसानों की तरह की। कमाल की बात तो ये है कि उन्हें जंगल के हर पौधे, उसके बीज के किस्म और उसकी जड़ी बूटी और उसकी औषधीय गुण, उनको एवरीथिंग, जैसे लगता है कि वनस्पति विज्ञान की पूरी नॉलेज थी। लेकिन वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी बिना किसी बॉटनी के किताब को पढ़े। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब साल सन 2021 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। देश के सबसे बड़े मंच पर, जहां बड़े बड़े बड़े दिग्गज सूट बूट और औपचारिक लिबास में आए थे, वहां तुलसी जी बिना चप्पल के, नंगे पैर और अपनी सादी पारंपरिक हल्की आदिवासी पोशाक में पहुंची। जब भारत के राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करने के लिए झुके, तो तुलसी जी ने अपने सहज मुस्कान के साथ राष्ट्रपति जी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें माँ जैसा आशीर्वाद दिया। उस एक लम्हे ने साबित कर दिया कि सादगी से बड़ा कोई भी गहना नहीं होता। सो दोस्तों, तुलसी गौड़ा जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए बड़े बड़े सूट बूट, आलीशान गाड़ियां, एकदम महल या बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके दिल में अपनी धरती, अपने प्रकृति और अपने काम के लिए सच्चा प्यार है, तो पूरी दुनिया खुद ब खुद आपके आगे सिर झुकाती है। तो आप लोगों का क्या कहना है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

विद यू अर्जित सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम कोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, घड़ी की सुइयां तो इशारा कर रही हैं कि अब हम अपने आज के इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा है? जी हाँ दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं हमारे आज की सफर की सबसे आखिरी पड़ाव की तरफ और इंसानियत और दूसरों के लिए निस्वार्थ चाहत पर राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब फरमाया है कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं सौ बार करो। और ऐसे ही खुशबू बिखेरती है एक सच्ची कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंबई की तंग लेकिन जिंदा दिल गलियों से आई हुई एक कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सोच किसी की ढलती शाम और थके हुए चेहरे को मुस्कान से भर सकती है। तो क्या आप सभी तैयार हैं अगली कहानी को सुनने के लिए? मैंने तो आप सभी को दो कहानियां आज सुना दी है, ये है तीसरी कहानी और ये भी बहुत जबरदस्त कहानी है, इसको जरूर सुनना चाहिए। इफ यू आर एग्री एंड रेडी तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और कहानी की तरफ हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आशु मिश्रा जी लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड।

तो चलते हैं कहानी की तरफ, मुंबई। ये कहानी है मुंबई की। जी हाँ दोस्तों, मुंबई जहाँ हर कोई अपनी मंजिल की दौड़ में भागा जा रहा है, वहाँ एक छोटे से टी स्टॉल के मालिक ने अपनी दुकान में एक बड़ा ही अनोखा नियम बनाया है। और नियम ये है कि हर शाम 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच, ध्यान से सुनिएगा, मुंबई में एक टी स्टॉल वाला है और वो एक अलग सा, एक अनूठा, एक अतरंगी नियम बना के रखा है। उसका नियम ये है कि हर शाम 6 से 8 के बीच जब पूरा शहर दफ्तरों से लौट रहा होता है, जो भी ऑटो वाला या कैब ड्राइवर दिन भर की चिलचिलाती धूप से निकल रहा होता है, ट्रैफिक की और थकान के बाद वहाँ चाय पीने आता है, तो वो टी स्टॉल का मालिक उनसे चाय के पैसे नहीं लेता था। उसने अपने काउंटर पर एक छोटा सा वुडन बोर्ड भी लगा रखा था, लकड़ी का एक बोर्ड भी लगा रखा था, जिस पर बड़े प्यार से लिखा था कि आज की चाय उस इंसान के नाम जो पूरे शहर को सही सलामत उसके घर पहुंचाता है। जब आसपास के लोगों और ग्राहकों ने उससे पूछा कि भैया तुम हर रोज अपनी चाय का इतना नुकसान क्यों करते हो, तो चाय पत्ती और दूध मुफ्त में तो आता नहीं है, तो उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर कहा, साहेब दिन भर ये ड्राइवर भाई सैकड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लोगों की कड़वी बातें और ट्रैफिक का गुस्सा सहते हैं, अगर शाम को मेरी एक गर्म कप चाय और एक सच्ची मुस्कान से उनकी दिन भर की थकान मिट जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज का दिन सार्थक जी लिया है। पैसे तो मैं कल भी कमा लूंगा, पर ये दुआएं कहाँ मिलेंगी। सो दोस्तों, आप लोग बताएंगे क्या कि इस कहानी से क्या सीख मिली? मेरे हिसाब से, मुझे तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी अनजान के लिए किया गया एक छोटे से छोटा सा मीठा काम पूरे शहर का मूड बदल सकता है। इंसानियत कोई बहुत बड़ी बात, बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में झलकती है। आज शाम जब आप घर लौटे या फिर अभी भी आप घर पे हो, तो यही सोचिएगा कि क्या हम भी कभी किसी मुस्कुराते चेहरे को देखकर बदले में एक मुस्कान दे सकते हैं? क्या हम भी किसी के लिए चाय का एक कप ऑफर कर सकते हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर अपने दिमाग में सोचिए, इमेजिनेशन करिए। और चलिए चलते हैं, इंजॉय करते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आप सुन रहे हैं अपना गोंडा मैसेज मसाला, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला शो में, आपके अपनी आज सिंपल और सो सिंपल के साथ में। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो बबीता जी गोंडा से आपका स्वागत है। सो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा, आप लोगों को ढेर सारी कहानियां सुनाई, ढेर सारी सच्ची कहानियां सुनाई। और दोस्तों बातों बातों में वक्त इतनी जल्दी बीत गया, इतनी खामोशी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। सो इस खूबसूरत सफर को अब यही विराम देने का वक्त आ गया है। लेकिन शो को अलविदा कहने से पहले दिल किया कि आपके दिल में सुकून का एक और दिया जला ही देती हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? अगर हाँ तो चलो एक बेहद छोटी लेकिन गहरी लेकिन बहुत ही रियल वाली स्टोरी की तरफ रुख करते हैं। बहुत ही छोटी सी है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्या पता ऐसे हम रियल स्टोरीज से ही थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाया करें। हाँ तो दोस्तों ये बात है बेंगलोर के सड़कों की, जहाँ एक शाम अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। ट्रैफिक भी रुक गया, लोग शेड की तलाश में इधर उधर भागने लगे। उसी सिग्नल के पास एक बुजुर्ग दादाजी और एक बुजुर्ग दादाजी खड़े थे, जो दिन भर कबाड़ बीनकर थक चुके थे। एक टूटी सी छतरी के सहारे पेड़ के नीचे ठंड से कांप रहे थे। तभी पास में एक खड़ी कार का दरवाजा खुला। एक लड़का उस कार में से बाहर निकलता है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट रहता है। उसके पास कोई दूसरा छाता या रेनकोट तो नहीं था, लेकिन उसने बिना एक पल गवाए अपनी महंगी रेनप्रूफ जैकेट उतारी और दौड़कर दादाजी के पास गए और बड़े ही सम्मान के साथ वो जैकेट उनके कंधों पर उड़ा दी। दादाजी ने कांपते हाथों से अपनी भीगी हुई टोपी उतारी, उस लड़के का चेहरा देखा और उनकी आंखों में बस तुरंत एक सेकंड में पानी आ गया और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो शब्दों से परे थी। उन्होंने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा इस शहर की ठंड तो बहुत है, पर तेरी इस गर्माहट ने आज मेरी आत्मा को ढक लिया। ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। उस लड़के ने बाद में अपने सोशल मीडिया पर लिखा, उस दिन मुझे एहसास हुआ जब आप किसी की जिंदगी से थोड़ी सी ठंड या तकलीफ मिटाते हैं तो सबसे पहले गर्माहट आपके अपने दिल को मिलती है। उस रात मुझे अपनी जिंदगी की सबसे गहरी और सुकून भरी नींद आई थी। तो दोस्तों सुकून कभी महलों में या बहुत सारे पैसों में नहीं बिकता। सुकून तो दूसरों के आंसुओं को पोंछने में, किसी थके हुए इंसान को एक मुकम्मल मुस्कान देने में और किसी के काम आने में ही छिपा होता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ जाते जाते निदा फाजली साहब का ये सदाबहार शेर आप सभी की नजर में रखना चाहूंगी। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सबीहा गोंडा से, पटेल नगर गोंडा से निशा और अरमान, स्टे ट्यून्ड। तो निदा फाजली जी का कहना है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। देखिए ना बाहर, देखिए ढलती शाम पूरी तरह से रात की गहरी आगोश में समा चुकी है। सड़कों पर गाड़ियों का शोर अब धीरे धीरे थम सा रहा होगा। मोहल्ले की गलियों में एक मीठा सा सन्नाटा उतर आया होगा। घरों की खिड़कियों से उठती ओ माय गॉड गर्मा गर्म खाने की खुशबू और बच्चों के खिलखिलाहट पूरे माहौल को एक अपनापन दे रही है। पूरे शहर पर हर दिल पर एक प्यारा सा ठहराव आ गया है। मेरी यही उम्मीद और दुआ है कि आज के इस शो को और आज के इस शो की सच्ची कहानियों ने, इन गानों ने आपके दिन भर के मानसिक तनाव और थकान को थोड़ा तो हल्का किया ही होगा। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी होगी और आपके दिल को थोड़ी सी गर्माहट तो जरूर मिली होगी। और अगर आप अपने घर पहुंच चुके हैं तो अपने जूते, अपनी चिंताएं, अपने ऑफिस का स्ट्रेस, अपना तनाव और दिन भर की हर उलझन को दरवाजे के बाहर ही छोड़ दीजिए
और अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, आराम से बैठिए, अपने परिवार और अपनों के साथ बैठकर बातें कीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए और दिन भर में जो कुछ भी थकाने वाला या बुरा हुआ है उसे आज के इस शो के धुनों के साथ यही भूल जाइए। याद रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हर अंधेरी रात के बाद एक नई रोशन और उम्मीदों से भरी सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। अब मैं आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहती हूँ आप सभी से इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी आप सभी के आपके अपने गुन्ना मैसेज मसाला शो में, आपके अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का पूरा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनों को हमेशा दिल से लगा कर रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि और एक बहुत ही सुकून भरी मीठी नींद आपके नाम। सो चलते हैं, लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद में दोस्तों मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक आपकी फरमाइशी की महफिल में, और फिर इसके बाद मैं लेना चाहूंगी अलविदा। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: झूठ बोल रही हो तुम।
1: साहब मैंने आपसे कहा ना, जिसने मेरी जान बचाई वो एक मसीहा था, मैं उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकती।
2: एक बात बता,
0: डिटेल्स लिख।
2: बूढ़ी हो या जवान, कोई भी औरत तेरे खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलती? तेरे बदन के किसी खास जगह पे दिल है क्या?
3: भाग ले अंदर कर इसे।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आरजी सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये तेरा लहजा जो मीठा हो रहा है, ये तेरा लहजा जो मीठा हो रहा है, अब मुझे तुझसे भी खतरा हो रहा है। पास मेरे कोई कश्ती भी नहीं और पानी धीरे धीरे गहरा हो रहा है। इसलिए भी चुप थे हम दोनों शबे वस्ल में, जानते थे कि धोखा हो रहा है। सोचा था मैंने है औरों से अलग, तो जो भी सोचा था सब उल्टा हो रहा है। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, खोल लीजिए, अपने सारे के सारे जज्बात निकाल लीजिए, बिखेर दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आपको सुनाने के लिए तो बतेर मिल जाएंगे, लेकिन आपको सुनने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो अगर कोई सुनने के लिए यहाँ आपको बैठा है, तो बेशक बिना किसी टेंशन के, टेंशन फ्री हो के, जो भी हो सारे जज्बात आप चैट बॉक्स में निकाल सकते हैं, और चाहे तो अपने फरमाइशी गीतों से ही बहुत कुछ कह सकते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, राजू सीतापुर से, बबीता जी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, अरविंद मनकापुर से, और हमारे फ्रीक्वेंसी वाले लिसनर्स सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बल जी रानी बाजार सुनारगली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का तहे हुए दिल से स्वागत है। सो चलिए एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश, पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि टूटा हुआ कांच किसी ने जोड़ा है क्या, टूटा हुआ कांच किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने किसी को छोड़ा है क्या, ये जो पढ़ रही हो गौर से मेरी शायरी, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। अरे धर्मेश त्रिपाठी जी, अगर ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल, दूसरे का दिल ना तोड़ दे तो मजाल है किसी की, कि कोई मेरा दिल तोड़ दे। अरे भले ही पिघल जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन इतना भी मोम की तरह दिल नहीं है, दिल को पत्थर से एकदम कोटिंग करके रखा है। ठीक है, सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की ही, और उनको सुनना है मस्त कलंदर का गाना, मिका सिंह हनी सिंह का गाना, और एंजॉय करते हैं तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा। इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे, कहाँ, आपके आरजे मनु के पास, क्योंकि अब वो होस्ट करेंगे आपका अपना आज का फरमाइशी गीत। तो अभी के लिए मुझे अलविदा दे दीजिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर से कल गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ा ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9286 9876 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100% डिस्काउंट।
10: वाह!
9: गीता इंटरनेशनल

0: लिया लिया ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

सितम करने वाले कहीं से तू आजा जी। हाँ, इस कदर कौन बुलाता है सितम करने वालों को, लेकिन रवि जी ने बुला लिया है सितम करने वाले कहीं से तू आजा। और आपने आवाज़ दी और हम चले आए, लेकिन सितम नहीं करेंगे आपको, गीत सुनाएंगे।

जी हाँ बिल्कुल, अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में महफिल चाहे जितनी भी शानदार हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के न होने से अधूरी सी पड़ जाती है। अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता इम्तियाज़ जी की तरफ। भाई आप सभी को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद और शुभकामनाएँ। आज सारी रात जागा भी जाएगा। जी हाँ, आइए और उनके नाम जिनका जन्मदिवस है, जो पैगंबर थे और जिनके बाद न कोई आया। कहा गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, नहीं कोई पूजनीय है सिवाय अल्लाह के, और हजरत मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं, उनकी इबादत में आपको ले चलते हैं। लब्बाए रबुल्ला, ये इम्तियाज जी की प्यारी सी फरमाइश।

इसके पश्चात मध्य बहुत ही प्यारे श्रोता श्री अजीत मिश्रा जी जो हमको सुनते हैं जी आवास विकास कॉलोनी से थोड़ी दूर पर लक्ष्मणपुरी कॉलोनी के पास गीत बहुत प्यारा भेजा है उन्होंने। हम अपने उन कॉलेज की दिनों में खो गए, सावन चल रहा है और थोड़ी सी बरसात भी अभी हल्की सी हुई और गीत सुनने को मिल गया, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो जी श्री अजीत मिश्रा जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, फिल्म चांदनी का पर्दे पर है विनोद खन्ना और उनके साथ श्रीदेवी।

जी हाँ, सावन की झड़ी के बाद अब चलते हैं भाई आशु मिश्रा जी जो हमको सुनती हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ से, और गीत बहुत प्यारा भेजा है आमिर खान ने पर्दे पर, और गीत बहुत प्यारा है ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, बहुत ही प्यारा सा गीत।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत तुमने एंजॉय किया। और अब चलते हैं भाई निधि जी, जो हमको सुनते हैं सीतापुर से। गीत है प्यार काहे बनाया राम ने, बहुत ही प्यारा सा गीत निधि जी।

0: यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
7: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
8: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
9: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लवल की मुबारकबाद, अग्रिम मुबारकबाद। और भाई मुमताज़ अंसारी जी ने फरमाइश की है, हाजियों जाओ शहनशाह का रोज़ा देखो। बहुत ही प्यारी सी कव्वाली ये मुमताज़ अंसारी जी की फरमाइश।
1: रिसालत के साथ कीजिए और जी लगाकर सारा मजमा मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर एक शानदार नारा लगाइए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितना प्यारा नारा होगा उतना ही प्यारा कलाम सुनेंगे। बाबा से बुलंद खैर मकदम कीजिए, नारे तकबीर। माशाल्लाह जलसे में आगे वाले लोग तो काफी, कभी बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलिए। होता तो क्या होता। शायर इस्लाम जनाब सज्जाद निजामी, मैं

मोहतरम हजरात, अभी आपने सुना कि एक हाजी जब हज बैतुल्लाह के सारे अरकान अदा कर लेता है और उसके बाद जब वो हाजी कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है,

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत ये श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी की तरफ के तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। अब चलते हैं दीपक कुमार जी की तरफ। फिल्म का नाम मासूम और गीत तुझसे नाराज नहीं जिंदगी है।

0: थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच।
1: जी हाँ, और अब बढ़ते हैं अपने बहुत ही प्यारे से श्रोता अरविंद मौर्या जी की तरफ। और गीत है तेरी दोस्ती है, इससे मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, और ये डेडिकेटेड है गीत नव्या जी को, नाजिया को, सविता जी को और इम्तियाज़ जी और जितने भी उनके प्यारे श्रोता हैं, दोस्त हैं इस रेडियो के, उन सबको समर्पित करते हुए गीत उन्होंने भेजा है।

हाँ भाई, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि पंडित भोलानाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, चरण स्पर्श आपको, सावन के महीने की शुभकामनाएं भी आपको। और आपने गीत भेजा है बहुत ही प्यारा सा, तेरी उंगली पकड़ कर ला। तो आज की अंतिम फरमाइश आपको सुनाते हैं, पंडित भोलानाथ मिश्र जी की फरमाइश, तेरी उंगली पकड़ कर चला।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, इस्तकबाल आप सभी को, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। हमारे साथ पंडित भवनाथ मिश्रा जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। पंडित जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और उन्होंने हमारी महफिल को नाम दे दिया है मोहब्बत नामा। भाई क्या बात है, और 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी। अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। जी हाँ, अनूप मिश्रा जी प्रणाम करते हैं आपको, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और हाथ थाम कर भी तेरा सहारा न मिला, हाथ थाम कर भी तेरा सहारा न मिला। मैं वो लहर हूँ जिसे किनारा न मिला। मिल गया मुझे जो कुछ भी चाहा मैंने, मिला नहीं सिर्फ साथ तुम्हारा न मिला। वैसे तो सितारों से भरा हुआ है आसमान, वैसे तो सितारों से भरा हुआ है आसमान। जो हम ढूंढ रहे थे वो सितारा न मिला। कुछ इस तरह से बदली फिर जिंदगी हमारी, फिर जिसे भी पुकारा वो दोबारा न मिला। एहसास तो हुआ उसे मगर देर हो गई, उसने ढूंढा मगर निशान हमारा न मिला। क्या बात है, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। और ऐसा क्या लिखूं कि तेरे दिल की तसल्ली हो जाए, क्या ये बताना काफी नहीं कि मेरी जिंदगी हो तुम। क्या बात है, सोचते हैं जान उसे मुफ्त ही दे दें, इतने मासूम खरीदार से क्या लेना देना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर खरीदार मासूम हो तो फिर जान तो सस्ता सौदा है। आज जिस शायर की, जिस कलमकार की बात करेंगे, उनका नाम है नदीम शाद। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम ये कैसा मलाल कर बैठे, हम ये कैसा मलाल कर बैठे, दिल का तुमसे सवाल कर बैठे। हम ये कैसा मलाल कर बैठे, दिल का तुमसे सवाल कर बैठे। प्यार करना हमें न आया मगर इश्क में हम कमाल कर बैठे। खोए थे हम तेरे ख्यालों में, खोए थे हम तेरे ख्यालों में, पर हकीकत ख्याल कर बैठे। जिक्र तेरा जबान पर लाकर अपना चेहरा गुलाल कर बैठे। आपको चाहते हैं उनसे कहा, आपको चाहते हैं उनसे कहा, हम भी कैसी मजाल कर बैठे। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारे शायर नदीम शाद जी हैं। अरविंद जी भाई मनकप से जुड़ चुके हैं। हेलो मनु सर, शुभ संध्या। आपको भी शुभ संध्या। मेरी रूह की तलब हो तुम, कैसे कहूँ सबसे अलग हो तुम। जी हाँ, कह तो दिया आपने, वास्तव में सबसे अलग हैं आप। और भाई अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में, और आज शुरुआत करते हैं मखमली आवाज़ के मालिक यानी जगजीत सिंह साहब की एक बहुत ही प्यारी की गज़ल के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।
1: आप सभी से

जी हाँ, सचमुच लगता है जमाना खराब है। क्या बात है भाई। अरविंद जी लिखते हैं मनकापुर से, तुम मेरे लिए चांद हो जो कभी दूर नहीं, तुम्हारी रोशनी ही मेरी जिंदगी का नूर है। क्या बात है भाई। और पंडित भरतनाथ मिश्री लिखते हैं, अद्भुत है गीत और संगीत और शुभ रात्रि। अरे अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं पंडित जी, शुभ रात्रि कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है और ये हमने आपसे मांगा है। अनुज लिखते हैं, जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, कम वक्त ये जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन क्या किया जाए साहब, इसी जिंदगी में जीना है। और रह जाते हैं तो कुछ प्यारे तेरे बोल। और हमारे साथ भाई नाजिया अंसारी जी मौजूद हैं। जी हाँ, इस्तकबाल करते हैं आपका भी आपके शो बहारे गजल में। कुछ किस्से दिल में तो कुछ कागजों पर आबाद रहे, बताओ कैसे भूले उसे जो हर सांस में याद है। क्या बात है। और चलिए भाई नदीम शाद की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि हमने माना अभी अंधेरा है, हमने माना अभी अंधेरा है, पास लेकिन बहुत सवेरा है। है मतलब अंधकार है, और अंधकार का जो रात का जो आखिरी पहर होता है उसको यामिनी बोलते हैं हिंदी में। उस समय अंधकार बहुत घना छा जाता है, और उस घने अंधकार का मतलब होता है कि अब सवेरा होने ही वाला है। अब तो शायद वो दौर नहीं रहा जब फोटो खींचने के लिए कैमरे की आवश्यकता पड़ती थी, लोग कैमरा रखते थे तो उसकी एक रील होती जिसको निगेटिव बोलते थे। तो मेरे एक मित्र हैं, स्टूडियो था उनका, तो वो रील जो है वो लखनऊ में उसमें धुलवाई जाती थी। कुछ बीते हुए वर्षों की बात कर रहा हूँ। तो एक बार मैं उनके साथ चला गया, हमने कहा ये निगेटिव है और इससे निकल कर रील ले आई जाती है, फोटो कैसे बनता है, कुछ उत्सुकता थी जानने की। तो उनके साथ चले गए तो उन्होंने दिखाया कि देखो उस कमरे में जो है उस रील को साफ किया जाता है, और उस कमरे में एकदम घना अंधकार होता है, एकदम डेंस ब्लैक, मतलब इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। तुमने कहा ये इतना अंधेरा क्यों है? तुमने उत्तर दिया कि अगर हम उजाले में निगेटिव को साफ करेंगे तो जो फोटो आएगी वो धुंधली आ जाएगी। कहीं कहीं आपने देखा होगा लोग फोटो जब खींचते थे तो कैमरे में कहीं हल्का सा ब्लर हो जाता था, उसका रीजन ये था कि वो उजाला पड़ जाता था, उसके ऊपर रोशनी पड़ जाती थी। इसी बात को अगर जिंदगी के साथ कनेक्ट करें, अगर जोड़ें, तो जब चारों ओर दुख ही दुख हो, जिधर हम मुंह फेरते हैं जिंदगी में, एक वक्त ऐसा आता है, कहा जाता है कि मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तो इंसान नहीं बड़ा होता है, इंसान का वक्त बड़ा होता है। तो चारों ओर हम देखते हैं तो घना अंधकार, घना अंधकार, घना अंधकार। तो उसमें मुझे वो बात याद आती है उनकी कि निगेटिव को हम जितने ही डार्क में साफ करेंगे तस्वीर उतनी ही अच्छी आएगी। कभी कभी ऊपर वाला हम सभी को चारों ओर से मुसीबत में डाल देता है, और ऐसा कि कुछ सोचता नहीं है कि अब करें तो क्या करें। ये समझ जाइए कि अगर चारों ओर अंधकार है, चारों ओर बुरे हालात हैं, मुसीबत हैं, तो इसका मतलब सुख अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। द फ्यूचर इज ब्राइट, जो भविष्य है, जो मुस्तकबिल है, वो बहुत शानदार है आपका। कभी भी अगर ऐसी स्थिति आए तो वो बात मुझको याद आती है कि जितना ही अंधेरा होगा द
तस्वीर उतनी ही अच्छी आएगी। हमने माना अभी अंधेरा है पास, लेकिन बहुत सवेरा है। मैल दिल में कोई नहीं रखना, मैल दिल में कोई नहीं रखना, दिल में रब का अगर बसेरा है। हृदय में अगर आप मैल लगते तो हृदय में ऊपर वाले बसते हैं, चाहे हम उनको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, जो कुछ भी आप जिस नाम से भी पुकार लीजिए। और वहां पर अगर दिल में मैल है तो मतलब ईश्वर आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहा जाता है कि मतलब हर जगह ईश्वर की उपस्थिति। एक छोटी सी लघु कथा याद आ गई मुझे। दिल में मैल रखने पर एक प्यारी सी छोटी सी कहानी याद आई, आपको सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपने हमको उपदेश दिया था कि आप सभी के हृदय में रहते हैं, तो क्या कौरवों के हृदय में आप नहीं थे जिन्होंने इतना गलत काम किया? अगर आप रहते हैं तो क्या वहां नहीं रहते? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं कौरवों के हृदय में भी था। तो फिर अर्जुन ने कहा कि फिर उन्होंने ऐसे कदम कैसे उठा लिए? पांचाली को घसीट कर लाया गया, एक स्त्री की इज्जत सरेआम नीलाम होने ही वाली थी कि आपने वस्त्रावतार बनकर एक अबला को बचाया, आप बोले क्यों नहीं? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि मैं सभी के पास रहता हूं, और जब भी कोई कुछ गलत कदम उठाने जाता है तो मैं उसको टोकता हूं, ये गलत है, इसे मत करो। हमारे पास अच्छाई और बुराई दोनों का विकल्प चुनने का अधिकार हमें है। बुद्धि हमको ईश्वर ने दे रखी है, हम क्या चुनते हैं ये वो नहीं बताते। उन्होंने कहा मैं अंतःकरण से बोलता हूं कि ये गलत है। जो बुद्धिमान होते हैं वो उस आवाज को सुन लेते हैं और अपने आप को उस गलत काम से बचा लेते हैं, और कुछ जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार देते हैं वो गलत काम कर पाते हैं। और ये बात हकीकत है, सत्य है। जब समाचार पत्र पढ़िए तो कभी कभी लगता है कि ऐसे ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि 12 साल 13 साल की बच्ची के साथ जो है वो बहुत ही घिनौने अपराध हो जाते हैं, तो आंख में आंसू आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानियत क्या यहाँ गिर गई, इतनी गिर गई कि बच्ची को तक नहीं छोड़ा गया? तो जब उसने ये काम किया होगा तो उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका होगा, नहीं ये गलत है, लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज मार दी होगी। ये उसका विकल्प है कि आपकी अंतरात्मा ने कहा और आपने मान लिया, मतलब आप समझदार हैं। अंतरात्मा ने कहा और आपने नहीं माना, इसमें ईश्वर कहीं गलत नहीं है। जिस काम को करने का दिल न करे और मन अगर रोके कि नहीं मत करो, तो फिर मत कीजिए। वो एक बार आवाज आती होगी आपने, मैंने भी अपने घर में चोरियां की हैं, कभी मम्मी सो जाए तो छेना खाने का मन करा, घर में है चीज़ें लाओ निकाल के मम्मी चोरें चुपचाप खा लें, लेकिन दिल रोकता था कि नहीं चोरी करना बुरी बात है। एक बार मन रोकता था, मुझे याद है, और फिर ये होता था नहीं चलो अपने ही घर में तो है क्या चोरी। लेकिन कभी भी आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो एक बार रुकता है मन, क्यों? क्योंकि वहां ऊपर वाला रहता है। मैल दिल में कोई नहीं रखना, दिल में रब का अगर बसेरा है। छीन लेता है साथ अपनों का,
छीन लेता है साथ अपनों का, वक्त वो बेरहम लुटेरा है। वक्त कभी किसी का हुआ नहीं साहब, किसी का नहीं हुआ, कोई किसी का वक्त हुआ ही नहीं आज तक। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बेवफा क्या है, तो मैं कहता हूं वक्त है, जो कभी किसी का नहीं हुआ। छीन लेता है साथ अपनों का, वक्त वो बेरहम लुटेरा है, सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के। जितने भी शरीर को पांच चीजें, शरीर के पांच धर्म हैं, हम सभी के शरीर के पांच धर्म हैं, जन्म, जरा, जरा मतलब वृद्धावस्था, मृत्यु, सुख और दुख। ये मानव शरीर के पांच धर्म बताए गए धर्म है। शरीर मिला है तो वृद्धावस्था की ओर जाएगा, व्याधि होगी मतलब रोग होगा, मृत्यु होगी और दुख आएगा। ये शरीर को के लिए बताया गया कि ये होता ही है, ये शरीर का धर्म है। सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के। साहब ऊपर वाले ने हिसाब किताब बहुत अच्छा लगाया, वो सोच रहा था कि हम किसको कितना देकर भेजें और किसको कितना लेकर बुलाएं। तो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर उसने कहा कि ये काम करते हैं, ये हिसाब कौन रख पाएगा कि हमने किसको कितना देकर भेजा है और कौन कितना लेकर आ रहा है। उसने एक हिसाब लगाया, गणित का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है वो, गणितज्ञ। उन्होंने क्या किया, इस दुनिया में सबको खाली हाथ भेजा और इस दुनिया से सबको खाली हाथ बुला लिया, कोई गणित नहीं। सब खाली हाथ गए, सब खाली हाथ फिर आ गए वहीं पर, जहाँ जॉन मिल्टन कहते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे डांटे। तो सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, अरे ये जहां तेरा है न मेरा है, ये दुनिया न आपकी है न हमारी है। बहुत ही प्यारा सा इस पर तो वो गजल कहने वाली है, मैं पल दो पल का शायद हूं। लेकिन उसके पहले आपको, जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दुख मिलता है। और हमेशा याद रखिएगा मेरी छोटी सी बात, मैं बहुत कम जानने वाला व्यक्ति हूँ, सुख की इच्छा करना ही दुख है। अगर कोई आपसे पूछे दुख क्या है, सुख की इच्छा करना दुख है। आप सुख की इच्छा मत कीजिए, देखिए आपको शायद दुख नहीं होगा, लेकिन इंसान करता है। जी हाँ, सविता शास्त्री जी, चरण स्पर्श आपको, और कैसी हैं आप, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। और आपने अच्छी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भाई। नाजिया अंसारी जी हैं, अरविंद जी हैं भाई मेरे साथ, क्या बात है भाई। और नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब हम तो साहित्य के आदमी हैं अरविंद साहब, और ऐसे ही मन में आ गया तो ऐसे बोल दिया। सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, ये जहाँ तेरा है न मेरा है। आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और हमारी बात से हो सकता है आप लोग थोड़ा सा हो सकता है, मतलब मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, आप मेरी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन सोचने का एक तरीका ये हो सकता है। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

जी, परिस्थितियों का बड़ा गहरा असर इंसान के ऊपर होता है। अभी मैं जो बात कर रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो कविताएं लिखी। उन्होंने कहा कि पहली कविता उन्होंने लिखा कि गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। अब देखिएगा दोनों पंक्तियों में विरोधाभास। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थितियां बदली और कवि ने कहा कि गीत नया गाता हूं। परिस्थितियां बदल रही हैं। उन्होंने लिखा कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगवाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची की अरुणिमा की देख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहते हैं सारे पीले पत्ते झड़ गए, कोयल की आवाज़ आती है, और प्राची में मैं देख रहा हूँ कि पूरब में सूर्य उग रहा है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, पत्थर पर भी हमने पौधे जमा दिए, झरे सब पीले पात, जितनी नकारात्मकता थी सब खत्म, कोयल की कुहकरा, कोयल बोल रही है, प्राची की अरुणिमा में, मतलब प्राची कहते हैं पूरब दिशा को, देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लिखा टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक ही कवि है और लिखने के दो तरीके, गीत नया गाता हूँ या गीत नहीं गाता हूँ। परिस्थितियाँ, इंसान अगर थोड़ा सा धैर्य करे तो बहुत कुछ पालेगा वो। आइए, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी कि एक बार गीत नहीं गाता हूँ और एक बार गीत नया गाता हूँ, ऐसे ही मुकेश जी की आवाज़ में एक ही फिल्म में दो अलग अलग भाव हैं। एक और कवि कहता है मैं पल दो पल का शायर हूँ, और वही कवि कहता है मैं हर एक पल का शायर हूँ। दोनों नगमों को ध्यान से सुनिएगा, एक ही व्यक्ति हैं लिखने वाले, एक ही व्यक्ति हैं गाने वाले, एक ही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर फिल्माया गया है। जी हाँ, उम्मीद है आप जीवन के इस परिप्रेक्ष्य को इस गीत के माध्यम से अवश्य देख पाएंगे। सुनिए और बताइए आपको ये संयोजन कैसा लगा। जी हाँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, और इसके बाद मैं पल दो पल का शायर हूँ या मैं हर एक पल का शायर हूँ, ये हम छोड़ते हैं। आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं सुनकर बताइएगा।

अगर आपने शब्दों पर गौर किया होगा तो मैं पल दो पल का शायर हूं और वही कवि फिर से एक बार उसकी कविता उठती है और कहता है, नहीं मैं हर एक पल का शायर हूं। मतलब जीवन के झमेले में, ये जो जिंदगी का झमेला है साहब, झमेला ही है, और इस झमेले में हम इतने मसरूफ हैं, इतने व्यस्त हैं कि मतलब कभी अपने से अपना टेलीफोन नंबर मिलाइए, सेलफोन नंबर मिलाइए तो बिजी बताएगा। इंसान दूसरों से मिलने में इस कदर मस्त है कि खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त है। जी हरविंद लिखते हैं, वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बस खुश रहना नहीं सिखाया। जी नहीं साहब, देखिए वक्त इंसान को सिखाता है कि मैं ये परिस्थितियां आपके सामने डाल रहा हूं, इन परिस्थिति में आप क्या करोगे। अगर आप पानी उबाल रहे हो और उसमें आलू और अंडा ये दोनों डाल दीजिए, रिजल्ट क्या होगा। और चाय की पत्ती भी डाल दीजिए, पानी उबल रहा हो और तीन चीजों को छोड़िए, उसी में आलू, उसी में अंडा और उसी में चाय की पत्ती। पानी सबके लिए एक जैसा है, आलू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आलू मुलायम हो जाएगा, उबल जाएगा। उसी गर्म पानी में जो अंडा है वो सख्त हो जाएगा। ये अच्छा गर्म हो तो हमको बताते हैं, रुको, गर्म पानी में अंडा आपने देखा होगा वो जमता है और चाय की पत्ती अपना रंग छोड़ती है। तो आप बताइए, पानी तो सबके लिए एक जैसा था, फिर आलू, अंडे और चाय की पत्ती, इन तीनों ने पानी से, क्या पानी अलग अलग था, नहीं पानी एक ही है साहब। ये हम और आप पर डिपेंड करता है कि हम उबल जाते हैं, हम सख्त हो जाते हैं, हम मुलायम हो जाते हैं या हम अपना रंग छोड़ देते हैं। तो ये है परिस्थितियां, मतलब ठीक है हम तो एक ही जीवन पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और कहीं कहीं पढ़ा मैंने कि प्रारब्ध पहले रचा, यानी भाग्य पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, मनवा चिंता क्यों करे भज ले श्री रघुवीर। पहले तक आपकी तकदीर लिख दी गई है, उसके बाद आप पैदा हुए। छटपटा के मर जाएंगे आप साहब, लेकिन जो नहीं होना है वो नहीं होना है। ये कड़वा है लेकिन सच है। मतलब प्रारब्ध लिख जाता है और ऐसे ही प्रारब्ध है। ऐसी स्थिति में वक्त अगर आपको खुश रहना नहीं सिखाता है तो मुझे लगता है कि आपको वक्त को जवाब देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए कि देखो एक कहीं पंक्ति मुझे याद आ गई कि गमों से कह दो कि घिर घिर के आए, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। यानी तक जब हमारे ऊपर गम पड़ता है तो हम मुस्कुराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज ये सर कहना बहुत आसान है बट जिंदगी जीना बहुत कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। और जो आसान है वो जिंदगी हो ही कहाँ सकती साहब।
अगर वो आसान होती तो ज़िंदगी कहाँ होती। लोग कहते हैं हम जो पाना चाहते हैं वो कठिन होता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है जो कठिन है वही हम पाना चाहते हैं। कौन चाहता है कि हम चपरासी बन जाएं नगर पालिका में, स्वीपर बन जाएं? क्या चाहते हैं? टीचर हो जाएं, जज हो जाएं, डीएम हो जाएं, आईएएस हो जाएं, आईआईटीएन हो जाएं, ये सब कठिन है। ऐसा नहीं है कि जो हम पाना चाहते हैं वो कठिन है, नहीं साहब, जो कठिन है वही हम पाना चाहते हैं जी। प्रेम का सिर्फ आरंभ होता है अंत नहीं, जो अंत है वो प्रेम नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, शत प्रतिशत सहमत आपकी बात से। आशु मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन भी नज़दीक आ रहा है, उम्मीद है आपसे मुलाकात गोंडा में होगी। और हाँ भाई, अब तो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो हमारी कुछ भाई हमारे होंगे जो दूर होंगे, कुछ बहनें हमारी होंगी जो दूर होंगी, और अब इंतज़ार कर रही होंगी कि आज तो 26 है, एक दिन के बाद वो पर्व है। इस दुनिया के सबसे अच्छे रिश्तों में मैंने जिस रिश्ते को बहुत अच्छा माना वो भाई और बहन का रिश्ता है। साल में एक दिन आता है जब भाई और बहन इंतज़ार करती हैं जी, इस लम्हे का, इस पल कब की प्रतीक्षा होती है। आइए चलते चलते, अब जो लोग दूर हैं, जो भाई दूर हैं, जो बहन दूर हैं, उन सब के नाम एक प्यारी सी गज़ल करते हैं। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। अगर आप कहीं दूर से हमको सुन रहे हैं, भाई हैं आप, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी बहन तक रक्षाबंधन में ज़रूर पहुँचें, और अगर आप बहन हैं तो प्रयत्न कीजिएगा कि आप भाई तक ज़रूर पहुँचें। ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। जी हाँ, बाहर रहने वाले इस दर्द को समझते हैं, आइए इस दर्द के साथ आज के इस कार्यक्रम को अब आपसे लेते हैं अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते चलते हमारी ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

हेलो एंड वेलकम टू क्या नस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी सम्मान। धूप बत्ती का धुआं गोल आकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था, शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूप बत्ती के सफेद गोलाकार धुएं के कण सर्पिलाकार होते हुए तितर बितर हो जाते थे। चंदन धूप बत्ती की खुशबू मनोज के नाक में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने अधीरा के मृत शरीर के पास दीपक के साथ एक मोटी सी धूप बत्ती भी जला रखी गई थी, पर मनोज चाहकर भी चिर निंद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नजरें झुकी हुई थीं, बस कभी कभी नजर उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीवी अधीरा के संग 30 वर्षों का सफर आज यहां खत्म हुआ, पर आज कहां, वो तो 20 साल पहले उस दिन ही खत्म हो गया था जब मनोज ने पहली बार अधीरा के चरित्र पर लांछन लगाया था। वो दूध वाला घर पर क्यों आया था अपनी बीवी के साथ? गुस्से में अंधा हो गया था मनोज। अधीरा घबराते हुए बोली थी, कब? मैं तो कल ही आई हूं मायके से, मुझे क्या पता? मनोज गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूध वाला आया था अपनी बीवी के साथ यहां, उसे ये दिखाने कि तेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है। अधीरा मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और छी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पर मनोज कहां सुनने को तैयार था। 30 साल की अधीरा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया था। मनोज और अधीरा की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। मनोज औसत रंग रूप का युवक था और अधीरा गोरी लंबी पढ़ी लिखी आत्मविश्वासी घरेलू और खुश मिजाज युवती थी, पर मनोज उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पोजेसिव था। कोई उसे एक नजर देख भी ले, ये मनोज को कतई बर्दाश्त नहीं था।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना, अधीरा अपना देह त्याग चुकी थी और मनोज वहां बैठा पुरानी बातें याद कर रहा था कि किस तरह आज से कई साल पहले ही उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था मनोज के शक्की स्वभाव की वजह से। अब आगे, दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन सोमवार था। अधीरा को अचानक अपने दोनों बेटे सजल और सारांश के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते मनोज अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमा कर बैठ गया और उस दिन अधीरा को डसने लगा। अधीरा बोली, दूध वाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने। कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर मनोज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अधीरा के खिलते चेहरे पे जैसे पतझड़ आ गया, आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया। पर माँ की वो सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रह जाना, ये अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है, याद करके वो चुप रह गई। 8 और 10 वर्षीय सजल और सारांश इस सब से बेखबर थे, पर माँ की सूनी सूनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेम पूर्ण जीवन की ही कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की, वो लम्हे मिले तो पर इतने कम कि उनका मिलना ना मिलने के दुख से दोगुना हो उठा। तेज रोने की आवाज से मनोज जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। अधीरा की दोनों छोटी बहनें अनुभा और सुगंधा भी आ गई थीं और लाल साड़ी में लिपटी लेटी अधीरा को देखकर उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से मनोज को ही घूर रही थी।
1: हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई,
0: अनुभा रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन सुगंधा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, अपने हाथों से अधीरा को छू छू कर देख रही थी।
1: दीदी उठो, देखो हम आ गए, अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वो भी बिना तुम्हारे बुलावे के। हर बार

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना अधीरा का पति मनोज बहुत ही शक्की स्वभाव का था और उसके इस व्यवहार से अधीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जैसे मनोज से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया था और आज जब अधीरा अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी तो मनोज नजरें उठाने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। अब आगे मनोज ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफी दूर बैठा था। वहां से उसे अधीरा का

चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनों के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और अधीरा की सहेलियां भी तेज स्वर में रोने लगीं। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से मनोज को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नजरें मिल गईं। ओह, इतनी नफरत, घृणा! मनोज की नजरें झुक गईं। हाँ, हूं मैं इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया? उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेरी से लाने लगा था। अधीरा भी धीरे धीरे सब भूल गई, ऐसा लगता था। पर अविश्वास की फांस उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। 6 साल बाद एक रोज, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा आ पाना संभव नहीं है। अधीरा किसी से बात कर रही थी। मनोज को अंदर आते देख उसने झट से फोन रख दिया। इतनी बात तो मनोज ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फोन था? किसी का नहीं, मेरी एक सहेली अंजलि का था। घर पर बुला रही थी मुझे। आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई। उसी दिन मनोज ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। ललित नाम के किसी शख्स ने 2 बार अधीरा को फोन किया था। मेरी जानकारी के बगैर कोई गैर मर्द मेरी बीवी को फोन कर रहा है और मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। जरूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब मनोज वही सोच रहा था जो वो सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है ये ललित और क्यों उसने तुम्हें फोन किया? कहां बुला रहा था मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही अधीरा हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोलते क्यों नहीं? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 10 सालों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी अंजलि भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर कई वर्षों से मिलना नहीं हुआ है उन दोनों से। अधीरा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा हो मनोज ये सब सुनने मानने को तैयार ही नहीं था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना, मनोज अपनी पत्नी अधीरा पर बहुत शक करता था। उसके शकी स्वभाव ने अधीरा को अंदर तक तोड़ दिया था। फिर एक समय ऐसा आया जब उनके रिश्ते में कोई मिठास नहीं बची। और अब जबकि अधीरा ये संसार छोड़कर जा चुकी थी, तब मनोज को अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था और पुरानी सारी बातें याद आ रही थीं। अब आगे अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं, कोई बोल रहा था। आवाज सुनकर मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा ना हो सका, वो मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था। अपने नाम के विपरीत अधीरा में धैर्य कूट कूट कर भरा था। मनोज के बेमतलब के इल्जामों को सुनकर कुछ दिन तो वो खूब रोती रही, कुछ माह उदास रहती थी, पर अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाजें अब तेज हो चली थीं। एक एक सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलने के बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और अनुभा, सुगंध के पति और उनके बेटे, अधीरा का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस पर बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी, उस पर सफेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी अधीरा को, उसके कोमल बदन पर खरोच लग जाएगी। मनोज मानो तड़प उठा। मनोज आगे बढ़ा पर दोनों बेटों की अंगार भरी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे मनोज कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा कर रह गए। भाभी अपराजिता ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं भैया, जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा ना कर सके तो अब मृतदेह से मुंह दिखाने का क्या फायदा? चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है ना। जीते जी अधीरा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथा कथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे, करना तो दूर, मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी ना सके। और बेटों ने इस बात का पूरा मान रखा था। अतीत के वे पल चलचित्र की भांति मनोज की आंखों में तैर उठे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना मनोज के शक्की स्वभाव के कारण उसकी पत्नी अधीरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन खुद को संभाले अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। अब वो इस दुनिया में नहीं थी और जाने से पहले वो मनोज से ये अधिकार छीन चुकी थी कि वो उसका अंतिम संस्कार भी करे। अब आगे अविश्वास का फन ना केवल सिर उठा चुका था बल्कि जहरीली फुफकार मारता ही रहता था। एक रोज जब वो अधीरा को अपशब्द बोल रहा था, उसी वक्त उसका बेटा सजल चीख उठा, चुप रहिए, आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक भी अपशब्द अब नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली मधु आंटी ने सब कुछ बता दिया है, आपके शक का कोई इलाज नहीं है। जवान बेटे का क्रोध देखकर मनोज ठंडा पड़ गया था। उधर अधीरा अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लांछन सुनकर मानो शर्म से गड़ी जा रही थी। वो तड़प कर बोल पड़ी, सजल, सारांश, मेरे बच्चों, अब सफाई दे देकर थक गई हूं। मैं मर जाऊं तो पति नाम के इस इंसान को मेरी मृत देह को छूने भी मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। उस दिन से अधीरा ने मनोज को पति के सिंहासन से उतार कर जमीन पर लापटका। करवा चौथ आदि सब त्याग दिया अधीरा ने। कितनी बातें थीं जिन्हें साझा करने की जरूरत थी, कितने खुले घावों को सिला जाना था, कितनी खरोंचों पर मोहब्बत के फाहे रखे जाने थे, पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना हंसना था, कितना रोना, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। पलक झपकी और पल गायब। वहां उपस्थित लोगों के रुदन से मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपनी जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा? अधीरा का चिर निद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। अधीरा की बहनें, सखियां और दोनों जेठानी तेज स्वर में रो रही थी। सजल अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। सारांश और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे। जिस अर्धांगिनी को वो हमेशा पर पुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्र हरण करता रहा, उसे ही आज गैर पुरुष कंधा दे रहे थे। पर मनोज के लिए वर्जित था अधीरा को छूना तक भी। अविश्वास, शक का फुफकारता नाग मनोज के मन में आज निर्जीव सा पड़ा था और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना था उसे अब ता उम्र।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सम्मान। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: now.
1: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course. मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए, धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

एलिशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था एलिशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ एलिशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो एलिशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर एलिशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में ब्लैक तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंजी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन एलिशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि एलिशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपर हिट से भी सुपर हिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला 5 गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवा ही लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाई के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में, यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज़े ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: कबर जाऊंगा एक दिन जोगे, इतने टाइम से तेरे पीछे कब दोगे, संभाले बेबी कली कहीं तो मुझको मिल, कर कोई अनहोनी तो तू खा लियो पिल।
1: अरे कुछ नहीं होता,
0: मैं तेरा